0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुंदर सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ आपसे सुमेरा, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार आदाब। फ्लाक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्वास्थ्य सेवा दी जाने लगेगी। कल क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्घाटन किया गया, जिसका मकसद इलाके के बाशिंदों के लिए सेहत की सेवाओं को ज़्यादा आसान बनाना है। अगले हफ्ते से ये केंद्र खोला जाएगा और सप्ताह में एक बार ये कार्यरत होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती से हफ्ते में 4-5 बार मुआयना यानी कंसल्टेशन भी किया जाएगा। सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट परियोजना विकसित हो रही है। मौजूदा प्रोटोकॉल संधि के संदर्भ में एक सलाहकार क्वालिटी इंश्योरेंस सेवाएं देंगे और तकनीकी सहायता भी देने वाले हैं, ताकि इस नई प्रणाली को अमल में लाया जा सके। जैसे कि बजट 2026-2027 में घोषित किया गया था। सिटिया मिल ट्रियोले में खुफिया कार्रवाई के दौरान एक पुलिस को ड्रग तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं और उनकी हिरासत में कोकीन के 350 ग्राम पाए गए। कुल कीमत 5 मिलियन रुपए से ज़्यादा की बताई जा रही है। विदेश में ईरान और इराक की सरहद पर अमेरिकी हमले में 2 लोग जान से गए हैं और 11 लोग घायल हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जलमार्ग अबनए हुर्मुज में किसी भी जहाज पर हमला करेगा तो उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल, आम हालत। हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दोपहर बाद उत्तर में कुछ बादल घेराएंगे और रह रहकर हल्की बरसात होगी। दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। आज रात के दौरान मौसम साजगार रहेगा। हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण की तरफ से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण में 2 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:43 पर, सूर्यास्त 5:49 पर।
2: RM3 Radio.

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद फौरन वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का ज़िक्र फरमाया, जो इस अमल की गैर मामूली अहमियत को जाहिर करता है। हुस्न सुलूक सिर्फ माली खिदमत का नाम नहीं, बल्कि नर्म गुफ्तगु, अदब, एहतराम, मुस्कुराहट, उनकी ज़रूरियात पूरी करना, उनकी इज्जत करना और उनके जज्बात का ख्याल रखना भी इसमें शामिल है। जो औलाद वालिदैन के साथ हुस्न अखलाक से पेश आती है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाता है और उसे दुनिया व आखिरत में इज्जत नसीब हो।

दुआ करे। अलबत्ता अगर वो किसी गुनाह का हुक्म दें तो इसमें इताअत नहीं, लेकिन इस सूरत में भी अदब, एहतराम और नरमी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए।

मोहतरम सामीन, याद रखें कि आपकी औलाद आपकी गुफ्तगु से ज़्यादा आपके किरदार से सीखती है। अगर घर में मोहब्बत, सब्र, नमाज, तिलावत कुरान, सच्चाई और अच्छे अखलाक का माहौल होगा तो बच्चे भी इन्हीं सिफात को इख्तियार करेंगे। उन पर अपनी ख्वाहिशात मुसल्लत करने के बजाय उनकी सलाहियतों को पहचानें, उनकी जायज़ राय का एहतराम करें और उनकी हौसला अफजाई करें। कभी किसी बच्चे का दूसरे से मवाजना न करें, क्योंकि इससे एहसास कमतरी और नफ़रत पैदा होती है। उनके लिए वक्त निकालें, उनके साथ बैठें, उनकी बात सुनें और उनकी कामयाबी पर खुशी का इजहार करें। मोहब्बत, इंसाफ, दुआ और बेहतरीन तरबियत ही वो सरमाया है जो औलाद को दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाब बनाता है। मोहतरम सामीन, सबा खैर प्रोग्राम करीब ख़त्म होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और तमाम आफात व बलियात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं और इसी के साथ सबा खैर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

இன்றைய காலை சிந்தனை உன் வாழ்க்கை சரியோ தவறோ வாழ்வது

94.6 98.2 MHz మీద RM3

0: and audio once more.
1: Yeah.

जलसो करवो होय तो भाई जलसा जेवा गीतो सांभळो जलसो फिल्म नो आ गीत भाविन भानुशाली पूजा जोशी दिव्य कुमार श्रुति पाठक राजेश अने केटला बधा आनी अंदर कलाकारो लवली सॉन्ग लवली ट्रैक 2026 ना वर्ष नु आवेलु आ गीत तमारा माटे अमे सिलेक्ट करीने लाव्या छीए ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन सो एन्जॉय करिए आ गीत बस साथ देता रहो पौणा 11 वाग्या सुधी अमे छीए आप सब कोई नो साथ देवा माटे

शक्ति में शक्ति। भक्ति में शक्ति। नमस्कार श्रोताओं, आज का दिन शुरू हो चुका है। सुबह उठकर बहुत से हमने काम किए, सभी कामों के लिए शक्ति ही तो चाहिए थी, लेकिन एक ऐसी शक्ति भी चाहिए जो हमारे मन में सदैव उत्साह को भर सके। होता क्या है, हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन बाद में हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मुफाचिगे, मैं बहुत थक गया हूँ। हम क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हम मन से खुश नहीं हैं। तो श्रोताओं, जो भक्ति की शक्ति है ना, ये आपको खुशी देती है। तब हम अपने सारे कार्य प्रभु को समर्पित होकर करते हैं। हम कहते हैं, प्रभु जी आपने जीवन दिया, आपने मुझे जगह दी काम करने की, आपने अवसर दिया, मेरे सभी कार्य आपके चरणों में। तब थकान नहीं होती है, यह है भक्ति की शक्ति। तो आइए इस भजन को सुनते हैं।

श्रोताओं, प्रभु के अनेक नाम हैं। वह बहुत सुंदर है, वह मन को हरने वाला है, वह मनोहर है, वह मार्ग दिखाने वाला है, वह दिल को शक्ति देने वाला है, वह आत्मा को भोजन देता है। इसीलिए तो हम उसकी आरती करते हैं, उसको याद करते हैं, क्योंकि आरती जो आरत जन जो दुखी हैं उन सबके दुख को हरता है। कभी हम उसे जगदीश कहते हैं, तो कभी माधव कहते हैं, तो कभी राम कहते हैं। सचमुच वह मंगल करने वाला है। आइए इस भजन को सुनते हैं।

श्रोताओं, राम मंदिर बना तो मानो सबका हृदय कमल खिल उठा, क्योंकि राम हृदय में बसा हुआ है। राम कौन है? जो सब में रमण करता है, जो सबके सुख दुख से जुड़ा है, जो स्वयं मर्यादा की खातिर सभी दुखों को ओट लेता है और रावण जैसे बुरे व्यक्तियों का नाश करता है। उस राम को हम याद कर सकें, उस राम को अपने हृदय में उतार सकें, कब उतार पाएंगे? जब हम स्वयं अपना जीवन मर्यादा से जिएंगे। खाने में मर्यादा, बोलने में मर्यादा, उठने में, बैठने में, व्यवहार में, तब ना राम की कृपा होगी। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, राम को भी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए देवी की आराधना करनी पड़ी, क्योंकि देवी सर्व मंगल मांगल्य है, अर्थात सब तरह के मंगल करती है। उसकी शक्ति समाज में मंगलकारी चीज़ों को प्रवाहित करती है और जितनी भी अमंगलकारी चीज़ें हैं उनका नाश करती है। वह देवी हम सबका मंगल करे।

श्रोताओं, प्रभु को किसी भी नाम से आप याद करें, किसी भी व्यवहार में उतारें, बस जीवन में ईमानदारी आने लगती है और सब कुछ प्रभु के नाम चलने लगता है। भक्ति की शक्ति हमको ईमानदार बनाती है, कर्तव्यनिष्ठ बनाती है और आनंद देती है। तो श्रोताओं, चलिए उस प्रभु को याद करते हुए अलका धनपत और यज को अनुमति दीजिए और इस भजन का आनंद लीजिए। नमस्कार, शुभ दिन।

0: तो ये हालत उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है क्योंकि इस साल जनवरी से जून तक पर्यटकों के आगमन में 1.5% की बढ़ोतरी नोट की गई। सिडनी पिया ने कहा कि दो वजहों से ये परफॉर्मेंस रहा है, पहला फुटबॉल विश्व कप और दूसरा मध्य पूर्व के तनाव है। सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट परियोजना विकसित की जा रही है। एक मौजूदा प्रोटोकॉल संधि के संदर्भ में एक सलाहकार क्वालिटी इंश्योरेंस सेवाएं दे रहे हैं और तकनीकी सहायता भी दे रहे हैं ताकि इस नई प्रणाली को अमल में लाया जा सके। जैसे कि बजट 2026-2027 में ऐलान किया गया था, अधिकारी सरहदों के लिए एक डिजिटल संचालन प्रणाली को विकसित कर रहे हैं। मकसद सुरक्षा को मजबूत करना और हवाई अड्डे पर मुसाफिरों को सुविधा देना। इस शनिवार को हाउस होल्ड रूफ टॉप सोलर पीवी स्कीम की लॉन्चिंग की जाएगी। सीबी और डीबीएम सुबह 10 बजे से क्यूबिप के अपने पुराने कार्यालय में एक सत्र का आयोजन कर रहे हैं। इसके दौरान सप्लायरों और फोटोवोल्टाइक प्रणाली स्थापित करने वाले लोगों के साथ बातचीत की जाएगी। विदेश में एक नागरिक परमाणु प्रोग्राम को विकसित करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब ने एक संगी मील की हैसियत रखने वाला समझौता तय किया। इस संधि को एक शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता करार दिया गया है जिससे अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। और ईरान तथा इराक की सरहद पर अमेरिकी हमले में 2 लोग जान से गए हैं और 11 लोग जख्मी हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान आबनाए हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हमला करेगा तो उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। ओबिलक स्ट्रीट ब्रांच रोड नुवेल फ्रांस में 78 साल के 78 years old श्री राजेंद्र प्रसाद चैतन, श्री राजेंद्र प्रसाद चैतन जो राजन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल साढ़े नौ बजे के बेटे विशाल चैतन के घर ओबिलक स्ट्रीट ब्रांच रोड नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजीन नुवेल फ्रांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio.

0: ना सफर सुहाना सफर
1: प्यार सिखाने प्यार जताने और बस प्यार बांटने आए हैं। 12:07 नमस्कार सभी हमारे प्यारे श्रोताओं को विदिता की ओर से स्वागत है आप ही के प्रोग्राम में RM3 रेडियो मनोरंजन पर, जहां पर हमारा और आपका होता है साथ और होते हैं ये खूबसूरत पुराने गाने। तो बस विदिता का साथ देने के लिए तैयार रहिएगा और हमारे साथ इन खूबसूरत गीतों के साथ झूमने तैयार रहिएगा। मैं बस इतना चाहूंगी कि आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहे, और जहां से भी हमारे प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं बस भूलिएगा नहीं, हमारा टिकटॉक हो रहा है थोड़ी देर में लाइव।
2: RM3 रेडियो

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: अंधेरे में जो बैठे हैं उन पर नजर डालने ही आए हैं और इनके लाइफ में थोड़ी सी रोशनी लेकर आए हैं। सो गुड आफ्टरनून, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर। और सुहाना सफर में चलिए यहाँ पर खूबसूरत गीतों का जो सिलसिला है उसको हम जारी रखेंगे मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ जिसकी फरमाइश आई थी, अश्विन ने इसकी फरमाइश की थी। आई होप कि वो हमें सुन रहे हैं जरूर।
2: You're listening RM Free Radio Radio Radio
1: ये खूबसूरत सा गाना आपके लिए हम लेकर आए हैं आशा जी की आवाज में। और जितने भी लोग इसमें तन्हा तन्हा फील कर रहे हैं हम बता दें उनको कि हमारे होते हुए कोई तन्हा नहीं रह सकता। आपके लिए बहुत बहुत बहुत सारा प्यार लेकर आ गए हैं साथ देने आपके प्रोग्राम में सुहाना सफर। दुनिया के किसी भी कोने में आप हमें सुन रहे हैं। डोंट फॉरगेट हमारा टिकटॉक लाइव है, आप हमें अपने मैसेज भेज सकते हैं।

0: सफर
1: सुहाना सफर
0: दिन के 12:19 हुए हैं। सुहाना सफर प्रोग्राम में इतने सारे दोस्त आ गए हैं, जुड़ चुके हैं, चलिए उनका भी वेलकम करते हैं। उस्ना बानो मलारी, आरती सुकन, शिरीन रामजोन, डैनी रोजा, ऋषि गोपी, कल्याणी हरी, करसी फिया, निजाम बहादुर और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं कौन, चलिए देखते हैं। सुरेखा फ्रॉम स्कॉटलैंड, हाय सुरेखा, आ गई अपने पति आनंद के साथ प्रोग्राम का आनंद लेने के लिए। एंसर रामा, नमस्ते, स्वागत है आपका। सूरत सजदा, आप हमारे साथ हैं ट्रियोली से, आपका भी वेलकम करते हैं। नीन, हाय कैसे हो भाई, थैंक यू सो मच सूरज। एंड चलिए श्यामा महिराली भी हमारे साथ है, गाना होगा आपके लिए, अगला गाना होगा यजना के लिए और वो हमें सुन रही है। सुचिता का वेलकम है एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मैसेज भेजा है, बस हेलो हाय। केशनी कुमार हमारे साथ हैं, हेलो। एंड सुरेखा जी, उम्मीद करती हूँ कि कतवारू फैमिली सुन रहे हैं। प्रेमा के लिए गाना होगा हैप्पी थर्सडे। ज्योति, सोनी एंड माधुरी करती हुई आई 1 2 3, वहीं पे साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, थैंक यू सो मच साहिल एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। ज्योति चवन, आपका भी हम वेलकम करते हैं। शालिनी रवि, नीरव और सुधा, शंकर देवयानी एंड गाना होगा आपके लिए। कहते हैं कि यहाँ पर अभी रात के 8:15 हुए हैं इन फिजी और सर्दी की तो मत पूछो, चलो नहीं पूछते क्योंकि हमें भी बहुत सर्दी लगती है आजकल। साइलेश आपका वेलकम करती हूँ मैं। सुनीता नमस्ते, रॉडरमंच आपका भी वेलकम है एंड वी हैव पूजा, सुचिता, देवयानी जी आपके लिए भी गाना होगा, आरती सदाशिवन एंड साथ में होगा यहाँ पर वीर सिंह के लिए गाना। ओके, तो अभी विद्या पाडू भी हमारे साथ हैं, गाना होगा आपकी पूरी फैमिली के लिए जो साथ दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी लोग बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून, गाना जाएगा फॉर सिस्टर सुरेखा अमृता की तरफ से और रुकैया सुदन हमारे साथ रिजवी से साथ दे रही हैं, तो मिलते हैं भी थोड़ी देर में आपसे, ठीक है। अब तो पड़ोस में ही हमारे, हेलो अंजल कैसे हो, रेशमा ओके। गाना संजय कीनू के लिए और विशाल की तरफ से गाना होगा पूरी फैमिली के लिए। वी हैव लीना जड़िया का थोसियर से गाना केशव के लिए जिनका आज है बर्थडे। और ये गाना होगा मिस्टर नूरुद्दीन बुराई के लिए जो फ्रांस से साथ दे रहे हैं, फॉर विमी, फॉर पूजा, थैंक यू सो मच। कविराज जी वेलकम, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। कोंकाहोल विलेज काउंसिल में आप हमें सुन रहे हैं, गाना जाएगा आपके लिए और ये है मिस्टर राजीव कुमार जांगी जो साथ दे रहे हैं। हेलो विवेक, स्वागत है आपका।

0: वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: क्या गाना था, एकदम समा बन गया हमारा। 12:30 बज चुके हैं। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं टिकटॉक के जरिए, इनको याद करते हैं। सुनील कहते हैं, खाना गर्म करते करते मैं तो डांस करने लगा भाई। चलो, यहाँ पर ऋषि रामबली, एंजल, आशीष कुमार, यशमीन नशरत है, मुसरत है, यास्मीन मशरत फ्रॉम यूके, करिश्मा सिबंदन, एलिजा, विवेक दिव्यानी, उनके पापा के लिए कहते हैं, पापा प्रोग्राम सुनना बहुत पसंद करते हैं, आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं। पापा जी, थैंक यू सो मच जी। पापा जी आपको कहेंगे, बस आशीर्वाद देते रहिएगा, हमें हम ऐसे आपको एंटरटेन करते रहेंगे। बबीता बुला की देवी उत्तम साथ में है यहाँ पर, साधना, एंड वी ऑल्सो हैव अ प्रेमिला, अंजू, तिलक, रीना, नीलिमा, दीप्ति, कैसियो सिस्टर, रायांश, मलिका, अनुराग अभी पोर्ट्रेस में मिठाई बेच रही हैं, और राधा, शिपचन, सुहानी, स्वीटी, माया, रामदोस जी आपको कहेंगे हर हर महादेव, एंड नुराइनी हमारे साथ हैं अलीशा की तरफ से, साइलेश के लिए गाना, कमलेश, तकू, संजय बुधवा, अवनीश, ललिता, जय श्री राम आपको, एंड शवि बहुत सारा प्यार आपके लिए, और साथ में सुकुंदर पाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सकीना रुखसाई हमारे साथ हैं, कहते हैं 80s 90s का वो अगले आवर में गाना हम चलाएं, अभी के लिए थोड़ा पुराना, ठीक है। पैमेला को कहेंगे वेलकम, और साथ में यहां पर बिंता का करेंगे वेलकम, एंड वी आल्सो हैव नेक्स्ट गाना आपके लिए मुकेश साहब की आवाज में, आपको गाने पसंद है, कोशिश करेंगे उनकी आवाज में गाना यहां पर जोड़ने की, एंड साथ ही में यहां पर जो नेक्स्ट गाना होगा सुबी के नाम और तीशा के लिए जो प्यार से साथ दे रही हैं। चलो भाई, गाना सुनकर संजय जी कहते हैं कि भाई ये दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलो, तो उसी गार्डन में कुछ और खूबसूरत गीतों के फूल खिलाते हैं, ठीक है। थैंक यू नीता जी, साथ दे रही हैं आप हमारे, एंड राधा सिपचन आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू, वेलकम है। एंड गाना कौन सा होगा भाई, गाना होगा आपके लिए स्वीट हार्ट फिल्म से, और राम राम आपको मायावती जी, कैसी हैं आप, सब बढ़िया। चलो जी, यहाँ पर विनय हमारे साथ गुडलैंड से हैं, गाना उनकी लवली वाइफ रेशमा के लिए जाएगा, तो वाइफ के लिए रोमांटिक गाने चाहिए ना। ये गाना हम दिया के नाम डेडिकेट करते हैं, और साथ में उनके लिए जो ड्राइव कर रहे हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर सुहाना सफर दिन के 12:40 गाना किसके लिए होगा विकास वीना आयशा साथ दे रहे हैं वार्म वेलकम टू तरुण राम तैयब भोला रीमा बर्टन साथ में शेनाज विद्या नायको नीता ममता एंड यही गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए जी हाय हाउ आर यू कैसे हो महजबीन यहाँ पर गाना होगा आपके लिए अंकल जी एंजॉय कर रहे हैं ज्योति जी कह रही हैं थैंक यू इंदिरा नमस्कार किरण चमन आपका भी वेलकम है यहाँ पर दौलत तरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं नमस्कार आपको और गाना होगा आपके लिए चलिए नेक्स्ट गाना होगा फॉर अब्दुल रेशाद रूपचंद मिर्दा और राजेश उगर के लिए प्रकाश के लिए भी गाना डेडिकेट करते हैं राजेश फोंजी साक से साथ दे रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट गाना एम जी इवेंट्स कैसे हो भाई थैंक यू सो मच इतने दिनों से पता नहीं कहाँ गायब हो गए मुझे लगा आपने साथ छोड़ दिया थैंक यू सो मच चलिए यहाँ पर गाना होगा प्रिंसेस के नाम विनती के लिए एंड साथ में वंदना देवी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सरोज थैंक यू एंड यही गाना सीता से गुलाम के लिए यहाँ अभी काम करिए बुनमिया के CWO की पूरी टीम जो साथ में है उनके लिए गाना होगा और बाकी जो हमारे दोस्त हैं उनको कहेंगे कि बस आप हमारे साथ रहिएगा फिर देखिए हम आपको कहाँ कहाँ ले चलते हैं जितेंद्र बिरावा वेलकम है
1: RM3 Radio.

सफर सुहाना सफर आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। और गाना बहुत ही प्यारा था लता जी की आवाज़ में, लता जी की एक और आवाज़ आई मीन गाने के साथ हम आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट गाना होगा फॉर विनय, फॉर आशना, राजीव, आरती, रंभा जी बिलनौ में हैं, सुदेव विभूदन, अनिल नराजन कुजन हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू। अतवल महेंद्र कौर, कैसे हैं आप, स्वागत करते हैं आपका हम प्रोग्राम में। और यहाँ पर साहिल कहते हैं कि भाई हम लोग एक कार्गो डिपार्टमेंट में एक ग्रुप ऑफ 25 पीपल काम करते हैं, हम सभी आपके फैंस हैं और बॉस को भी आप का शो बहुत अच्छा लगता है। अनिल जी कैसे हो, अनिल जी थैंक यू, अनिल जी मैं जानती हूँ कि आप अभी हम फॉलो कर रहे हो, लाइव देख रहे हो, सो थैंक यू सो मच। स्पेशली आप हमारे प्रोग्राम को इतना पसंद करते हैं कि जितने भी आपके साथ आपके लोग काम करते हैं वो सभी हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं, सो थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। और चलिए इसके साथ गाना होगा वैदेही के लिए और साथ में सरामा, हाय कैसे हो जी, गाना आपके लिए, आरती के लिए। एंड आरती जी कैसे हो आप, शायद हम दोबारा मिलेंगे और फिर आप हमसे बात कर लेना, फिर बता देना कि मैं वही हूँ और मैं कहूँगी अच्छा कि तुम हो वो तुम हो। विनन कैसे हो जी, गाना कौन सा होगा, ये रहा जाने मन तुम कमाल करती हो। यहाँ पर काजल सहाय हमारे साथ जुड़ी है, थैंक यू ए नाम तो नहीं लिखा लेकिन थैंक यू। हाँ बिना नाम के यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, थैंक यू सो मच। 5499 तो नहीं बल्कि सेकंड 0 पर भी आप भेज सकते हैं। तनवीर खालिद ये नेक्स्ट गाना आपको डेडिकेट करते हैं।

0: ना सफर सुहाना सफर
1: जानेमन तुम कमाल करती हो। और कमाल की बात ये है कि हम यहाँ पर प्रोग्राम के लिए बैठे हैं और साथ में इतने सारे दोस्त हमें दुनिया के कोने कोने से निकलकर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ माला, मिली, याशना, गीता इन सबका स्वागत करती हैं। कैसे हैं जी आप? ओजे हाय, हाउ आर यू? रवि वेलकम, स्वागत है। सुरेखा बालन, आपका भी हम वेलकम करते हैं। एंड साथ में केशनी कुमार, आपको गाना अच्छा लगा, मैं जान के अच्छा लगा। तो ऐसा करते हैं, अतुल जी कहते हैं कि फेवरेट हीरो और फेवरेट गाना शशि कपूर अच्छा लगा। एंड गीता हमारे साथ जुड़ी हैं स्कॉटलैंड से, कहती है कि ओह आमिन मॉरिशस, तो मिलो ना भाई, आ जाओ हमसे मिलने, कब मिलने आओगे। बराबर जी टू यू विशाल, थैंक यू। शमिला बुद्धन एंड मिस्टर पटेल, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू। आयशा, आपका वेलकम है, बहुत सारा प्यार आपके लिए। सुनील बिंदा एंड मोहिनी, स्वागत आपका। हेमा जी, गाना होगा आकाश, निहाल, सुजन, हेमा जो सैटवे से साथ दे रहे हैं।

0: चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे आशिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रसिद्ध भारतीय गायक अभिजीत भट्टाचार्य शनिवार को स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में अपना कंसर्ट देने वाली हैं। वे आज सुबह अपने संगीतकारों की टोली के साथ मॉरीशस पहुंची। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मॉरीशस लौटकर खुशी व्यक्त की। बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय आवाजों में शुमार अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने लंबे करियर सफर में हजारों गीत गाए हैं। उन्होंने विशेष रूप से अभिनेता शाहरुख खान के लिए अनेक सुपरहिट गीतों को अपनी आवाज़ दी है, जिससे दोनों की जोड़ी 1990 और 2000 के दशक की सबसे चर्चित अभिनेता गायक जोड़ियों में शामिल हो गई। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, तौबा तुम्हारे ये इशारे, ओले ओले जैसे उनके लोकप्रिय गीत आज भी श्रोताओं के बीच बेहद पसंद किए जाते हैं। शनिवार के इस कंसर्ट में दर्शकों को यादगार गीतों और भावनाओं से भरपूर एक शानदार संगीतमय शाम का अनुभव मिलने की उम्मीद है। सचिवालय में सार्वजनिक परिवहन की समस्या को लेकर स्थानीय निवासी कई वर्षों से अपनी चिंता जता रहे हैं। इसी मुद्दे पर पिछले शुक्रवार संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। सोमवार से इस मार्ग पर एक अतिरिक्त बस सेवा शुरू की गई है। हालांकि NLTA की निगरानी और जांच के बावजूद यात्रियों का कहना है कि बसों की आवाजाही अब भी पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि बसों की कमी के कारण उन्हें रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रही हैं। सचिवालय के अलावा शोनू और बुविलाश जैसे आसपास के गांवों के निवासी भी इस समस्या से प्रभावित हैं। अनुमान है कि इस परिवहन संकट का असर लगभग 3000 लोगों पर पड़ रहा है। बंदरगाह में

0: एलरी साहब को नियंत्रित करने के लिए चलाया गया सफाई अभियान कल पूरा हो गया। समुद्र में तेल के फैलाव को रोकने के लिए लगभग 300 मीटर लंबी अब्सोर्बेंट बूम्स समुद्र में तैनात किए गए थे। बंदरगाह प्राधिकरण और पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार समुद्र की सतह पर तैर रहे पूरे ईंधन तेल को सफलतापूर्वक एकत्र कर लिया गया है और स्थिति अब नियंत्रण में है। मॉरिशस के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक नसीम अकबर अली का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कुछ वर्ष पहले रिटायर हुए नसीम अकबर अली ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वीकेंड स्कोप के एडिटोरियल विभाग से की थी। उनके लिए पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक समर्पित सेवा थी जिन्हें उन्होंने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाया। वीकेंड स्कोप में उन्होंने सांस्कृतिक विषयों और भारतीय सिनेमा से जुड़ी खबरों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई। बाद में उन्होंने ले मॉरिशियन समाचार में कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की गंभीरता और पेशेवर अंदाज में रिपोर्टिंग की। नसीम अकबर अली अपने परिवार के प्रति भी बेहद समर्पित थे। परंदे पपाई के निवासी असीम अकबर अली अपने मिलनसार स्वभाव और सादगी के कारण सभी के बीच सम्मानित हैं। एमबीसी ने उनके परिवार, परिजनों और शोक संतप्त सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका साझा समाधान तलाशने के प्रयास जारी रखेगा और इसके लिए नए प्रस्तावों की आवश्यकता होगी। मनीला में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मुलाकात और एशियन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पत्रकारों के बीच में से बातचीत में रूबियो ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर दोनों नेताओं के बीच स्पष्ट और सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने इस संघर्ष को अत्यंत रक्तरंजित युद्ध बताया और कहा कि अब रूस के भीतर भी गहरे इलाकों तक हमले हो रहे हैं जो पिछले वर्ष के अंत तक देखने को नहीं मिल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि सर्दियों के मौसम में यूक्रेन के सामने नई चुनौतियाँ होंगी और उसे अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा लगातार मजबूत रखनी होगी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार। लाग्रीमॉन सैपियर में 62 साल के 62 years old के श्री स्वागत चतुरी जिन्हें मनोज के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनके घर लाग्रीमॉन सैपियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकॉन्स की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio. Man.

0: सुहाना सफर
1: प्रोग्राम में दिन के 1:10 हुए हैं. कैसे हैं भाई? चलो यहाँ पर हमारे साथ कौन है जान लेते हैं. विसे अ बिग वार्म वेलकम टू इमरान, विनय कटवारू, दीपक जब्बू जो कि इस समय अभी रोजिल में हमें सुन रही हैं अपनी पूरी टीम के साथ. कहने बना रहे हो आप? हाँ, मुझे नौ लख मंगा दे रहे ओ सैया दीवानी. चलो बृंदा, राजेश पटेल, गुराया फैमिली, सिया जो कि समय रिलैक्स कर रही हैं, रिलैक्स करो रेशम. और साथ में यहाँ पर राजेश पटेल एक्चुअली पोर्टुगल से हमें सुन रहे हैं, तो पोर्टुगल में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं टिकटॉक के जरिए, थैंक यू. एंड वी हैव वरुण लक्ष्मण, आपने जो गाना मांगा है वो ऑलरेडी मेरे लिस्ट में है, तो थोड़ी देर में चलाती हूँ. राजन यास्मीन के लिए होगा गाना, रियाज के लिए. और साथ में यहाँ पर हंस भी हमारे साथ हैं, उनके लिए वी हैव कविता एंड सूरज, उनको हैप्पी एनिवर्सरी. सिमला बिचादुर, साथ में जनार्दन, किंग यूजर, बेबो, मनोज कुमार, रोजियाना, डीवा गर्ल, शबनम, संजय है फ्रॉम नेपाल, और ये एक अलग संजय है. और यहाँ पर कज़िन दिलशाद इंजोर के लिए गाना होगा, हबी उनके पति कीर्तन के लिए, उनकी बेटी एलियाना के लिए, ये हैं सकीना की तरफ से. और यही गाना हम रेखा लक्ष्मण के नाम डेडिकेट करते हैं जो साथ दे रहे हैं हमारे. और साथ में यही गाना होगा सायरा बानू के लिए और उनके अब्दुल के नाम जो साथ दे रहे हैं. ललिता एंड नमस्कार जी, कैसे हो आप? आपका प्रोग्राम में स्वागत करते हैं. एंड साथ में दिविना रामबरिच हमारे साथ हैं. हाय हाय रूपा, रागिनी, गुड मॉर्निंग जोन नब्लम, मुझे नहीं पता नाम, आप लोग लिखते नहीं हो, बस जो मिलता है मैं बोल देती हूँ. और सबीना की तरफ से नेक्स्ट गाना सभी पेशेंट्स के लिए जो अभी हॉस्पिटल में हैं, एंड आपकी तीनों बेटियों के नाम. ओके, तो यहाँ पर लवीन हमारे साथ हैं, थैंक यू लवीन. यहाँ पर सवित्री सिंह है नेदरलैंड से, हेलो सवित्री जी, कैसे हो आप? चलो तो नेदरलैंड्स में भी और भी लोग जुड़ गए हमारे, इतने सारे फैंस आ गए हैं. सुनीता देवी, थैंक यू सो मच, लव यू. आप पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग उनको कहेंगे बोंकू गाश, बस साथ देते रहना, आपका हमारा साथ रहेगा, तभी तो बनेगा यहाँ पर समा. और ये गाना हम डेडिकेट करते हैं फॉर नैट एंड फॉर निशी. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 90s के गाने नहीं चलते, 80s के गाने एक दो चला लेती हूँ, 90s का थोड़ा कोशिश करती हूँ. राम राम संजनी, लता देव जी, सुनीता देवी फ्रॉम फिजी आइलैंड्स, हेलो गुड आफ्टरनून टू यू.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: आपका साथ चाहिए और क्या चाहिए, हमें आपका साथ है। तो बस दिन के 1:17 और साथ साथ चलते चलते यहाँ पर नेक्स्ट गाना हम रेखा रामा साथ में विद्या चांद रानी माधुरी एंड मनोज जो इस समय हॉलैंड में काम कर रहे हैं, बस सोसो लो भी भेजते हैं, मुझे समझ में नहीं आता लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो बहुत प्यार भेजते हैं, तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जितने भी लोग छुट्टियाँ मना रहे हैं उनको कहेंगे बस आप लोग साथ देते रहना। एंड सूर्या थैंक यू सो मच, हाय सिमी कैसे हो, आपके लिए गाना होगा और आपके फैमिली के नाम भी, और यही गाना हम कीर्ति के नाम डेडिकेट करेंगे। एंड निशा गोकुल जो दे रही है हमारा साथ, अब साथ की बात चली है गाने की भी बात होगी तो गाने में यहाँ पर शमा जी आपके नाम भी डेडिकेट करते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सुहाना सफर।
1: हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते भाई। हमारी चाहत तो यही है कि जब आप साथ में होते हैं तो यहाँ पर मेरा भी मन करता है कि मैं आऊँ, आपके साथ टाइम स्पेंड करूँ, गाने गाऊँ, आपको भी मैं यहाँ पर एंटरटेन करूँ। यहाँ पर शमा हमारे साथ हैं, वहीं पे सलीम इकबर अली, आप हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, थैंक यू सो मच। और गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे फॉर दुर्गा सादेरी हैं, एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पर नैदरलैंड से सावित्री सिंह हमारे साथ, मीरा रामा वेलकम, आपका हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। चलिए गाना हम रेखा रामा, विद्या चांद, रानी माधुरी सबके नाम डेडिकेट करते हैं। एंड लाइक आई सेड कि हमारा ये जो प्रोग्राम है सिर्फ मॉरिशस के हमारे लिसनर्स नहीं बल्कि ये जो हमारा टिकटॉक है लाइव होता है, इसके ज़रिए यहाँ पर दुनिया भर से लोग हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं, एंजॉय करते हैं। बस हमारी कोशिश कि गाने जो हैं कुछ ऐसे हो जिसे सुनकर आप खुश हो जाए। नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे वनीशा की तरफ से, उनके लव शान के नाम, जो इस समय हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जैसा आपने गाने की फरमाइश की थी और गाना हमारे पास है, तो वरुण आई होप आपको ये गाना पसंद आएगा।

0: मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में बिखर जाओगे। चलिए यहाँ पर हम भी गीतों के साथ बिखर ही रहे हैं। आपका क्या हाल है?
1: सुहाना सफर
0: सुहाना है क्योंकि आप साथ में हैं। चलिए नेक्स्ट गाना जो होगा इसे सुनकर तो भाई ये वाला गाना सुनकर तो वरुण लक्ष्मण इतने खुश हैं मैं क्या बताऊं। चलो जी यहाँ पर नीला शेला का बर्थडे है तो नीला के लिए और शेला के लिए गाना होगा। साथ में अश्वीर जो हमारे साथ हैं, विश्वनाथ प्रयाग जी नमस्कार कैसे हैं, थैंक यू। और कहते हैं आई आई बच्चन बिल्कुल बच्चन, हमने बच्चन दिया था तो हम बच्चन का गाना कैसे ना चलाएं। बीना जी नमस्कार, इंदिरा जी थैंक यू एंड स्माइलिंग टू माय फोन लाइक क्रेजी मैसेज आया है। सुनील बिंदा थैंक यू सो मच। और इसी के साथ गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं हम आपके लिए। दिशा कहते हैं कविता का बर्थडे है, कविता जी हैप्पी बर्थडे टू यू। और साथ में यही गाना होगा फॉर किसके लिए भाई, उनके लिए जो ऑफिस में हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं और बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रहा है। देवीना जी गुडलैंड से साथ दे रही हैं। हेलो देवीना जी कैसी हैं आप, दूर में है तो आपको एक बात बोलूं,

साथ देते रहिए और हमारे गीतों को एंजॉय करते रहिए. अभी क्या है ना कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट गाना होगा वो हम इन तमाम दोस्तों के नाम डेडिकेट करें जो अभी क्या है ना कि काम पर हैं और साथ दे रहे हैं.

0: सुहाना सफर।
1: भाई मेरी ये शैतानियां देखकर यहाँ पर सब मूड में आ गए हैं और हमारा तो काम है। सरिता शंकर कहती है, हेलो ड्रामा क्वीन, अब क्या करूँ, अब इट्स इन माय ब्लड, कभी कभी निखर के उभर के आ ही जाता है, अब ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, मस्त लगता है मुझको भी। थैंक यू साहिल एंड नॉटी एंड लवली, ये है दीप्ति जी, थैंक यू। नेक्स्ट गाना जाएगा एसके की तरफ से उनकी बेटी लवीना के लिए, और लवीना को कैसे गाने पसंद हैं, आई होप ये वाला ज़रूर पसंद आएगा।

देवी आ गई हैं, पूजा आ गई हैं, सब साथ में मिलकर नेक्स्ट गाना जो होगा सिमी बुदू के नाम, आपकी मम्मा हैं उनके नाम डेडिकेट करते हैं। और परवीन हमारे साथ हैं, हेलो कैसी हैं आप?

0: और वहाँ पर देवी 70s की मेमोरीज को यहाँ पर एंजॉय कर रही हैं. रीना रमादी तो उनकी बेस्टी रेशा के लिए गाना मांग रही हैं. जीतन दुलवा और यहाँ संध्या बंसी, पीकू विदुषी और कल्याणी सिंह जुड़े हैं हमारे साथ.
1: RM3 Radio. Radio. Radio.
2: देखो, हाँ, माइके, नहीं, तू मत, माइके, माइके मत जाइयो. Hey, Tony Fernandez, baby.

0: सुहाना सफर।
1: अजी मैके क्या आप बोलो तो मैं घर ही ना जाऊं, मैं यही रुक जाऊं, लेकिन क्या करूं, अब प्रोग्राम थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा ना, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर गाना जो होगा हम डेडिकेट करते हैं निशा भवानी के लिए, दिनेश गोपी के नाम और कविता जी के लिए, और साथ में ये गाना डेडिकेट करते हैं उनके लिए जिनको ये गाना पसंद आया, मज़ा आया। जी हाँ, लंबू का गाना था, मैं अमिताभ बच्चन के जितने भी फैंस हैं उनके लिए गाना था, एंड आई होप कि इस गाने को सुनने के बाद आप लोगों को मज़ा तो ज़रा आया होगा। किसी ने पूछा भी, अरे भाई कौन से फिल्म का गाना है ये? हाँ, ये पुकार फिल्म का गाना है और आपने इसको बड़े प्यार से एंजॉय किया। चलिए नेक्स्ट गाना जो होगा, ये अमिताभ बच्चन को क्या हो गया, सब कुछ छोड़ के मेरे ही प्रोग्राम में क्यों आ गया भाई। चलो इसके बाद एक और प्यारा सा गाना है, फिल्म का नाम है राही बदल गए। ये गाना हम रेशमा सुराजी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, अभी भी वो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू सो मच। और परी हमारे प्रोग्राम में जुड़ गई हैं, काफी देर से आई लेकिन आई जरूर है, लगता है किसी ने उनके पर के साथ खेल किया है या तो फिर पता नहीं शायद वो आज सो गई होगी। देर से सही लेकिन आई जरूर, थैंक यू सो मच। वैसे थोड़ी देर में हमारा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, अभी अभी अगर आपने ज्वाइन किया तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेहरबानी की हमसे कि हमारे प्रोग्राम के साथ आप जुड़े रहे। हाँ, अच्छी खासी शॉपिंग हो रही होगी, थैंक यू।

चलिए आखिरी गाने के साथ अब जाने का भी टाइम हो गया है, और चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जितने भी दोस्त इस समय हमें सुन रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपको। और हमारा जो नेक्स्ट गाना होगा वो हमें लेके जा रहा है 2 बजे के समाचारों की ओर, और फिर उसके बाद हमारी आपको मुलाकात अब कल होगी, भूलिएगा नहीं। यहाँ पर चलते चलते गाना डेडिकेट करते हैं हम आपके लिए, थैंक यू सो मच शेरा वाइतलिंगम, हाय कोको कैसे हो, नंदिता थैंक यू फॉर लविंग द सिलेक्शन,

एंड वरुण कहते हैं इट वाज माय फर्स्ट टाइम वाचिंग योर शो लाइव एंड मजा ही आ गया. गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग. थैंक यू वरुण, थैंक यू सो मच. आई होप कि कल फिर मिलेंगे. एंड वी हैव हेलो फ्रॉम टोरंटो कनाडा. ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच. मस्ती करते रहना, अच्छा लगता है. और कहते हैं कि उनको अच्छा लगता है. रॉबिन वुड पांडे बड़ी देर कर दी लेकिन आए तो सही. थैंक यू सो मच. उषा कहती है मुझे हेलेन के गाने अच्छे लगते हैं तो कल चलाएंगे. सुरेखा जी आपको भी मज़ा आया हमारे प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगा हमें. सरस्वती एक बार फिर आपको थैंक यू. हाय राधे राधे केजे, कैसे हो. हाय प्रिया, रेणुका जग्गू, अच्छा लगा मुझे भी कि आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहे. अभी 12 से 2 आप रोज़ हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ मस्ती होती है. तो मस्ती जो है इसको हम जारी रखेंगे और आपसे कहेंगे थैंक यू, शुक्रिया. मिलेंगे, कब मिलेंगे, कल मिलेंगे 12 बजे. RM3 Radio.

और चलिए चलते चलते यहाँ कनाडा में किरण अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी वाइफ मनीषा, उनके बेटे लकी और यूश की तरफ से बहुत सारा प्यार है, उनके पूरी फैमिली की ओर से राधा कृष्ण फैमिली जो है लाभ पहुंचे उनको विश करें वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।

ये गाना जाएगा केशव रघुबीर के लिए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. और दिनू मोहिनी काफ़ी देर से आई लेकिन आई ज़रूर, तो उनके लिए भी चलते चलते ये गाना डेडिकेट करते हैं. मनोज जी कल मिलेंगे. और मनीषा आशना पोडिगादू आपके लिए गाना होगा. एंड शैल थैंक यू सो मच. दादी जी को प्रणाम, बहुत सारा प्यार.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आत्सू मेट्रो नॉर्थ ने 22 जुलाई की सुबह प्लनवेत में एक घर की तलाशी के दौरान 27 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी पेशे से बैंकिंग टेलर बताया गया है। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने मेथाडोन से भरी 4 प्लास्टिक की बोतलें, 7 मिलीग्राम की 42 लाइब्रिका कैप्सूल, 75 मिलीग्राम की 30 गैबलाइन कैप्सूल और 100 मिलीग्राम की 11 ट्रम कैप्सूल्स और इसके साथ 10 मिलीग्राम की 8 वैलियम कैप्सूल तथा ₹125 नकद बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार ये राशि मादक पदार्थों की बिक्री से प्राप्त आय होने का संदेह है। गिरफ्तार व्यक्ति को पोर्ट लुइस नॉर्थ जिला अदालत में पेश किया गया, जहां उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। क्वीन विक्टोरिया में बुधवार 22 जुलाई को एक नए स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की गई। इस सुविधा का उद्देश्य स्थानीय निवासियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और उनके घर के निकट आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके शुरू होने से अब लोगों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। सरकार का कहना है कि इस स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं अधिक आसानी और सुविधा के साथ उपलब्ध होंगी, जिससे ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और बेहतर होगी। क्यूपिप के टाउन हॉल में बुधवार 22 जुलाई को मैंगो सागा के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मॉरिशस में पाकिस्तान के उच्चायोग की पहल पर किया गया। इस अवसर पर पाकिस्तान की विभिन्न प्रसिद्ध आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में कुछ लोगों के लिए ये पुराने स्वादों की यादें ताज़ा करने का अवसर रहा, जबकि अन्य लोगों ने पहली बार इन विशेष किस्मों के आमों का परिचय प्राप्त किया। इस आयोजन के माध्यम से मॉरिशस और पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी रेखांकित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जारी भीषण जंगल की आग के कारण करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब बोर्डो हवाई अड्डे के पास 2 दमकल कर्मियों की मौत के कुछ दिनों बाद भी आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। ज्योंद क्षेत्र के प्रशासन के अनुसार अब तक 2,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि आग की चपेट में आ चुकी है। जंगल वाले इलाकों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। गुरुवार तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली। सन कंटाल्डो इसके अलावा वहीं इटली में सिसिली के सन कंटाल्डो इलाके में जंगल की आग बुझाने के दौरान जान गंवाने वाले दमकलकर्मी अलेक्सांड्रो मार्ची को श्रद्धांजलि दी गई। इटली के गृह मंत्री मातेओ पियांदेदोसी ने उन्हें समुदाय की सेवा में शहीद हुआ कर्मी बताते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।

0: स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इसे विशेष कार्यक्रम में। आप सभी लोग सुनने वाले और देखने वाले भी नाटक कला कार्यक्रम आप लोगों के लिए, खासतौर पे नाटक के इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं नाटक की दुनिया से जुड़े हुए जो भी बातें हैं आप लोगों के लिए, खासतौर पे सभी जो नाटक प्रेमी हमें सुन रहे और देख भी रहे, यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। आप लोगों के बता दें कि हाल में ही एक बहुत ही सुंदर नाटक का मंचन हुआ था वाकुआ में, वहाँ पर और हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा यह कार्यक्रम को चला गया था और वाकुआ रंगभूमि कला मंदिर के कलाकारों द्वारा इस नाटक का मंचन हुआ था। और हमारा सौभाग्य कि आज इसी नाटक से जुड़े हुए दो दिग्गज हमारे आज स्टूडियो में आए हुए हैं। डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी, आप चेयरमैन है हिंदी स्पीकिंग यूनियन से, और राजेश्वर आदर्श तोहर, डायरेक्टर वाकुआ रंगभूमि कला मंदिर, दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। तो अंजलि जी, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे। हमने रिहर्सल देखा, बहुत ही सुंदर। हमने कार्यक्रम देखा, नाटक देखा, बहुत ही सुंदर। शुरुआत बधाई से शुरू करेंगे, आप दोनों को बधाई हम देना चाहेंगे।
1: धन्यवाद आपका।
0: तो अंजलि जी, एक बात बताइए, इस तरह के कार्यक्रम के पीछे एक विचार होता है, तो विचार कैसे पैदा हुआ कि प्रेमचंद की कहानी और उसका नाट्य रूपांतर बूढ़ी काकी को मंच पर, इसके पीछे विचार कैसा है?
1: अच्छा, लगभग मैं कहूँगी रितेश जी 3 महीने पहले बस एक विचार दिमाग में आया कि एक समय था कुछ साल पहले जहाँ पर प्रेमचंद का नाम गूंजता था चारों ओर, लेकिन कुछ सालों से जैसे प्रेमचंद केवल कक्षा की ही चार दीवारी में कैद होकर रह गए, क्योंकि केवल SC HSC के पाठ्यक्रम में है, BA के पाठ्यक्रम में है, हिंदी प्रचारणी सभा के पाठ्यक्रम में प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। तब यह विचार आया कि उनको न केवल हिंदी के छात्र याद करें, लेकिन पूरा मॉरिशस क्यों न उनको याद करें। तो इस अवसर पर विशेषकर 31 जुलाई को, अभी एक सप्ताह में, उनका जन्मदिवस है, उनकी जयंती है, और इस बार 146 वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं प्रेमचंद की का। तब एक विचार आया कि क्या हम केवल कहानियों को सुनाएंगे किसी मंच पर। तब मुझे लगा कि प्रेमचंद के जो विचार, उनकी जो कहानियां हैं, उसमें जो समस्याएं दिखाई जाती है, क्यों ना एक जीवंत तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी स्पीकिंग यूनियन का उद्देश्य ही है हिंदी का प्रचार करना। तो उनकी एक कहानी का चयन किया गया, और कहानी ऐसी कहानी ली गई जो बिल्कुल जैसे प्रासंगिक हो आज के युग में। तब जाकर उस कहानी को नाटक रूप में परिवर्तित करने का विचार आया, और तभी से तब कार्य शुरू हो गया।
0: बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, और कई लोग आए थे, और देखने में और सुनने में भी आया कि जगह की कमी हो गई थी।
1: जगह की कमी थी,
0: हाउसफुल जैसे कहते
1: हैं, हाउसफुल। और देखिए, हिंदी का कार्यक्रम, विशेषकर नाटक, नाटक विधा में, और वह भी हिंदी में नाटक, तो लगभग 40 से 50 लोग खड़े थे, लेकिन फिर भी उतना ही उत्साहित थे।
0: जो लोग देख नहीं पाए, आप लोगों को बता दें कि हमारे बगल में एक दादी जी बैठी हुई थी। नाटक इतना, उसमें भावनाएं थी, इतनी मार्मिक कहानी थी कि दादी शुरू से लेकर अंत तक उनके आंखों से आंसू आते रहे। और मेरे ख्याल से सभी लोग जो इस हॉल में थे, सभी लोग भावुक हो गए थे। तो जो लोग प्रेमचंद जी के बारे में, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में परिचित नहीं है, उन लोगों के लिए दो शब्द मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में।
1: अच्छा, देखिए, मुंशी प्रेमचंद, उनका अगर सही नाम हम देखें, असली नाम जैसे बोलते हैं, तो वह है धनपत राय श्रीवास्तव। और उनका जो समय काल था 1880 से लेकर 1936, ये जो 50-60 साल बीते, और उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजी शासन चारों ओर फैला हुआ था, तो उन्होंने लिखना आरंभ किया, और उनकी कहानियों में संवेदना गरीबों की थी, और वे धनपत राय, मतलब की के नाम से जाने जाते थे, लेकिन लिखते थे नवाब राय के नाम से। अच्छा। जब अंग्रेजों को पता चला कि नवाब राय लिख रहे हैं, और उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन निकला था, उसमें अनेक कहानियां थी जो अंग्रेजों का विरोध कर रही थी, क्योंकि लोगों में जागृति लाने के लिए ऐसा किया गया था, ये 1907 में था। फिर अंग्रेजों ने सभी पुस्तकों को जब्त कर लिया। आप अनुमान लगाइए, इस तरह से रचना लिखी जा रही है कि कोई गरीब उस कहानी को अगर पढ़ ले तो अंदर से खौल जाए, मतलब देशभक्ति की भावना पूरी भर जाती थी। तो ताकि यह व्यक्ति आगे न बढ़े, उनसे कहा गया कि इस उपनाम से आप ना लिखें, और उनकी पुस्तकें जब्त कर ली गई।
0: अच्छा।
1: तब

0: धीरे धीरे बाद में चलकर, उस समय एक पत्रिका निकलती थी जमाना, मासिक पत्रिका थी, और उनके एक मुंशी निगम जी थे उनके संपादक। तब निगम ने उनसे कहा कि देखो क्यों ना तुम प्रेमचंद के नाम से लिखो, और मुंशी क्यों उन्हें कहा गया, इज्जत के नाते, सम्मान सूचक शब्द है, तो प्रेमचंद, प्रेम का चांद, चांद मतलब जो शीतलता प्रदान करे, जो प्रकाश फैलाए। तो प्रेमचंद की हर एक कहानी उपन्यास को आप उठाकर पढ़ लेंगे, उसमें प्रेम, भाईचारा, सामाजिक अंधविश्वास का विरोध, पूरा एकता की भावना, देशभक्ति की भावना, तो सब प्यार के ही इर्द गिर्द हैं। तब जाकर उनका नाम हुआ प्रेमचंद।
1: बहुत ही सुंदर जो आपने कहा, मेरे ख्याल से जो हिंदी के छात्र लोग अब सुन रहे और देख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आदर्श जी हमारे साथ है। आदर्श जी, आप डायरेक्टर है वाकवा रंग भूमि कला मंदिर, और एक बार फिर से बधाई आपकी टीम के लिए। और बहुत ही सुंदर नाटक था, बहुत ही देखने में जैसे ऐसा लग रहा है कि एक हकीकत, समाज की हकीकत हमारे सामने थी। तो आदर्श जी, इस कहानी को खेलने के पीछे आप लोगों ने किस तरह से अपनी परिश्रम, अपना एफर्ट लगाया?
2: सर्वप्रथम तो मैं बहन जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जब से मैं उनका छात्र रहा हूँ तब से मुझे नाटक में प्रोत्साहित करती आ रही हैं, और जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा तो मुझे पहले सोचा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं कहा आदर्श क्या ये हम कर सकते हैं? हमने जी कहा हाँ बहन जी हम कर सकते हैं, पर कहानी क्या होगी? फिर हमने कुछ कहानियों पर विषय हमने विचार किया, फिर उन्होंने कहा नहीं हम बुरी काकी को लेते हैं, क्योंकि ये जो समाज में हो रही जो बुजुर्गों के प्रति जो व्यवहार हो रहा है, ये समाज का एक जैसे आईना है, दर्पण है, तो इस नाटक पर हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। फिर जब कहानी आई तो हमने उसको पहले पढ़ा, बहनजी ने कहा तुम अपनी टीम के साथ बैठो, पढ़ो, देखो क्या कर सकती हो और नाटक को कैसे ले जा सकते हैं। फिर जब हमने कहानी को पढ़ा, फिर इसको नाटक में कैसे कन्वर्ट किया, ये हमने कुछ रिसर्च किए पहले रिसर्च होता है। हमने बहनजी से बात किया, बहनजी ने अपने विचार दिए, फिर हमने ऑनलाइन भी कुछ जो भारत में जो नाटक मंचित हो चुकी है उनको देखा, टीम के साथ बैठक हुई, और खासकर जो एक कलाकार हैं मीनाक्षी, वो भी उन्होंने बहुत सहयोग दिया नाटक लिखने के लिए, क्योंकि मैंने कहा नाटक तो कहानी तो है पर उसके डायलॉग्स तुम एटलीस्ट बॉडी लिखना शुरू करो। फिर जब हमने उस नाटक को पढ़ना शुरू किया, डायलॉग्स को पढ़ना शुरू किया, फिर जब टीम बैठी तो हमने सोचा शुरुआत में हम कुछ अलग करते हैं, कुछ ये डाल सकते हैं। फिर मैंने बहन जी से भी कहा हमने जो सूत्रधार डाले जो कहानी में नहीं है, ताकि वो कुछ अलग टच दे। पहले हमने कठपुतली सोचा था, फिर उनको सूत्रधार बना दिया ताकि वे फ्रीली मूव कर सके, और फिर जब बॉडी बन गया, स्क्रिप्ट बन गया, हमने कास्टिंग शुरू किया। कास्टिंग की प्रक्रिया अलग होती है, हम देखते हैं कौन सा कलाकार उसके लिए फिट होगा। तब हमने कलाकारों को बुलाना शुरू किया, एक जैसे डायलॉग रीडिंग किया, तब हमने देखा यस दिस कैरेक्टर विल फिट द रोल। सो फिर इसके बाद आता है टेक्निकल, टेक्निकल पर हम ध्यान देते हैं, जो आपने देखा होगा लाइट्स और म्यूजिक का चयन हम करते हैं, मैं वो स्वयं खुद करता हूँ टीम के साथ, तो उस पर भी ध्यान देते हैं, सेटिंग पर ध्यान देते हैं। और फिर ऐसे ऐसे रिहर्सल करते गए, बेंजी आई, वो उसने पॉलिश, बेंजी उन्होंने पॉलिश किया, फिर आभी आई, हमने देखा कैसे बच्चों के साथ हमने काम किया, फिर बुजुर्गों के साथ काम किया, फिर कैसे पोजिशनिंग, मास्किंग एंड जो टेक्निक्स होते हैं उसको मिलाकर नाटक हम मंचित कर पाए।
1: बहुत ही सुंदर। इसके इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न मेरे हैं, आप इसे पूछा चाहेंगे, लेकिन अंजलि जी लगे हाथ, आदर्श ने एक छोटा सा सारांश दे दिया, लेकिन आपसे हम सुनना चाहेंगे मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें से एक बूढ़ी काकी ही क्यों?
0: हाँ, आपने सही कहा, उनकी अनेक कहानियाँ हैं और प्रसिद्ध भी हैं, कफन है, पूस की रात है, ठाकुर का कुआं है, दो बैलों की कथा है, ऐसे करके अनेक कहानियाँ हैं। तो मैं विशेषकर एक ऐसी कहानी की खोज में थी जो कि जैसे कोई व्यक्ति वहाँ जो दर्शक आए और इस नाटक को देखे, वह उस कहानी में अपने आप को देख सके। तो सभी कहानियों में समस्याएं हैं, लेकिन इस कहानी में जैसा कि अभी आदर्श ने थोड़ा सा बताया, जानते हैं समाज में आजकल जो हमारे बड़े लोग हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे वृद्ध लोग हैं, कहीं कहीं मैं कहूंगी नई पीढ़ी में, और कई आए दिन अखबारों में हम देखते हैं कैसे उनका अपमान हो रहा है, हत्या भी हो रही है। जैसे

0: एक जमाना था कि आप किसी बुजुर्ग को देख लें तो सिर झुक जाता था, आप नमन करते थे, नमस्ते करते थे। तो धीरे धीरे जैसे कुछ मूल्य कम होते जा रहे हैं, तब यही विचार आया कि जमीन जायदाद को लेकर घर टूट रहे हैं, बड़ों का अपमान किया जा रहा है। कभी जैसे आप जमीन जायदाद किसी बच्चे के नाम पर दे देते हैं तो बच्चे उसी दिन से माँ का या पिता का अपमान शुरू कर देते हैं। तो उस कहानी की समस्याएं बड़ी ही जीवंत थी और ऐसी कहानी को मैं प्रस्तुत करना चाहती थी कि उस कहानी को जैसे कोई देखे तो एक संदेश लेकर घर जाए। अगर उससे कहीं गलती हो रही हो कि बड़े लोगों का अपमान उसने कभी किया हो तो आत्मग्लानि उसके मन में आए और चरित्र बदले। जो हुआ, क्योंकि जैसा कि आपने शुरू में कहा कि इतनी वह कहानी संवेदनशील थी, और मैं धन्यवाद देती हूँ आदर्श के और वाकवा रंगभूमि कला मंदिर के कलाकारों को। क्योंकि क्यों मैंने सोचा, इनको मैंने फ़ोन किया क्योंकि मैं ऐसे ग्रुप की तलाश में थी जहाँ नौजवान लोग हों, जिसमें युवा हों, जिसमें बच्चे हों। क्योंकि एक बच्चा जब उस बूढ़ी काकी के प्रति उसका अपमान कर रहा है या उसका सम्मान नहीं कर रहा है तो लगता है क्योंकि समाज में भी तो ऐसा हो रहा है ना, तो ताकि वह सच्चाई से बिल्कुल नज़दीक हो, इस वजह से बड़ी खूबी के साथ आप लोगों ने भाग लिया। और आदर्श, मुझे बड़ा गर्व है क्योंकि जितना पॉजिटिव फीडबैक मुझे उस कार्यक्रम के बाद मिला, जितने फ़ोन आए, जितने मैसेजेस आए, मेरा भी जैसे मैं कहूँगी जोश दुगना हो गया कि हमें यहाँ रुकना नहीं है, इस तरह के स्तरीय और अनेक कार्यक्रम आगे करने हैं, और नाटक को भी जैसे हिंदी भाषा में नाटक का प्रचार अधिक करना है क्योंकि नाटक के माध्यम से लोग उसे जल्दी ग्रहण कर लेते हैं संदेश को, तो इस पर अभी हमें और आगे बढ़ना है।
1: आपने आपने एक बात कही इसके ऊपर, मेरा एक और प्रश्न मन में आ रहा है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इस नाटक में वह क्षमता है कि समाज में एक सुधार लाए
0: जी।
1: क्या हिंदी साहित्य बड़े स्तर पर हम देख रहे हैं, क्या हिंदी साहित्य में वो क्षमता है कि वह समाज में सुधार ला सके?
0: जी बिल्कुल। अगर हम प्रेमचंद की बात कर रहे हैं, देखिए वे तो हिंदी कथा साहित्य के पुरोधा है, 19वीं सदी में जैसे बोलते हैं ना पायोनिया, और उनको उपन्यास साहित्य का सम्राट ओपेरा कहा जाता है। और केवल उनको नहीं, उनके अतिरिक्त जितने हमारे बड़े बड़े साहित्यकार हैं, आप चाहे हिंदी कविता ले लें, चाहे हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, उसमें तो ऐसे मूल्य, ऐसी ऐसी संवेदनाएं हैं कि केवल पढ़कर व्यक्ति अपने आप को बदलने में समर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं तो कहूंगी, इस मंच का फायदा उठाऊंगी, साहित्य पढ़िए, हिंदी साहित्य में रुचि लीजिए और अपने आप को बदलिए, समाज को बदलिए।
1: बिल्कुल, पढ़ना तो है, ना कि सिर्फ फोन पर लगे हाथ ऐसे ही स्वाइप करना है, सब करना है।
0: और एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, जानते हैं ये जो कलम होती है साहित्यकारों की कि लेखकों की, यह एक अस्त्र होता है। कभी कभी आप हाथों में शस्त्र लेकर भी जाकर हिंसा दिखाकर कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन उस लेखनी में इतनी शक्ति होती है कि खाली पढ़ के व्यक्ति में वह आत्मबोध और ग्लानि या जो भी है अगर दोष हो उसका अंत हो जाता है।
1: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने कहा कि बूढ़ी काकी का मंचन कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ और स्टेज भी हुआ और सफलतापूर्वक लोगों के हृदय को छू लिया। आदर्श, कहानी को नाटक में प्रस्तुत करना कितना सरल या फिर कितना कठिन है?
2: मैं कहूँगा हमारे लिए, अभी के लिए मेरे लिए उतना कठिन नहीं है क्योंकि हम लगातार नाटक खेलते रहते हैं। जैसे कहानी मेरे लिए जैसे कॉन्सेप्ट है, मैं उसको एक कहानी नहीं लेता, एक कॉन्सेप्ट लेता हूँ। जैसे पिछली बार भी हमने कहा था जब हम भारत भी गए थे, एक कहानी आया, उसको एक कॉन्सेप्ट की तरह ले लिया, फिर उसको क्या करना है, उसको तोड़ मोड़ के, उसको डायलॉग्स डिलीवरी करके, उसमें टेक्निक्स ऐड करते, तब वो नाटक बन जाता है। तो उतना कठिन नहीं है हमारे लिए अभी के लिए, मैं कहूँगा खासकर मेरे लिए, क्योंकि हम एक साल में लगभग 15 से 20 नाटक करते हैं। और मैं कहूँगा ये, मैं बहन जी का आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि बचपन से मैंने जो भी नाटक किए हैं, जितने भी पुरस्कार जीते हैं, फेसबुक पर तो विशेष मिलते ही हैं, पर पहली बार व्हाट्सएप के जरिए या जो टीम के जरिए इतने सारे मैसेजेस मिले मुझे, जब मैं फाइनल्स भी प्रथम पुरस्कार जीते हैं, उतना कभी नहीं मिला जितना इस नाटक के माध्यम से होता है। और मैं हिंदी स्पीकिंग यूनियन का खास कर से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें ये अवसर दिया, और अगर ये अवसर नहीं मिलता तो फिर हम यही करते जो हम नाटक करते हैं कंपटीशन के लिए या अलग, वो ही करते। पर एक ऐसा अवसर आया और

0: इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं।
1: इस नाटक में हमने देखा कि बूढ़ी काकी थी, मतलब वयस्क एक महिला थी, और उसके साथ साथ बच्चे भी लोग थे। तो मुझे याद है एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था इंटरव्यू में, वही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चों के साथ काम करना कितना कठिन होता है, कितना आसान होता है?
0: नहीं, वो मैं कहूंगा वो कठिन होता है।

0: हैं उनको जो नाटक पहले समझना होगा। वो हम कहते हैं नाटक खेलोगे, वो कहते हैं हाँ खेलेंगे, पर जब आते हैं नाटक क्या करता है, एक डिसिप्लिन आता है, एक अनुशासन आता है, और बच्चों में वो अनुशासन जब हम बचपन से ही डालते हैं वो फेज बहुत कठिन होता है। पहले जब बेंजी भी आई तो उन्होंने देखा ये बच्चे तो यहाँ वहाँ हैं, अभी हमने जब उनको बैठाया, फिर जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तब थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, फिर हमने कहा क्यों हिचकिचाहट है, वी हैव टू सी व्हाई। उनको वो डायलॉग समझना पड़ेगा पहले, तो वो डायलॉग्स बोल रही हैं पर उनकी उम्र बहुत वे बहुत छोटे हैं, शायद हिंदी वे पढ़ते हैं पर शायद वो शब्द नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है,
1: मतलब तो गहराई से नहीं समझ पाते।
0: तो फिर हम उनको क्रियोल में बताते हैं कि तुम ये बोल रहे हो और ऐसे बोलना चाहिए क्रियोल में, फिर हिंदी में वो ही बोलते हैं उसी भाव के साथ, तब हम उनके साथ काम करते हैं। शुरुआत में कठिनाई होती है पर जब रिहर्सल करते जाते हैं, फिर जब उनको नाटक पता चलता है कैसे चल रहा है, कहानी कैसी है, तब वे लाइक सीरियस हो जाते हैं और काम आसान हो जाता है हमारे लिए।
2: नाटक की तैयारी से पहले आपने बूढ़ी का की कहानी पढ़ी थी?
0: जी पढ़ी थी, जब मैं शायद उत्तमा या जब हम पाठ्यक्रम में हम मैंने किया था पर भूल गया था, जब बेंजी ने कहा मैं कहूंगा, मैंने कहा कफन मुझे याद है क्योंकि हमने ये मंचित किया था जी, तो वो नाटक मुझे पता है क्योंकि हमने वो किया था, पर जब हमने कहानी फिर से पढ़ा तो वो याद आ गया, वो याद कहानी पता थी पर क्या हुआ था एग्जैक्टली वो पता नहीं थी, पर जब हमने फिर से पढ़ा तो सब फ्लैशबैक वो याद आ गया।
2: कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं अंजलि जी, एक बार फिर से मुंशी प्रेमचंद के जीवन के लेखन में हम चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद की भाषा के बारे में हम जानना चाहेंगे, उसकी भाषा कैसी भाषा थी?
1: प्रेमचंद की रचनाएं अगर जनमानस को इतनी मतलब छू लेती थी सीधे उनके दिल को, इसका कारण था कि वे जन भाषा का प्रयोग करते थे। जन भाषा मतलब जैसे बोलते हैं ना द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, जो गांव के लोग थे, देहाती लोग थे जैसे हम लोग कहते हैं, आसपास में जो भोजपुरी भाषा या फिर जिन मुहावरों का प्रयोग वे लोग किया करते थे बोलचाल में ही, ऐसे शब्दों को वे अपनी लेखनी में लाते थे ताकि व्यक्ति जब पढ़े तो उसे नहीं लगे कि अरे ये तो विदेशी है, जैसे कि व्यक्ति अपने आप को उसमें न देख पाए। तो ऐसी भाषा वे बोलते थे, बिल्कुल स्पष्ट, कहीं कहीं संस्कृत के शब्द तो आते ही थे, और जैसा कि हम जानते हैं कि आरंभ में देखिए प्रेमचंद उर्दू में लिखा करते थे, फिर धीरे धीरे वे हिंदी में आ गए शुरुआती दौर में, तो इसीलिए उनकी भाषा में उर्दू के भी अनेक शब्द मिलते हैं। तो हिंदी उर्दू संस्कृत का मिश्रण, देशज शब्दों का मिश्रण, भोजपुर और लोक भाषा का भी मैंने नोट किया है, कई शब्द उसमें आए हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, क्योंकि हम बूढ़ी काकी की ही बात कर रहे हैं, और जैसे जो लोग जिन लोगों ने अब कहानी नहीं पढ़ी है, बस दो वाक्यों में मैं बताना चाहूंगी कि समस्या क्या थी, कि जो बूढ़ी काकी है उसने अपने भतीजे के नाम बचपन से ही उसको देखा, लाड प्यार दिया और पूरा जमीन जायदाद उसके नाम कर दिया। केवल यह था कि मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बन जाएगा क्योंकि मेरा कोई नहीं है, तो अब ये लोग मुझे देखेंगे। लेकिन होता क्या था कि जो एक बूढ़ी स्त्री है, एक व्यक्ति को कम से कम जीवन में जो तीन मूल आवश्यकताएं होती हैं, जैसे बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, कम से कम इसे तो पूरा करना चाहिए ना। तो पहला जो मूल आवश्यकता है भूख की समस्या, वहीं पूरी नहीं हो रही थी। तो एक समय में उसे समय पर भोजन नहीं मिला, शादी का माहौल था, दावत हो रही थी, सभी लोग खूब आनंद ले रहे थे, और ऐसे में भूखी पड़ी थी जो बूढ़ी काकी है। और एक समय उसकी जो बहू आती है तो बहू उसे डांटती है, जब वह बहू से कहती है कि बहू भूख लगी है, खाने को कुछ है, तो देखिए किस तरह से बहू बात करती है। और चूंकि यह मैं कहानी में से एक अंश ले रही हूँ जिसको हू बहू नाटक में रखा गया है, तो बहू रूपा ने कहा अपनी मतलब बूढ़ी काकी को बोल रही है, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि भाड़, कोठड़ी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई, जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती, डायन न मरे न मांचा छोड़े। नाक कटवा

0: कर दम लेगी, इतना ठूसती है तो न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। देखिए, चार पांच पंक्तियां मैंने खाली एक संवाद लिया, लेकिन इस संवाद में आप देखेंगे प्रेमचंद ने कितने मुहावरे मुहावरों का प्रयोग कर लिया, जो लोक भाषा भी है। दम घुटना, भगवान को भोग चढ़ाना, छाती पर सवार हो जाना, मतलब बुरी तरह से परेशान करना, तुम्हारी जीभ जल जाए, है ना। तो किसी व्यक्ति से आप कहेंगे कि बस अंदर बंद हो जाओ, सीधे सीधे सपाट तरीके से, तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बूढ़ी स्त्री से आप कह देंगे कि अच्छा तुमने नहीं खाया है तो बस खाती रहो, बस खाती रहो के बजाय अगर आपने कहा इतना ठूसती हो, तो जैसे कितना अपमानजनक शब्द हैं। तो देखिए, हर एक शब्द का चयन जब प्रेमचंद करते थे, हर एक शब्द कैसे जाकर सीधे दिल पर सवार हो जाता है, जैसे चोट लग जाती है दिल को। और एक शब्द है जैसे कि डायन न मरे न मांचा छोड़े, ये लोक कहावत है। जैसे कहा जाता है ना कि जो डायन है चाहे कहीं भी जाए, उसका जो मचान होता है उसको वह छोड़ती नहीं है। तो जैसे ये सुबह से बोल रही है बहू भूख लगी है, तो डायन बन चुकी है। अब आप डायन बोलेंगे अपनी एक तरह से सास को, क्या है ये। तो इस रूप में वह इसका अपमान करती हैं। तो बहुत सुंदर ढंग से प्रेमचंद अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, और भाषा के माध्यम से ही मैं कहूंगी आज, क्योंकि भाषा तो वाहिका है ना, व्हीकल है। भाषा नहीं होगी तो कैसे कहानी की संवेदना सामने आएगी। तो उनकी भाषा ही उनकी शक्ति थी, जिसके कारण हम भी इतना प्यार करते हैं उनसे और उनकी कहानियों को पढ़ने के लिए लालायित होते हैं। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि उस कार्यक्रम में कई लोग मुझे मिले, जब नाटक हो गया तो कई लोग बधाई देने आए, उसमें वयस्क लोग थे, जवान लोग थे, यहाँ तक कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि जब हमारा पोस्टर मतलब चारों ओर पब्लिक में गया था, हमने आमंत्रित किया था सभी को आने के लिए, उन्होंने कहा इंटरनेट में जाकर उन्होंने कहानी पढ़ी, क्योंकि एक जिज्ञासा आ गई थी
1: मंचन देखने के बाद।
0: मंचन, हाँ नहीं, देखने से पहले,
1: पहले
0: वही बोल रही हूँ, देखने से पहले। और मेरी बगल में विदेश मंत्री, विदेश मामले मंत्री बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे खुद कहा कि जब आपने आमंत्रित किया तो मैं यहाँ आने से पहले मैं कहानी पढ़ के आया। तो ये सब तो मुझे प्रोत्साहित करता है कि चलो, इतनी व्यस्तता के बावजूद एक जिज्ञासा आ गई ना, एक इंटरेस्ट। और बड़े सुंदर ढंग से आदर्श ने एक पोस्टर भी बनाया था, बहुत रुचिकर, बहुत आकर्षक, उसे देखकर ही मतलब नाटक को देखने का मन करता है।
1: बिल्कुल, आप लोग तो, साथ देते रहिए। हम हाँ। बात कर रहे हैं बूढ़ी काकी का जो नाट्य रूपांतर, कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ था, तो इसके बारे में और बात करेंगे। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: नाटक के बारे में बात कर रहे हैं और नाटक की खासियत यही है, इसमें जो भी कहानी हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि नाटक में भाव होती, भावनाएं होती है, नाटक में अभिनय होता है, नाटक में दर्शक लोग होते हैं जो इन सभी चीज़ों को जो मंच पर चल रहा है उसको आत्मसात कर सके और अपने जीवन में भी उतार सके। बूढ़ी काकी नाटक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की और उसका नाट्य रूपांतर किया गया है और हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा इसको मंचित किया गया था बाकुआ रंग भूमि कला मंदिर के सहयोग से। अंजलि जी हमारे साथ हैं। अंजलि जी, आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। हिंदी साहित्य बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही बड़ा है, उनमें बहुत सारी विधाएं हैं, उनमें से एक कहानी और नाटक, दो विधाएं, लेकिन दो अलग अलग विधाएं कह सकते हैं, लेकिन दो या फिर दोनों साथ साथ चलती है?
1: नहीं, जैसे आपने कहा कि साहित्य की अनेक विधाएं हैं, तो मूल रूप से कहानी एक अलग विधा है और नाटक एक अलग विधा है। दोनों की अपनी विशेषताएं होती हैं और अपनी स्पेसिफिसिटीज जैसे हम लोग कहते हैं होते हैं, लेकिन जो एक कहानी है उसको जब हम नाटक में रूपांतरित करते हैं, कहानी में वर्णनात्मकता अधिक आ सकती है, जहां आप देखिया कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, नारेशन ला रहे हैं, नारेट कर रहे हैं, लेकिन वही बातें अगर आप रंगमंच पर कर रहे हैं साज सज्जा के साथ, जैसे आपने कहा अभिनय के साथ, उसमें वर्णनात्मकता को बहुत नहीं लाया जा सकता। और जीवंतता लाने के लिए जहाँ कहानियों में यत्र तत्र जहाँ तहाँ कुछ संवाद आते हैं ताकि कहानी रुचिकर बने, तो दूसरी ओर नाटक में तो अधिकतर कार्य संवाद से ही होता है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स होते हैं और कैरेक्टर्स के माध्यम से ही एक कुछ बोलता है तो उसकी प्रतिक्रिया हमें दिखती है। तो मेरा मानना है कि हम दोनों को एक विधा में नहीं रख सकते, दोनों दो बिल्कुल अलग विधाएं, विशेष विधाएं हैं, लेकिन हाँ, अगर आप समन्वय करके एक नाटक की प्रस्तुति करना चाहें तो जैसे कि आदर्श ने कहा कितने वर्षों से वे लोग करते भी हैं, तो वह आसान होता है कि कहानी की संवेदना लेकर आप उसे नाटक के रूप में रूपांतरित करें।
0: आप MGI में काम करते हैं, महात्मा गांधी संस्थान में हिंदी की प्राध्यापिका है, तो क्या पाठ्यक्रम में दोनों विधाएं हैं, नाटक भी है और कहानी भी?
1: हाँ बिल्कुल, केवल दो विधा नहीं है, हमारे यहाँ दो अलग मॉड्यूल्स हैं, पूरा नियमित तरीके से, जैसे 3-4 महीने बच्चे हिंदी फिक्शन पढ़ते हैं, उसमें कहानियाँ आती हैं और उसमें उपन्यास भी आते हैं, और प्रेमचंद का तो पूरा हमारा उपन्यास है कर्मभूमि अभी के लिए निर्धारित है, और नाटक का भी हिंदी ड्रामा पूरा मॉड्यूल है। और इसके अतिरिक्त जहाँ बच्चे सारी बारीकियाँ देखते हैं, पढ़ते हैं, कक्षा में कुछ कुछ जो संवाद है उसका अभिनय करते हैं, और कई वर्षों से हमारा विभाग

0: हिंदी सप्ताह मनाता है सितंबर के महीने में, उसमें विशेषकर नुक्कड़ नाटक एक विधा जो केवल एमजीआई में लगभग 15 सालों
1: पूरे
0: से
1: मॉरिशस
0: होता
1: में,
0: है
1: हम जहां तक हम जानते हैं केवल एमजीआई में
0: तो यहां एक अवसर होता है जहां बच्चे ही खुद अपना समूह बनाकर नाटक लिखते हैं, उसका मंचन करते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और धीरे धीरे कुछ समय पहले मैं अभी सृजनात्मक विभाग जो क्रिएटिव राइटिंग विभाग है उसकी अध्यक्षा थी, अभी पुनः हिंदी विभाग में आ गई हूँ, तो ये जो नाटकों का मंचन बच्चों ने किया, चाहे उन्होंने मंचन कर दिया नुक्कड़ नाटक में, तब हमारी जो पत्रिका निकलती है वसंत पत्रिका, फिर पूरा जैसे कि नाटक के रूप में थोड़ा संशोधन करके उन नाटकों को प्रकाशित भी किया गया। तो इस तरह से काम है, मतलब कि हम छात्रों को पूरा सहयोग देते हैं, उनको सिखाते हैं, अलग मॉड्यूल हिंदी कहानी और अलग मॉड्यूल हिंदी नाटक।
1: आप लोग भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, लेखक को तैयार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कहानी की बात हो रही है, आदर्श हमारे साथ है। कहानी की तुलना में आपने नाटक को प्रस्तुत किया है
2: जी।
1: नाटक में कहानी की मौलिकता को रखते हुए आपने नाटक में ऐसी कौन सी अतिरिक्त चीजें डाली है ताकि नाटक रोचक हो?
2: पहले में अगर आप देखेंगे जब नाटक की शुरुआत ही होती है तो दो नारी सूत्रधार आते हैं, दो लड़की आते हैं और कहते हैं अरे वाह इतने सारे लोग आ गए, पर दूसरा पूछती हैं इतने सारे लोग यहाँ क्यों? फिर कहते हैं क्या ये हमको देखने आए हैं? फिर हमने कुछ कॉमेडी एस्पेक्ट भी डाले हैं ताकि लोगों को, क्योंकि इस नाटक में कॉमेडी बिल्कुल नहीं है, पर हमने कॉमेडी के कॉमेडी का प्रयोग करके हमने ये दो सूत्रधार को पहले डाला है ताकि लोगों को के चेहरे पर नाटक से पहले वो मुस्कान आए। और नाटक के बीच में भी एक जैसे भंडारी है वो भी आता है मोटे पेट के साथ, वो भी जैसे जब वो देख हाथ में लेकर आता है तभी लोग उसके हाव भाव और एक्शंस, उसका डायलॉग सिर्फ ये है थोड़ा सा नमक मिलेगा, पर जब वो आया उसका जो बॉडी मूवमेंट था ना उसी से लोग हंस पड़े
0: लगे।
2: और जो दूसरा उसने जो दो डायलॉग्स कहा दो डायलॉग्स पर लोग हंस पड़े। सूत्रधार का प्रयोग हमने क्यों किया? ताकि लोगों को जैसे कहानी के बारे में हम बता सके के शुरुआत में, क्योंकि हम पूरा कहानी तो नहीं ले सकते, पर सूत्रधार ये करते हैं कि कहानी पहले कुछ बता देती है क्या है, इसमें वृद्ध महिला की कहानी है, क्या देखने वाली है, तो वे दो अपने जो इमोशंस हैं वो दिखाते हैं पहले। जैसे कॉमेडी जैसे मैंने बात किया है वो क्या मेरी मैं हम
0: लचक
2: देखो मेरी मटक तो देखो, तो वो हम कहानी के बारे में बता रहे हैं और प्रेमचंद जी के बारे में भी बता रहे हैं। जैसे हम बताते हैं वो कौन है, कोई एक्टर, कोई सुपर हीरो या कोई जादूगर, फिर कहते हैं हाँ वो तो शब्दों के जादूगर थे। तो इस प्रकार से हमने शुरुआत में वो नाटक में वो कहानी में नहीं है पर नाटक के लिए ड्रामाटाइजेशन के लिए हमने वो अंश डाला। फिर ऐसे ऐसे अंश हैं जैसे बेंजी ने अभी वो पात्र किया था बहू का, वो जब अगर आप देखेंगे तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे पर जब देखेंगे तो उसके मूवमेंट्स, जब काकी कहती है बहू बहुत भूख लगी है वो स्टेप्स पर जाती है, तब घूमती है उसे देखती है
0: तिरछी नजरों से
2: फिर जब वो स्टेप्स जैसे वो स्टेप्स हैं वो स्लोली स्लोली उसको डायलॉग्स के साथ इतना खाती हो, फिर वो जो हम डालते हैं ना वो राइट जाती है लेफ्ट जाती है जैसे बात करती है ना जो प्रोजेक्शन होता है और जो जैसे स्पीड में वो कह रही है इट्स लाइक अ प्रेशर ऑन द अदर आर्टिस्ट, तो वो भी दिखता है। लोगों के घर में कुछ दादियों के साथ कुछ वृद्ध महिलाओं के साथ शायद ये हो रहा है,
0: शायद नहीं हो रहा है कहेंगे आज के समाज,
2: सो वी कैन सी दैट, तो लोग उसको रिफर कर सकती है अरे हाँ मेरी बहू भी मुझसे ऐसे ही बात करती है, मेरा भी दिल ऐसे ही दुखता है, तो दीज मोमेंट्स आल्सो क्रिएट दैट। अभी एक ऐसा पोर्शन है जब वो कहती है अभी शादी है पर इस बुढ़िया का क्या करें,
0: इसको बंद कर देते हैं,
2: बंद कर देती है, अगर बंद करेगी तो चिल्ला चिल्ला के सबको बता देगी, अरे पर ये नहीं कर सकते यही तो हमारी सोने की मुर्गी है ना, क्यों? क्योंकि इसी के पैसों से वो घर चला रही है।

0: तो ये जो मोमेंट्स हैं वो कलाकार को आगे लेता है, उसको वो कम धीमी आवाज में, अरे यही तो हमारी सोने की चिड़िया है, जैसे हाँ। ये जो सब होती है वो कहानी में ऐसे नहीं है, पर जब हम दिखाते हैं इट्स द सेम रिफ्लेक्शन, पर वो एक्टिंग के जरिए उनको दिखता है। और अंत में जब लाडली आती है, वो पहले उसके पहले काके भगवान से पूछती है कहाँ हो तुम, क्या ये अन्याय नहीं दिख रहा है तुम्हें। फिर हमने जब वो धरती पर गिरती है, सो जाती है, आपने देखा होगा हमने थंडर डाला है, जैसे साइक्लोन डाला है थोड़ा सा, कि वो पानी में रात भर वो भीगी रही, वो नहीं था पर हमने डाला क्योंकि म्यूजिक का इफेक्ट उस समय बहुत हाई है और टेम्पो भी बहुत हाई है, लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि उसकी मनोस्थिति क्या होगी उस समय, तो दैट्स व्हाई हमने वो डाला है। और जब लाडली आती है, वो झांकती है, पीछे देखती है कि अम्मा देख रही है, इट्स नॉट डायलॉग, इट्स अन एक्टिंग, क्या अम्मा देख रही है कोई है, नहीं है, वो फिर से निकलती है, फिर से घूमती है, देखती है, नहीं है ना, फिर भागती है, वहां काकी को देखती है नीचे, और जो आवाज है वो जैसे वो बात नहीं कर पा रही है क्योंकि वो बहुत दुखी है, काकी पूरी लाई हूं, और काकी उस समय वो बहुत कमजोर है तो वो बात नहीं करती, पर उसके जेस्चर से हम जब हमने किया, हमने कहा जैसे इंदिरा जी को जो बहुत बहुत एक्सपीरियंस कलाकार हैं, पिताजी के समय से वो नाटक करती आ रही हैं, तो हमने उनसे कहा चाची आप ऐसा कीजिए, आप जब कोशिश करेंगे उठने के लिए आप फिर से गिर जाइएगा ताकि वो दिखे,
1: कमजोरी जो है
0: कमजोरी दिखे, तो दीज जजेस डोंट नीड डायलॉग्स, तो वो समझ जाती हैं। और जब आपने देखा जो क्लाइमैक्स का सीन है, जब वो जाती है, जो पत्ते रहते हैं, जो झूठा रहता है, जो मेहमानों ने खाकर उनको फेंक दिया है, उसमें से वो खाना खाती है, तो हमने जो समय भी दिया है ना, वी ट्राई टू स्ट्रेच इट, क्योंकि इट्स यू डोंट नीड वर्ड्स या डायलॉग्स टू अंडरस्टैंड दैट, जो एक्टिंग वो कर रही है, वो खाना लेकर ऐसे खा रही है, पट्टी चाटती है, कोई भी देखेगा उसका जो हृदय है वो बाहर आ जाएगा।
2: आदर्श को सुनकर अंजलि जी मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, यह सवाल सदियों से रहा है, मैं चाहता हूँ इस मंच पर आपसे मैं पूछ लूँ, उपन्यास को देखे, नॉवल को देखे, और नॉवल को जब हम फिल्म के रूप में देखते हैं तो डायरेक्टर कुछ अतिरिक्त डालता है, कहानी थी, कहानी को हमने मंच पर लाया, इसमें कुछ अतिरिक्त डाला, कहीं ना कहीं जो लोग जिन्होंने बूढ़ी काकी नहीं पढ़ी अब नाटक को देखा, ये लोग समझेंगे कि हाँ कहानी में दो कठपुतलियां हैं, कहानी में ऐसी है, तो कहीं ना कहीं कहानी की मौलिकता समाप्त नहीं हो रही या फिर घट नहीं रही है?
1: नहीं, देखिए इस तरह से अगर आप चीज़ें जोड़ रहे हैं जो एक आमूल परिवर्तन ला रहा है उस नाटक में, तब वह ठीक नहीं है। जब आप उस समस्या को ही बदल रहे हैं या नए नए पात्र उसमें आप जोड़ रहे हैं, तब मुझे लगता है आप न्याय नहीं करेंगे। यहाँ अभी आदर्श ने जिन दो सूत्रधारों की बात की, जो दो लड़कियाँ आई थी, युवा लड़कियाँ, ये तो कहानी प्रारंभ होने से पहले है ना, जहाँ पर उन्होंने पृष्ठभूमि बांध दी, बैकग्राउंड बांध दिया, क्योंकि 40 मिनट में आप 6-8 पृष्ठों की कहानी को आपको पूरा न्याय के साथ प्रस्तुत करना है, वह तो बड़ा कठिन है। तो जहाँ जहाँ वर्णन करना है, जैसे कहानी में जहाँ जहाँ वर्णन है कि ये हुआ, ये सब क्यों हुआ, अतीत में गए, पहले बूढ़ी काकी ने क्या किया था, ये सारी जानकारियाँ सूत्रधार ने दे दिया, तो कुछ बदला नहीं। अब रही मौलिकता की बात, जैसे आप बोल रहे हैं, मेरा मानना है, थोड़ा सा मैं जोड़ देती हूँ जो आदर्श ने कहा, जब हम उस कहानी का मंचन कर रहे हैं नाटक के रूप में, तो क्या उसमें हम नयापन ला रहे हैं? नयापन भी कह सकते हैं, उसमें लिखा था कि शादी का माहौल था, तिलक का अवसर था, गांव से कई मेहमान आ चुके थे और जेवनार गीत बज रहा था। उस कहानी में मात्र दो शब्द आए, जेवनार गीत बज रहा था, अब बैकग्राउंड में हो कि लोग गा रहे थे इस रूप में। तब जाकर रिसर्च के साथ हमने खोजा जेवनार गीत क्या है, वह एक लोक गीत है जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में और वहाँ के जो भोजपुर गांवों में जब भी कोई शादी हो, जहाँ

0: दावत हो तो यह गाना बजता है, और इस गाने में भोजन की ही बात होती है।
1: जीवनाग गीत के बारे में बात कर रहे हैं तो भोजपुरी इलाका में होता है, होता भारत है, में हाँ। लेकिन मॉरिशस में नहीं है
0: जेवनार गीत। अब इतना तो मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया है, जेवनार गीत मैंने नहीं सुना,
1: शायद हमारी दादी से पूछनी
0: पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा, उनको जरूर पता होगा। तो यहाँ पर जो जेवनार गीत जो वहाँ जोड़ा गया कि राजा जनक जी करावे जेवनार पूरी गरम गरम, तो वही हम कह रहे हैं हमने कुछ बदला नहीं है, क्योंकि कहा है कि जेवनार गीत बज रहा है, लेकिन थोड़ी सी मौलिकता लाने के लिए। और जो अब देखिए एक नाटक बहुत अगर इमोशनल हो जाएगा, शुरुआत से लेकर अंत तक केवल दुख दुख दुख, तो व्यक्ति तो एक तो बोर भी होगा और उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा। तो सूत्रधार के आने से ये जो बावर्ची है, वहां तो कहा है बावर्ची, लेकिन बावर्ची का वर्णन उस समय में बावर्ची लोग जब कुछ पकाते थे, पूरी छानते थे, मिठाइयां हलवा आदि पूरी बन रही थी, तो उनका एक ढंग था मोटे पेट के साथ आना, ऐसे एक कपड़ा है गमछा जैसे बांध देना ऊपर, तो ये सब चीजें जोड़कर कहानी को बिना बदले न्याय करते हुए हमने उसे प्रस्तुत किया।
1: बहुत ही सुंदर
0: है। वैसे तो कितनी बातें हैं, लेकिन
2: उसमें के साथ जोड़ना चाहूंगा क्यों वो कठपुतली क्यों महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि नाटक में बहुत चेंज ऑफ सीन्स होते हैं, जैसे बहुत दिन गुजरती है, पर आप ध्यान दीजिएगा उसमें ब्लैकआउट्स हुई पर आपको उसका आभास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब ब्लैकआउट होना था, चेंज ऑफ सेटिंग, तब सूत्रधार आए, कुछ इनपुट हुआ, कलाकार आए, उनकी जनरली जब लोगों के ध्यान उन पर गया, फिर क्या हुआ, चेंज ऑफ सीन। तो वी डिडंट वांट टू वेस्ट टाइम, ताकि अगर आप एक ब्लैकआउट रखेंगे, ब्लैकआउट क्यों रखती है, आप कपड़े बदलने जाते हैं, चेंज ऑफ सेटिंग्स होता है, पर हमने वो लाइट्स के माध्यम से किया और वो दो कठपुतलियों का इस्तेमाल भी किया जो सूत्रधार था जी, और अंत में भी हमने क्यों उनको उनको क्यों उनको डाला, क्योंकि शायद जो लोग नाटक भी देखने आए वे पहली बार नाटक देख रहे हैं, ओके, और जो सूत्रधार हैं पहले का जो कैरेक्टर्स हैं पात्रों से मिलाते हैं, तो जब आप एक नाटक देखे हैं नॉर्मली आपके पास एक पेपर होता है, ये कैरेक्टर ये है ये है ये है, पर वो पहले ही बता रहे हैं ये बुरी काकी है, ये है इस कहानी की आत्मा, ये है घर के मुखिया, ये है बहू, सो वो जो उनका इनपुट भी सब डायरेक्टर्स का अलग होता है। मैंने इसके बारे में सोचा क्योंकि ये नाटक को और भी मजेदार और भी इंटरेस्टिंग बना देता है, और जैसे बिना उसकी मौलिकता को ठेस पहुंचाते हुए।
1: इस नाटक की तैयारी में आपको कितने समय लगे?
2: हमको दो महीने लगे,
0: ढाई महीने, तीन महीने हुए जब सब कुछ तय हुआ, जब फिर हाँ ढाई महीने आसान से, हाँ
1: ढाई महीने लगातार रोज रिहर्सल,
2: लगातार रोज। सबसे बड़ी चैलेंज ये था कि सब कलाकारों का समय मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मॉरिशस में कोई प्रोफेशनल थिएटर नहीं, स्कूल नहीं है, प्रोफेशनल कलाकार जैसे जो फुल टाइम यही करते हैं वो नहीं है। मेरा खुद का व्यापार है, मैं नाटक करता हूँ, ये मेरा हॉबी है, बचपन से करता आ रहा हूँ, कुछ अलग वे गवर्नमेंट में काम करते हैं, कुछ के बिजनेसेस हैं, और खासकर बच्चों का उस समय एग्जाम्स था, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता था टाइम मैनेजमेंट का, तो कठिनाई होती है, पर आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ऑनलाइन रिहर्सल करते थे, रीडिंग करते थे, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट जैसे पहले होते थे आपको आना पड़ेगा फिर पढ़ना पड़ेगा, नहीं, फिर अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वीडियो कॉल करते हैं, मैं स्क्रीन पर वो स्क्रिप्ट डाल देता हूँ, उनसे कहता हूँ ये तुम पढ़ो ऐसे
1: हो जाती है।
2: तो आपको घर पर जाना है, खाना पकाना है, बच्चों को देखना है, और फिर उसके बाद जो समय मिलता है इट्स फॉर रिहर्सल। तो हम रिहर्सल का टाइम 9 बजे से 11:30 तक रखते थे, और जब मिलते थे तो 7 बजे से 11 बजे तक 10 बजे तक मिलते थे, और क्योंकि बच्चे भी खेल रहे थे इस नाटक में, तो उनको भी जल्दी सोने की आदत है, तो उसको भी ध्यान में रखना था, पर यही है ना पैशन ऑफ थिएटर,
1: बिल्कुल, और इसको छोड़ा नहीं जा सकता है।
0: यहाँ मैं बस इतना जोड़ूंगी कि मुझे कम से कम 3 बार मैं इनके रिहर्सल से जुड़ी, और 11 बजे रात तक हम लोग किसी हॉल में थे, फिनिक्स में थे, कभी सैंपल में थे, कभी दफ्तर में गए हम लोग मिले,

0: तो इनका कोऑर्डिनेशन भी हमें बहुत अच्छा लगा. होता क्या था कि इन लोगों ने अलग अलग से छोटे छोटे जो पात्र हैं, मान लीजिए इन दोनों को इंटरेक्ट करना है, तो इन दोनों की जो भूमिका है अलग ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. फिर उसी हॉल में दूसरे कोने में जो बूढ़ी काकी है और जो बहू है, मतलब समय का ऑप्टिमम यूज जैसे बोलते हैं, समय का सदुपयोग करते हुए सिखा दिया है, गाइडलाइंस दे दिए गए हैं, प्रैक्टिस चल रहा है, सभी को अलग अलग जैसे जैसे हैं फिर उन सबको जोड़ना. तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा.
1: और मैं करना चाहूंगा, बेंजी ने शायद आपने भी ध्यान दिया होगा, क्योंकि वी डोंट गेट सो मच ऑफ स्टेज रिहर्सल. ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है स्टेज रिहर्सल. क्यों? क्योंकि आपको कहाँ से एंट्री लेना पड़ेगा, कहाँ से जाना पड़ेगा, वो सब कुछ. पर मैंने बहन जी को भी दिखाया, हम गए थे, हमने उस स्टेज का एक 3D प्रिपेयर किया था. एक 3D हमने प्रिपेयर किया था, तो वो प्रोजेक्टर पर था. जब कलाकार आते थे तो मुझे उनको स्टेज पर लाना नहीं था. वो जानते थे Entry 1, Entry 2, Entry 3. तुम यहाँ आओगे, यहाँ पर बैठोगे, फिर यहाँ जाओगे, यहाँ से एग्जिट करोगे. क्योंकि कहते हैं, हम कह रहे हैं, हमने 2 महीने पर इसके काम किया, पर स्टेज रिहर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको पता चलना चाहिए कि स्टेज कैसा है, कहाँ पर ये रखना चाहिए, कहाँ पर ये निकालना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो हम 3D के माध्यम से कर रहे हैं, तो कलाकारों के लिए भी आसान हो जाएगा. हमें स्टेज रिहर्सल के दिन सिर्फ जाना है और टेक्निकल लाइटिंग्स वही करना है.
2: एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा अंजलि जी आपसे. हमने नाटक देखा और कहानी भी पढ़ी, तो कहानी में बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे संस्कृति को दिखाया गया है. तो प्रश्न मेरा यह है कि कहानी संस्कृति का वाहक है, कहां तक सार्थक है?
0: जी, जो संस्कृति है, संस्कार है, देखिए हर एक कहानी हो या नाटक जो भी हो, उसका अपना एक उद्देश्य तो होगा, उसका अपना संदेश होगा. अब संदेश को दिखाने के लिए जो माहौल, जो वातावरण आप दिखाएंगे, आपको उस समय कैसे चलता था, क्या चलता था, वह दृश्य दिखाना है. अब संस्कार या संस्कृति शब्द ही इतना विस्तृत है, जिसमें मूल्य आ जाते हैं. मूल्य पर तो हमने पहले बात कर ली है, सिविक वैल्यूज जिसे हम लोग कहते हैं नैतिक मूल्य, संवेदना, ये सब ठीक. लेकिन चूंकि बूढ़ी काकी में एक शादी का वातावरण था, तिलक का वातावरण था, लोग आए हुए थे, अब किस तरह से उन्होंने अपनी वेशभूषा पहनी है, उस समय कैसे लोग पहनते हैं, रूपा ने पहले क्या पहना था, जब शादी का समय आया तो उसके पति एक जगह बुद्धिराम उसके लिए हार लेकर आते हैं. और हार लाना उस कहानी में यह दिखाना है कि बूढ़ी काकी को आप भोजन तक नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए आप झगला लेकर आए हैं, अपने बेटे के लिए आप नया कुर्ता लेकर आए हैं, पत्नी के लिए आप जेवर लेके आए हैं, ताकि आप गाँव भर में चमकेंगे, है ना. तो छोटी छोटी बातें, संस्कार भी दिख रहा है, पहनावा भी दिख रहा है. जेवनार गीत की बात हो गई तो उसमें संस्कृति की, जो बड़े लोग होते थे किस तरह के गाने उस समय गाते थे शादियों में, हमारे यहाँ तो गीत गवाई है, यहाँ जो बहुत प्रचलित है मॉरिशस में, वहाँ पर उस प्रदेश में जिससे यह कहानी संदर्भ रखती है वहाँ जेवनार गीत था, और जो भी मेहमान आए थे, बुद्धिराम ने पगड़ी पहनी हुई थी, और सभी के कपड़े आप देखेंगे तो बिल्कुल भारतीयता. और एक जगह उस कहानी में कहा गया है कि झूठी पत्तलें गिरी हुई थी, एक शब्द आया था पत्तल. तो पत्तल क्या है? पत्ते से बने हुए होते हैं. जिस तरह से कलाकारों ने वह वातावरण प्रस्तुत किया उस नाटक में, जहाँ अंत में जो पराकाष्ठा है, जो क्लाइमैक्स है उस नाटक की, उस कहानी की, जहाँ पर इतनी भूख लग गई थी तो वह जाकर अब पत्तलों में ही झूठे जो लोगों ने छोड़ दिया था उसी को चाटने लगती है, खाने लगती है, जो बचा खुचा है उसको, जैसे शब्द है ना, ठूसना ही. इतनी भूख में है, सांस नहीं ले पा रही थी, सफोकेट हो रही थी, दम घुट रहा था, लेकिन खाती जा रही है. तो ये सब दिखाता है पत्तल, जो भी बर्तन उस नाटक में रखे गए थे उस समय में, जो चांदी के होते थे, गिलास ये वो सब, थाली भी अगर गिरी तो थाली का प्रयोग, तो ये सब दर्शाता है उन संस्कारों को, उस संस्कृति को.
2: बूढ़ी काकी को आप लोगों ने मंचित किया है, खासतौर पे हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा और आदर्श की टीम, वाक्वा रंग भूमि कला मंदिर द्वारा. मुझे ये प्रश्न कहना, मतलब पूछना बहुत ही जरूरी है, सफल मंचन रहा
0: जी,
2: अगला मंचन कहीं हो रहा है?
0: अब जो मैं तो कहूंगी कि जो मुझे प्रतिक्रिया मिली, जहां लोग खड़े थे, और मैं आपको बताऊं, एक दो जगह से फोन आ रहे थे, चाहे वह जनता के

0: लिए खुला था, तो हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने पहला प्रयास किया जब से, मतलब मेरी मैं कहूँगी मैंने भार संभाला, और जल्द ही अगस्त में अब एक साल होने वाला है, अलग अलग गतिविधियाँ हम कर रहे हैं। तो जोश तो है, उत्साह तो है, लेकिन जैसे काम होता है उसमें थोड़ा बजट वो सारी चीज़ें देखनी होती है, नहीं तो मेरा बस चले तो हर महीने हम कर सकते हैं और करेंगे कुछ महीनों के अंतराल के बाद, क्योंकि 3 महीनों की तो कम से कम तैयारी ही लगती है, अच्छी तरह से समझना और अभिनय करना, सब प्रैक्टिस अभ्यास करना। तो क्यों नहीं, जोश अभी है और हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे।
1: बहुत ही सुंदर
0: नाटकों को ऐसी एक विधा हमें बनानी होगी। देखिए, हिंदी की शक्ति इतनी है, मैं बहुत सकारात्मक हूँ इस मामले में, हिंदी में इतनी शक्ति है कि आप हर एक विधा के माध्यम से उसकी शक्ति दूसरों तक, जनता तक पहुंचा सकते हैं, और नाटक एक बहुत अच्छा माध्यम रहा। और मुझे लगता है कि इन नाटकों को देखकर हर एक व्यक्ति जब 1-2 डायलॉग बोल के वहां से निकल रहा है, और मेरे लिए अगर एक वाक्य हिंदी भी बोल रहा है, यहाँ तक कि जो विशिष्ट अतिथि आए थे वहां पर, मंत्री ही जितने लोग थे, वे भी एक पैराग्राफ ही अगर बोलकर निकल रहे हैं, तो मुझे लगेगा मेहनत सार्थक है, क्योंकि हिंदी का प्रचार करना है किसी भी विधा के माध्यम से।
2: और शायद आपको पता नहीं होगा कि इस नाटक में 4 लोग थे जो तमिल बोलते हैं, अच्छा। पर हिंदी नहीं जानते, पर नाटक के माध्यम से उन्होंने ये हिंदी शब्द भी सीख लिया।
1: नाटक के बारे में बात हो रही है। आदर्श, आखिरी प्रश्न आपसे। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहाँ पे हमारे हाथ में मोबाइल, ना एक मोबाइल बल्कि 2-3 मोबाइल है, और सिनेमा कम जाते हैं बल्कि पूरा वीडियो फिल्म इसी में देख लेते हैं। लेकिन इस जमाने में, इस युग में आप लोगों का नाटक हाउसफुल रहा, नाटक के दर्शक अभी तक है?
2: हमेशा मैं जब आता हूँ आपसे यही बात कहता हूँ कि हमारी जो ख्वाहिश होती है, हम नाटक खेलते हैं पर लोग नहीं आते, इससे मैं कह रहा हूँ इस बार वो फाइनल्स नहीं था एक शो, पर वो कुछ अलग था। इतने सारे लोग आ गए कि जगह ही नहीं थी, तो जो स्टैंडिंग ओवेशन और जो बधाई मिली वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। इट्स नॉट कॉम्पिटिशन में भी भाग लेने की जरूरत नहीं है, और मैं चाहूंगा कि बहन जी के सहयोग से, और खासकर जो लोग नाटक को उनकी ड्यूटीज हैं, उनको बढ़ावा देना है, एटलीस्ट वे वो प्रयास करें कि लोग नाटक देखने आए। हमेशा जब हम कहते हैं कॉम्पिटिशंस दिन में होते हैं या नाटक दिन में होते हैं, पर रात के समय में लोग ज़्यादा फ्री होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अगर नाटक को रात में रखिए और लोग आएंगे तो क्यों नहीं रात को ही रखें, क्योंकि लोगों के पास उसी समय
0: उसी समय मिलता है रात को आने के लिए।
2: और कोशिश करेंगे बेंजी के सहयोग से कि शायद बहुत जल्दी हम एक दूसरा मंचन भी करें इसी नाटक का, क्योंकि बहुत लोग,
0: काफी लोग जानते हैं वहां पर सेर्ज कॉन्स्टेंटिन के, अगर स्थान हम देखेंगे तो 300 से अधिक लोगों को आप वहां नहीं ले पाएंगे। अब एक दिन पहले अंतिम समय में अब इतने फोन आने लगे कि कुछ लोग 15-20 लोग हैं और आएंगे, अब इतने लोगों को भी आप नहीं एकदम से ले सकते कि अब सभी खड़े ही खड़े हैं, तो वह भी गलत हो जाता है। तो इस पर विचार कर रहे हैं, देखते हैं अगर हो सके तो क्यों नहीं।
1: हमारी बातचीत हुई लगभग 1 घंटे की, लेकिन मैं सोचता हूँ कि समय बहुत कम था इस नाटक के में बात करने के लिए, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं। तो अंजलि जी आप आई, आदर जा पाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हिंदी साहित्य को बढ़ावा दीजिएगा, नाटक को बढ़ावा दीजिएगा, ये संस्कृति को आप लोग बढ़ावा दीजिएगा। धन्यवाद,
0: धन्यवाद।
1: तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ उठाया। आप लोग देखते रहिए नाटक कला कार्यक्रम हर गुरुवार को 2-3 बजे के बीच। ऐसे ही मॉरिशसीय कलाकारों को हम प्रोत्साहित करते हैं और आप लोगों तक पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। अगले सप्ताह के लिए हमारी ओर से नमस्कार।
3: नाट्य कला

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में हम सभी लोगों का स्वागत है। सेंचुरी में सार्वजनिक परिवहन की समस्या को लेकर स्थानीय निवासी कई वर्षों से अपनी चिंता जता रहे हैं। इसी मुद्दे पर पिछले शुक्रवार संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया गया था। सोमवार से इस मार्ग पर एक अतिरिक्त बस सेवा शुरू की गई है। हालांकि NLTA की निगरानी और जांच के बावजूद यात्रियों का कहना है कि बसों की आवाजाही अब भी पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि बसों की कमी के कारण उन्हें रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रही है। सेंचुबे के अलावा शोनो और बोविलाश जैसे आसपास के गांवों के निवासी भी इस समस्या से प्रभावित हैं। अनुमान है कि इस परिवहन संकट का असर लगभग 3,000 लोगों पर पड़ रहा है। प्रसिद्ध भारतीय गायक अभिजीत भट्टाचार्य शनिवार को स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में अपना कंसर्ट देने वाली हैं। वे आज सुबह अपने संगीतकारों की टोली के साथ मॉरिशस पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मॉरिशस लौटकर खुशी व्यक्त की। बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय आवाजों में शुमार अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने लंबे संगीत सफर में हजारों गीत गाए हैं। उन्होंने विशेष रूप से अभिनेता शाहरुख खान के लिए अनेक सुपरहिट गीतों को अपनी आवाज दी है, जिससे दोनों की जोड़ी 1990 और 2000 की दशक की सबसे चर्चित अभिनेता गायक जोड़ियों में शामिल हो गई। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, तौबा तुम्हारे ये इशारे और ओले ओले जैसे उनके लोकप्रिय गीत आज भी श्रोताओं के बीच बेहद पसंद किए जाते हैं। शनिवार के इस कंसर्ट में दर्शकों को यादगार गीतों और भावनाओं से भरपूर एक शानदार संगीतमय शाम का अनुभव मिलने की उम्मीद है। आजसू मेट्रो नॉर्थ के ने 22 जुलाई की सुबह प्रनवेत में एक घर की तलाशी के दौरान 27 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी पेशे से बैंकिंग टेलर बताया गया है। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने मेथाडोन से भरी 4 प्लास्टिक की बोतलें, 7 मिलीग्राम की 42 लाइरिका कैप्सूल, 75 मिलीग्राम की 30 गबलाइन कैप्सूल, 100 मिलीग्राम की 11 ट्राम कैप्सूल, 10 मिलीग्राम की 8 वॉल्यूम कैप्सूल और 125 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार ये राशि मादक पदार्थों की बिक्री से प्राप्त होने का संदेह है। गिरफ्तार व्यक्ति को पोर्टविस नॉर्थ जिला अदालत में पेश किया गया, जहां उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। अन्य खबरों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन में जून महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने न केवल तापमान के नए रिकॉर्ड बनाए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डाला है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भीषण गर्मी के कारण लगभग 2.4 करोड़ कामकाजी घंटे प्रभावित हुए, जिससे करीब 1.15 बिलियन पाउंड के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार 22 जून वाले सप्ताह में गर्मी के कारण सर्वे में शामिल 3.6% लोगों अब यानी लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों ने एक दिन काम नहीं किया। सबसे अधिक प्रभावित वे क्षेत्र रहे जहां काम बाहर खुले में करना पड़ता है, जिनमें निर्माण, परिवहन और कृषि क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: आज की चर्चा।
6: आप सभी को नमस्कार। आज की चर्चा इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं और आज हमारे इस प्रोग्राम का जो शीर्षक है, ज़्यादातर हम लोग जानेंगे कि दुकानों में वस्तुओं पर कीमत किस प्रकार प्रदर्शित की जानी चाहिए, मार्कअप प्राइसिंग और यूनिट प्राइसिंग क्या है और व्यापारियों को किन नियमों का पालन करना चाहिए।

0: तो इसी विषय से संबंधित ये प्रोग्राम चलेगा। और अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे साथ कंज्यूमर अफेयर्स के दो अधिकारी उपस्थित होंगे। फिलहाल हमारे साथ श्री रणवीर सिंह मित्तू जी हैं जो उपस्थित हैं स्टूडियो में, आप देख सकते हैं। आपका स्वागत हम करते हैं। नमस्कार भाई साहब। और बेशक हमारे इस प्रोग्राम में जितने लोग अपने अपना कमती समय निकाल कर हमारे साथ आए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमने कहा कि पहले हम मार्केट प्राइसिंग तथा यूनिट प्राइसिंग तथा व्यापारियों से संबंधित उन लोगों के कुछ सलाह भी देंगे। तो जैसे पहला सवाल ये हमको जब जाने के हमने के बताओ कि जो मार्केट प्राइसिंग जो है वो कौन सी है और उसका उद्देश्य क्या है हमने के जीवन।
1: नमस्कार सबको। ये चाहना जाने के फ्री कुछ है फ्री गो। अब जब फ्री में कुछ होगा तीन कहते फ्री है, एगो है फिक्स, एगो है मार्कअप और एगो है लिबरल। तब एगो नुवेल लॉ वोटे कर बहा लाने वहाँ विज्ञा है प्रमे जुगेट से प्राइस लेबल बोल जला कैसे डाल जला। तब प्रमे दफे चाह जाने के एगो सब्सिडी कुछ है, एगो सब्सिडी गवर्नमेंट देवे एगो एगो कुमार एगो राहत दे कंसुमाते लोग मजे हाउ फ्री हुआ ओरिजिनल से पे कर मैं एगो एगो एगो सब्सिडी देवे मचे गवर्नमेंट पे करा था आधा मैं कंस्यूमर पे कर। तब आइला से फिक्स सब्सिडी है जो जैसे कि गट लाने के या उद्यमिल वैनसाइक में पाँच गो फौजी में रहल जैसे कि दून में रहल कुछ रहल सब आदि और जफरन में। तब
0: सैकौंट
1: रुपये डल रहा कैंस रुपये डल ऐसे सब कुछ डल है। तब जहाँ आवत है तब आवेला मैक्सिमम ही तेल एम ऑब्वियस से बदल मौकअप मौकअप कौन चीज है छा आदमी की जाने के पफा एगो एगो फौज है सब्सिडी फिक्स और एगो है मौकअप। तब अब कुछ वो लाल जो आलबा तब दोनों संगे डालबा। तब कौफा ये चाहेला कि मौकअप कुछ है मौकअप देखबा एगो बान फौजी है जैसे बान वैसे बा घसिक बा माकाहोनी बा जैसे बान तेल सब बा जब बिचारा हम आगे एगो मौकअप रहा मौकअप बोल जला ओकर फ्री वही होला कैसे जब एम्पोटेशन होला जब थ्रेडर लोग को मैसा लोग आप एम्पोटे करेला तब भोजन कंट्रोले है तो वो लोग अपन फ्री नहीं जाए लंग सर। तो काहे कुछ करे लंग सर जेना एम्पोटेशन करे लंग सर हम एगो लालिस सुमित के लंग सर मिनिस्टर को मैस के सुमित करे लंग सर मिनिस्टर ओकर प्रोफिट कैलकुलेट करेला। हमें जब जो एगो आपो सुमित कर कुछ एम्पोटे कर लेबा जो कंट्रोले है तो मिनिस्टर ओकर प्रोफिट कैलकुलेट करेला। तो प्रोफिया कैलकुलेट कर देवेला तब एगो फ्री फिनाल देवेला। तब बोला हाउ फ्री हुआ छावे छा बेचे के ओकरा से जर्सी छा बेचे के हाई मार्कअप में आवेला। सभी जो है फ्री हुआ ये डिपेंड है हर हर को एम्पोटेशन होला तो फ्री मोटे चढ़ेला डिसन होला तो वही खातिर देखेला सब फ्री हुआ में एगो वॉयासन होला। अब गवर्नमेंट कुछ कलक अब हाई जो मार्कअप एग्जिस्टिंग है पास में तो भाई लाने गवर्नमेंट एगो एगो नुवो लाल अलग मजे आदमी लोग के चाहे जाने के जब स्पैम से जाते हैं सर चाहे जाने के कौन फौजी में उन लोग को सब्सिडी मिला था आगे तो नहीं बताओ सर पॉसिबल में जो फ्री दे रहा फ्री ओकर में नहीं बताओ थल कहाँ पर सब्सिडी बा कहाँ पर ओके मौका बा नहीं आता आदमी लोग पाँच सौ सब फ्री पा गया। तब गवर्नमेंट को लाल के अलवा है लाने कि ओके चाहे को जी से करके
0: तो ऐसा में देखल जला कि दुकान में जहाँ जहाँ बेचल सर फौजी वस्तु चीज ढेर बा ढेर फौजी बा। तब जब ढेर फौजी बा तो स्पष्ट रूप से कौन कौन मूल्य चाहे डाले के वो थी जैसे के बताए के
1: जैसे के जैसे के हमने के मंत्रालय को मिनके निकल हल सब फौजी में ढेर फौजी बा सब फौज में सब्सिडी नहीं है सब फौज में मौकअप नहीं है एगो सतन लालिस है ओकर में मौकअप है। हम कहें मौकअप बस हमें हर एगो बात पे आवत है जब मौकअप बोलते हैं तो देजा एगो एगो फ्री मिनिस्टर कैलकुलेट कैला तब देवेला थ्रेडवा के बेचे के तब हाओ में गवर्नमेंट सब्सिडी डाले बा। अब देजा फ्री हुआ मोटे दिशाओं तक उतार छाला फ्रेड के एम्पोटेशन के तब हाओ में गवर्नमेंट सब्सिडी डाले बा जैसे फेक आलबा डाले बा कौन मुतों में वह रूपी कौन बीफ में वह रूपी जैसे बा कान चुना जैसे सुन लो कान चुना में जिस फ्लेक्स और ब्राइन में जो जो फ्लेक्स ब्राइन में रहेला और ऑयल में हमें तेल और नमक के पानी में ओकर में सब्सिडी बा वह रूपी और जो

0: सॉलिड हा एगो बस कि फ्लेक्स जो मीत में रहला अलगो सॉलिड में ओके में जो ऑयल में है सेल में ऑयल में है जो में ब्राइन में है उमे सिप सिनेबा तो ऐसे जाय ला मका होनी में सोपी बा ऐसे लंटी नोर लंटी रोज और दी रेड बीन्स सो में जिस सोपी के डालेबा तब हाई सो भोजन में जैसा मॉकअप में रहल तो ओके में सिप सिद रहा जैसे कैसे बता एगो भोजन भी जाता है वह ऊपी Rupees, c'est que ton qui a ton budget à 30 ou 35 roupies. Ta gouvernement au commerce subside d'aller à 20 roupies. Donc 35 c'est 20 roupies, ça 15 roupies. Ta monte et descend là. Ta fait moi de goton que au cas importation, mais t'as une bonne heure bata. Prio me voyage. Dire ne voyez que c'est 20 roupies, puis habitant budget à 20 roupies, 0.05. C'est ce qu'il a. Next consignment d'un importé. C'est qu'il a 21 roupies, bien sûr, 19 roupies, dépend, mais à la mock-up, top substitut là. Hop, j'ai essayé que, j'ai ce produit, un boli, ou il y a un produit bas, une nouvelle loi, mais, qui, j'ai essayé que, ben, j'ai le bas, au commerce substitut là, j'ai essayé, bah, canned vegetable, teal bas, ou en tabac, ou il y a un frozen vegetable, j'ai un frozen là, j'ai un pack là, ou il y a, dude saba fromage saba fromage boila sa fromage bloc boila sa slice cheese mi la ta don slice hela ume subsini ha al o vaten produit ba mi la lis mec don me gouvernement de ba ma ha subsidi wa extend kar de ba age pahunch gmer hal ab nouveau la
1: se just ho gal ba
0: pahunch just ho gal ba tab dal bhai la lo ba admi lo ke ego ego kumare suvita mil kochi dekhi chala kaap lo ke okay ego sipsi mil ta khuba kaise diminu monte hota de sanota ego nouveau concept le kalba ministre wala unit pricing
1: ha aur ye unit pricing aur ye mock up mein difference ba
0: no difference nahi ba kaise ba ta unit pricing kuch ba jala unit pricing nouveau la loi se jese ego produit bechata kilogram mein
1: acha
0: ta okay unit pricing chala dal ke kilogram jese le la sa fromage bichala 250 gram to kal prix rahi wa pali ko kal subsidi sab rahi ta bo chha ko unit pricing dal ki c'est à dire fromage 250 gram ha ta unit pricing ou kilogram rahi la ou bien millilitres ou bien litres rahi la ta jaise fromage ko prix normal rahi 250 gram ke prix wa rahi to kame unit pricing dai niche ou ko price bel ba me niche dal unit pricing ko chhal la ha prix wa leke un kilo kadi
1: अच्छा
0: 250 ग्राम के बेचा था
1: हां
0: तो प्री वाले के एक किलो के ऊपर प्री दे हावे जा एगो फॉर्मल एगो एग्जांपल ऐसा 10 रुपए 250 ग्राम के तो हमारा नीचे खाली 40 रुपए यूनिट प्राइसिंग वो पर है ना हर किलो पर है वो अपनी ग्राम पे बेचा था इतनी होला जो फौजी आवेला एगो एगो एग्जांपल ला जैसे के एगो जाफे बेचा था 10 रुपए 100 ग्राम हो तो लालवा बोले था किलोग्राम में चंदा लेके यूनिट प्राइसिंग तब हवे जे जे एक दफे जिस रुपया था 100 ग्राम की था मिल ग्राम होला एन किलो तो के फॉर दिस कर्व्स तो 180 होला तो ला तो प्री लिखा है 18 रुपये में अपने समय नीचे लिखी को बड़ा नीचे लिखा है यूनिट प्राइसिंग 180 रुपये पर किलो तो उसका आदमी के साथ कंपैरिजन से करे
1: बिल्कुल
0: उबिया से कैसा बल्क बाइंग करे उबिया कंपेयर करे कौन ब्रांड लिया सर तो भाई वो एक सुविधा दे लगा गवर्नमेंट आदमी को कंपेयर करे के है चला समझे कि निमन से कुछ हम कब आदमी से की बोले हाय हाय मो प्रिवा बीसे हाल हाउ मा काहे मो तो गवर्नमेंट सुविधा दे बता तो हो यार कौन से पता नहीं को टेक्निक है मॉक अप था को पॉइंट के हमने के को यूनिट भा में लगे मिनिस्टर में वो प्रीवन कैलकुलेट करेगा तब कैलकुलेट करेगा तब एगो रिवन ले और लगो ट्रेडर के बेचे के तो हो प्रीवे दे वे ला ओके जैसे हो प्रीवा दे लगो अ मिनिस्टर के दे लगो प्रीवा बेचे के 18 रुपए
1: और अगर किलोग्राम लीटर पर भी लागू
0: हो हां सब पर लागू हो जैसे जैसे que c'est super mort c'est déjà ça la loi en vigueur là 1er juillet 2026 tu as mis déjà là ça checker que tu as pas fois je sais pas déjà go s go le cran là sp sp bol déjà subside fixe subside fixe subside bol déjà quand il bol déjà fixe subside ça gouvernement ou délai va prévoir à gagner une subside doit ça hop ego mais je fais bol il met mrp ba
1: maximum
0: do not dans dans que sp plus mrp तो हाउ डाल जा तब तब दिखें सर तब जब ग्राहक को जाए को स्पेयर मार से मेरे को प्री दिखें सर तब जानने से हाई में एसपीआर एम हाँ जब फिक्स बा और ये को मैं हाई बा मौका बा तो प्रीवन चेंज कौन पाह करे आले को जाफे हमने के को सीधा मिनिस्ट्री में प्राइस फिक्सिंग यूनिट पीएफ बोल दिला हाउ में से ग्राहक लोग सकें सर अपन जो को मैं जीते किने तो सर जो चीज किने को तो सर मैं सकें सर प्रीवा वेरीफाई करे प्रीवा

0: updated voilà à la semaine à dindin c'est que ça comprend que les prix va tu faut les comprendre que c'est bien ça supermarché tu vérifier que rien ça prix va acha ba kinne acha ba je hai au trader ne dali tu go go compte en
1: sur ça ja tak comme une amie que samajh mein alba e afficher ho la prix bahut zaruri ho galba
0: ha zaruri ho galba
1: ab man la ego vastu par jahan shelf par ba ume prix va ne likhal ba साफ नजर नहीं आबा जब आबा काउंटर काश पर तब अब उलो के चाहे भी एक उलो घंट हक एक मजे एगो वहाँ इन्हें फिशे होल बाहो हो प्रिवा तो यहाँ आके पे ये करता उतने नहीं जाने था उग्रा हक कितना पे ये करता तो कुनो उलो घंट हक होगल बाकी कुनो
0: जैसे कैसे अभी जाना था सब चीज में बढ़ाते और बाबा गवर्नमेंट इसे ये करता जो इन चीज़ बन बन बेसिक नीड्स बाहर जो बेसिक प्रोविजन है वो कम है तो नहीं सुन बेसिक आई बेसिक करके घटा हुआ है कि तब तो परचेसिंग पावर उग मौत है आदमी लोग के तब ऑल दिस चीज़ मौत है तो हम कौन हमने कॉन्सेंट से नहीं है भी जो इन बुलेट हैं एक आदमी जला फिर सावला लाल वाली कॉन्सेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन को जैसे बोला जब एक फौज में प्रीवन रही तो कैसे जनबा प्रीवा कैसे बिचाता अब लाकेश में जब बता उसे ही कोनो प्री बुरे तो के जनबा तू नहीं जनबा तू फौज में प्रीवा दिख ला तब जब लाकेश में तब आ एक प्रॉब्लम बा प्रीवा जब मंगते पर डिसान बा तो कुमार सो चालब जब प्री एक लॉजिक में नहीं रही तो वो कंट्रावेंशन जला 5000 से कुमार सो होला 20000 जला डिपेंड कुमे कितना लॉजिक में प्री ने बा तभी के जब नुवो लालवा जो आलवा जो प्रोड्यूस जो मार्कअप में और फिर सब्सिडी में उसका प्राइस डिफरेंट हाँ कुछ बार उसका में एसपी रही प्रीवा में एमओपी रही दिखा रही और प्राइस टेबलवा में यूनिट प्राइसिंग रही नीचे किलोग्राम में कितना चाहे बेचे के उसका में वाट इंक्लूसिव या वाट जीरो या वाट वाट है तो आलोक जहाँ फिर बोले खा दें कि हाई सब हाई लालवा लालवा जिस प्रोड्यूस हाई में टोबैको प्रोडक्ट में नहीं लागू होला काहे बस कि गो लालवाल हर मिसला सौते में पब्लिक टोबैको रेगुलेशन बना दी 2022 के बस कि वो बोल रहा लालवाल कि हाई टोबैको डिटाइम में नहीं बिचाला उसका प्री नहीं डाला यूनिट प्राइसिंग नहीं कर डाला और जो ट्रेडर लोग जो कमर्स लोग वाट एग्जाम्पल जो वाट नहीं पे के उन लोग पर हाई हाई कुछ हाई में नहीं लागू होला सिर्फ जब जो कमर्स बा जो चितावासी बा चिलाउटिक बा हाई लालवा लागू लोगों पर है जिस एगो बन सकते मैं दाखिल तो बाकी प्रोजेक्ट में नहीं होला हाई होला
1: तो अब जैसे यूनिट प्राइसिंग पर भी चर्चा कर लीजा अब वैसे कितना प्रकार से कब बोले कितना प्रकार के प्री अफिशे होला
0: प्री जैसे जनब प्री हबी के नुवो लालवा जैसे फिर बोल ली हबी जैसे प्री होला जन सब्सिडाज होला जन हाई होला अब दूसरा का प्री है प्री नॉर्मल उदाहरण को प्री ओकर में यूनिट प्राइसिंग लागू नहीं होला बस उस आइटम प्रोजी में होला जो लालिस में बा वो होला प्री नॉर्मल जब एक सुपर मार्केट में तो लिखा है हिस बा रुपी इतना है वाट इंक्लूसिव है सब वाट वाट नील है उसको प्री लिखा है उसको प्री नॉर्मल है जो नुवो लालवा अल्बा प्री वा सौ जो रहा जितने बोली वाट रही यूनिट प्राइसिंग रही कितना प्री रही किलोग्राम रही मिलीलीटर जैसे एगो एगो एगो एगो एगो एगो प्रोजी में ज़्यादा लिखित है 250 ml है तब ओके चाहे ला प्रीवा में यूनिट प्राइसिंग करके तो चला एन लीटर नीचे दिखे के जैसे 25 rupees 250 ml है तो 250 वा 4000 ml हो तो एन लीटर है तो 25 वा 100 rupees लिखा है नीचे 100 rupees बा एन लीटर तो प्रोड्यूस 250 ml का ना तो वो कहीं यूनिट प्राइसिंग डाला चला आदमी से कंपेयर करे इसकी चार गोल अब तक प्रॉफिटेबल है या दो गोल हफ्ता या एक गोल कैलकुलेट करा कैसे हुई तब पोफा हाउ यू हाउ प्रोजुआ में हाउ प्रीवा में बाबा ओके हाउ में प्रमोशन आया लंसा
1: हाँ चाहो जब प्रमोशन डिस्काउंट पे ला हाउ यू चाहे लिखे के
0: चाहे ला लिखे लंसा तब आदमी कि कहे देव कहे हाई नुवला लो अलबा के जब ला विजिबिलिटी प्री रही तब निमन से प्रीवा हुई सब चीज आदमी चाहे देखे फिर से आपसे मैम लाफे में आपसे राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट टू चूज अलग क्लियों के लोग कंसोमेटिया के प्रीवा मिली तो से की होल इंफॉर्मेशन मिला था तब से की देखे कुछ करब किनो या दूसरा ब्रांड किनो
1: इस चर्चा को हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं और एक गाना अभी हम चलाने जा रहे हैं थोड़ी ही देर में ये प्रोग्राम जारी रखेंगे
2: कच्चू के पत्ता के बनिया के नहीं
3: बोला भैया बोलो
2: कोनो भी सवा
3: आगे बढ़ा

0: प्रोग्राम में आप सबों का दोबारा स्वागत हम करते हैं और आज की चर्चा में आज हम मार्कअप प्राइसिंग और यूनिट प्राइसिंग के तहत माल पर दाम कैसे दर्ज किया जाना चाहिए और व्यापारियों के लिए कुछ ज़रूरी सलाहों पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस प्रोग्राम में आज उपस्थित है हमारे कंज्यूमर ऑफिस के दो सम्मानित अधिकारी श्री मितू जी से अभी आपने से मिलवाया, उनसे बातें की मार्कअप प्राइसिंग पर तथा यूनिट प्राइसिंग पर चर्चा की। और साथ ही हमें अभी अभी ज्वाइन किया है श्रीमती जयश्री पसावन सुपोल जी, आपका स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में और धन्यवाद आपकी इस उपस्थिति में। तो जैसे कि हम अपनी चर्चा करती जाए यूनिट प्राइसिंग तथा मॉक प्राइसिंग पर, ये जो आप लोग ऑफिसर्स हवन जा कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर, तो ये जन एस्पेक्शों चाहे रोज करेगी तो ये कैसे?
1: हाँ, ये सब एस्पेक्शों हमी के कोलेग लोग हम रोज करी ला सर, रोज के तेरे पढ़े स फील्ड में जाएला स व्यापारी लोग से मिली ला स लोग के ले जिकाशों करी ला स बोले के कैसे चाहला नुवो लालवा के तहत फ्री आफिशे करे की तब फोमिया जूलियत से रोज के सब सब कर्मचारी लोग तेरे पढ़वन स बतावत हवन स बोलत हवन स ले जिकाशों करत हवन स कैसे फ्री चाहेला अफिशे करे के नॉर्मल है नुवो लाल वाला जो नाल बाटे एगो नया चीज अनक बाटे जैसे अफिशा दे फ्री जैसे हमार कोलेग बोलक ए मॉकअप बाटे और सब्सिडी बाटे तो है जो फ्री बाटे है सब जो फ्री जो जो सब्सिडी जो प्रोड्यूस सब्सिडी पर बाकर चाहेला लिखे के जब फ्रीवा डाल देव नॉर्मल फ्री जैसे सब लॉचिक के है जैसे डालीला सर रुपीज ओकर मोटांस और वात चाहना डाले के
0: बिल्कुल
1: वात अब एगो नया चीज जो नाल बाते अब से ओकर चाहना डाले के एसपी एसपी बोला जा सब्सिडाइज प्रोडक्ट

0: C'est-à-dire, j'ai un produit, mais il y a un SP, ou il y a un produit, mais subside par gouvernement, ou mais subside de l'autre. Il y a un produit, mais un produit, mais subside ne va pas. Ou mais subside n'est pas ou mais dis MOP dans le genre, c'est-à-dire ils sont produits voir contrôler. C'est du coup j'ai des bas j'ai bas supermarché mais t'as des bas tine qualité produit bâti et na ego produit bâti je n'ai contrôlé hola ou mais couche n'est pas dis rupees bâti ou encore dam ou y deuxième catégorie produit ha contrôlé produit ou mais n'est pas rupees ou encore dam ou y à côté chana d'aller MOP.
1: और अब तक जैसे पहला जुलाई से बोले ये चाहे ऑफिशे हो के तो रोज तो इंस्पेक्शन होता है भजिसान इंस्पेक्शन आपके ऑफिसर्स देने से तो कोनो कहूँ पर आल बाकी उ लोग अने अबाइड कर लन सर ऑफिशे ने ऑफिशा नहीं डाल
0: हाँ तो ये जो जे जे लोग नहीं अबाइड कर एगो ओफेंस कर ओफेंस हुआ के एगो फिक्स पेनाल्टी लगेला चलान कताल जाला तो देखा जाए स्टैटिस्टिक हमारे लगे अभी नए बातें में से बातें स्टैटिस्टिक बहुत जगह गल है सर जहाँ एजुकेशन पहले वैसे हो गल बातें फिर से गली सर देखा जाए
1: सर पर अभी नहीं अबाइड कर लें
0: नहीं कुछ नहीं कर ले सर तो उन लोग के चलान मिलल बातें एगो फाइन जैसे बोले सर फिक्स पेनाल्टी नोटिस सर्व होल बातें उन लोग पर
1: अच्छा वो कितना सकेला उन लोग
0: पाँच हज़ार
1: और जी ऐसे यूनिट प्राइसिंग जो भाई अभी कुछ क्षण पहले बोला किन किन इकाई पर प्रदर्शित होला जैसे किलोग्राम लीटर ये सब अब बोला तो ये सब जब होला मान लो एगो कमेसों वो सब नहीं जानता एगो ग्राहक के नहीं जानता तो ओकर फुट है
2: हाँ तो कमीशन के हाँ ओके चला जाने के वो लालवा निकल बा कम्युनिके मिनिस्टर निकल ले बा
1: और ये जो लिखल बा ओके चाहे साफ मतलब ओकर जो लिखाई जो प्राइसिंग वाह ओके चाहे जाने के पढ़े के निमन से
2: हाँ जैसे कमीशन थे इधर लोग व्यापारी लोग वो लोग लालवा लोग जान गल बा कैसे ना करके तब कहे डाल बा एगो हाउ एस पी आर एम ओ पी डाल बा इस ताले बोली एगो एगो फासो डाले के चाहेला जब आदमिया जाए तो देखी तो जाए ना पहुंचवा में बा कैसे हमको लोग बोला एगो डिफरेंस ऑफ प्री नॉर्मल एगो प्री जो में सब्सिडाइज प्राइस बा और एम ओ पी बा है ट्रेडर लोग वो लोग जाए लोग बोले से इन्फॉर्मेशन मिल गया समझे करके कैसे बोला कौन सा गिर से एजुकेशन करे एस पी कर कैसे कर दिला तो फिर से गिर से इंस्पेक्शन करे तो नहीं बता कौन था मौसम लीला अब हमने जिस कौन था मौसम देव सहा जिनने को जब एजुकेशन कर पूरी ऐसे कुछ ना करके और ग्राहकों को बोरी ला सर जिनमें नई बात नहीं होता लोग जाने था पहुँचा में सब्सिड बा ओका फ्री में नहीं डाल बा नहीं सर किसान मिनिस्टर लगे सरकार में सर हमने कहा लाइन है
1: अभी तक कोई शिकायत मिला बा
0: हाँ ढेर ढेर जगह से शिकायत मिला बा तो ऑफिशियल लोग जालंग सर वेरिफिकेशन सब करे कब देखी ला सर जब जाए ला सर तब फ्री वहाँ समझे हो गल बा एगो कॉन्ट्रावेंशन नहीं है जब जब जाए ला सा देखला सा सच्चे के परिवार नहीं समझे बा तब एगो कॉन्ट्रावेंशन है कॉन्ट्रावेंशन है 5,000 इत रोजमर्रा के हो गल बातें अब कंप्लेंट हम के सेक्शन बातें जहाँ रोज के कंप्लेंट मिलेला कंप्लेंट वा थ्रिए सब हो के तब ऑफिशियल लोग जा लंग सा तेरे पर देख लंग सा कौन चिपके कॉम्प्लेंट हो ऐसा जब
1: तो जब आप लोग इंस्पेक्शन करे ला जा कौन चीज देखे ला जा स्पा निमन से लिख ले बा ओकर प्रिवा जो मिसिंग बा कौन चीज बा
2: ना हम जब देखे ला सर प्रिवा प्रमेर प्रमेर अफेयर ऐसे यूनिट प्राइसिंग अलबा प्राइस लेबल ला उस आंसर बोल बा कैटेगरी प्रोड्यूस बा हमने जगह जाला सा कैटेगरी प्रोड्यूस तो इन सब्सिडाइज है जो मार्कअप पर बात जगह जाला सा तो जिस तरह बोलिए हमने कि वो सीट बा प्राइस फिक्सिंग यूनिट एक वेबसाइट बा हमने सुअर प्लस हमने के डिवाइस में लेके वेरीफाई कर लिया सर और हम प्रिवा के ताली के लिए पारे बा कि नहीं जो नहीं बा तो देखिए सर प्रिवा कब समझ होल बा बस कि हमने की हाउस सीटों में इफेक्टिव डेट बा कब प्रिवा समझ होल बा बस को मैं ऐसा लोग लोग लोग के चला हर रोज के वेरीफाई करके ढेर पहुंची बा सो वेरीफाई करते रहे प्रिवा इवोल्यूरा ओका हिसाब से लोग के छाना प्रीवा समझे कर के जैसे कि प्रीवा आज मोटे बा कल नीचे कमजोर कर बा तो प्रॉब्लम जला प्रीवा कंट्रोल ला सुपर है जैसे कि 0.98 है ला तो नेशनल राउंड अप करे जैसे वाला 29.98
1: उसने चाहे रखे के
2: पॉइंट उसने चाहे रखे था तो भी नहीं चाहे करे के हमने चाहिए बोला सा बस बस बोले ना सा 98 देशों कहाँ है तूने कर अब तो ले लो सा तब जब

0: Gros d'accord, c'est un gros demi, bon, il y a une offense, ça c'est pas un problème. Le privoir, c'est un dalle qui est 29.98. Alors, où décrit au gars sous l'idée qu'il y a ce privoir d'aller, ce qui est 0.98, c'est un idiot d'aller, ce qui est 50 d'aller. Tu me dis, ce qui est pour lui payer, quand il paye ça, SPC, 50 sous l'agi. Tu as pas du monde, quand tu payes, là, tu as un peu de temps, il y a une petite avance là. Look at the court never, look by so long, sir. The group produced high material of 0.79, 0.418. तब कैसे चौथ के जैसे तब उल्लोके ग्राहक लोग देख रहे थे कैसे के जैसे तब उन्हें सर जस्टी पॉइंट का था वही तो जस्टी चौथ जैसे करे उपांश जा रहा तो पागे चांग
1: तो ऐसे न कामिला जैसे तब आज ही मेरे है ला दूसरे प्री और सुपरमार्केट में दूसरे प्री नहीं कबो कबो
2: कबो कबो तब आज ही में कबो उल्लोके प्रीवा नहीं मंगा नहीं रहेला मंगा नहीं रहेला हो इफेक्टिव डेट देखिला सर तो देख बत इफेक्टिव डेट जैसे सुपरमार्केट में पोजुआ रोज के बेचा जाला तो जिक कबूतरबाजी में पोजुआ नहीं बेचा ताते तो उकर ऑनशेंस तो खोगल बा सिलमा जब जाए ला सर वेरिफिकेशन करी सर जब पीएफयू से कॉन्फर्म है उस सब हो जाला तब कॉन्ट्रावेंशन दे ला सर
1: और जब डिस्काउंट और प्रमोशन रहेला तो तुरंत हो व्यापारी के चाहे अपन संजे करे के अपन affichage de prix.
2: हाँ चाहे ला निमन से लिखे के जेगो प्रोड्यूस
1: आप लोग के कैसे जाने ला कि ये लोग प्रमोशन ओ बता दे बोलना आप लोग का विषय ने
2: प्रमोशन
0: प्री नॉर्मल
1: लिखे
0: फिर मैं प्री वा कंट्रोल है हाय प्री वा चाहे बेचेंगे तो प्री नॉर्मल वा लिखे हो
1: हाँ
0: तो कल हो प्रमोशन वा लिखे चल गोसे कमती रहेगी जैसे नहीं तो कहते हैं हमें बोली ला सब alors vous avez fait sortir club de ce qui trade là ben tabazi là normalement ça se produit comme comme mal contrôlé ha ou le que ego supplier qui chori là ego prime de vélan ça ça c'est ça bêche tu fait que marge au produit ça bêche que 10 roupies supplier que 850 mais de là tu un supplier en là de commencement c'est la liste soumettre quelque 1500 que prix calculé que là que de là comme trade entre de là tu as directement au commerçant là que tabazi là que तब उसका से प्रिवाल है लग फिर को मार्च में मिनिस्टर के दबला वी सैंकॉन बेचे के ना वो डिस्कॉपी दबला बेचे के तब वो देखो डिस्काउंट के लग वी सैंकॉन बेचे लग कौन से तब अदमियां से कि कमर्शियल तबाजी कि डिस्कॉपी बेचे को प्रॉफिट मिले चुजो तब कौन चु होला तब पर लोग चिता बाजी लोग धीरे धीरे लग सा तेन तेन लग सा जैसा सुपर मौसम है कि नहीं तब उसका प्रिट फिक्स है वहाँ पर प्लस के तब डिस्कॉपी चता निस्कन फिर जाके डिस्कॉपी बेचे प्रॉफिट नहीं मिली हमने कहा बोलना सा हाई सप्लायर्स लेके एगो जाफे और सकी लगो स्टॉक ले ले हम सर तीन महीना होगा बनने भी चलवा तो प्रीवा तो सौ जो था सकी लगा जिसमें चार बेचे के अब चार नेफ को बेचे के अब चार नेफ सन के में चेके तब बोले कि उतार चढ़ा वाला प्रीवा सकी लगा पेज जोन सर गायन सर हाई कन अजमेर के स्पीकर ले सर कि हाई सब मैं सीधा तो स्टॉक के कंटेनर ले प्री ऑन विगेडन बावला बहुत दिन वाके हाउ में देखता सर
1: और ये प्रोग्राम हम लोग अपने ग्राहकों उपभोक्ताओं के हित के लिए प्रस्तुत करते हैं और अगर उन लोगों को इस तरह की जो आप बता रहे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं मतलब उन लोगों को जायज़ है वो शिकायत करें तो कैसे वो शिकायत करें तो जो हॉट लाइन तो हमेशा रहेगा
0: हाँ, जैसे ग्राहक लोग के बोलना उनके को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रीवा जाने के कौन चीज किनी आते हैं सर वो कल प्री कौन चीज है जब मैं गुजारफे तब किने हम जाएंगे उस सैं कॉपी है तब गए थे वहाँ पे देखने सी सोपी है था आगे से हम क्या मौसम मिला सैं कॉपी है ना तो वहाँ गए देखे सी सोपी बता अपने चाबा तब सेकेंड से सुने करे सेकेंड से अपन नाम दे कंप्लेंट करे सर सर एनोनिमस है ना लोग के जान पहचान नहीं दिवाले करे सेकेंड से कंप्लेंट करे तो दोनों काम है जो नाम दिलवाने वाले दोनों काम है आक्षेप आ गई रही हमने जाप सर अब समय एक बार फिर बा आज उगल प्रिवा से सुबह बा दो प्लस सैंकुविच हमें चिके वो कंप्लीट कर लग आज कंप्लीट कर रजिस्टर होल हमें के दो दिन लगी ला जाए के अब जब हमने जाप सर हुआ जब जाप सर देखा था प्रिवा आगे हाँ सैंकुविच बा तब प्रॉब्लम हो जाला जब आदमी जब किडनी बा ते को रेसी बा सिस रूपी के तो रखी ला तब आयलस अदमिया को बोली आगे गो एगो स्टेटमेंट देखे कोई सा लाकू हमें कहला सा ऐसे तब जब जिरेल जब सर कौन सा वहाँ से मिल जाता है लेकिन जब नहीं रही था तब अदमिया जब लोग नाम मिलवा तो कोई ऐसा लाकू के पोस्ट जाता है
1: और आजकल देखे थे जा कि दुनिया में व्यापारी हालत जो कठिन हो जाता तो एक संविधान कौन सी है
2: ये तो हम ही के हाथ में नहीं है बस ये सब ढेर फौजी पोते करीला सर लोग के फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर जैसे बोलिए सर हम ही के हाथ में नहीं है सेलमा गवर्नमेंट सब्सिडी के तरह प्री कंट्रोले के देखा था कभी सी पुरवा

0: confortable hoy customers khatir
1: aur hoy dikhila ja ki hamni ke importation chahe la kam karegi
0: ha importation
1: kam karegi ta sarkar ki taraf se kon kon kadam level jana jaise
2: sarkar ise Maurice ya la 80% lo ki produit importé la sa parce que Maurice hamni ke okel kuch chote dhyane hola sab chinu ke pehla dipan ho ke importé hai ab jana tha लेमोन की सिचुएशन लागे होला फ्रिज
1: होला
2: सब चीज सब तो पारामीटर इम्पैक्ट के ला एयरपो में कॉम्पोटर तब जब इम्पैक्ट ला एयरपो में तो हाउ बर्डन वाइज बोले सर कंसोमेटर में डाला जैसे को एग्जांपल होता है एगो बिगो प्रोड्यू एम बोतो होता है 10 रुपए पे करता है आज तक कंसोमेटर 10 रुपए का था पड़ी तब हो प्रोड्यू अब डीओ भी 3 रुपए बोलबा अब जैसे आइटम मोस हाउ हो प्रोड्यू 10 रुपए ज्यादा अब 6 रुपए बोलबा तब है सब प्रॉब्लम है अब जैसे बोला गवर्नमेंट में कुछ गलत है सब देख लगा सब लाफेवन जो सब्सिडी नहीं डाली था फ्री तो ढेर चढ़ जाए तब ऐसे ही कर लग एगो एगो एगो बीच में होते कि ना सर प्राइस स्टेबिलेशन फंड एगो एगो फंड हक मजे सब्सिडी के लिखे ला हलाने की लागू होला तो हम फ्री वा कुछ केला वो अनलग सेटन फोजी पहुंच गुल हल अब ओली एक्सटेंड कर लग है जैसे बोला सर कुछ यहाँ करे कि इम्पोर्टेशन में हमने बोला सर लोकल प्रोडक्शन चला करे कि
1: बिल्कुल
2: जैसे बोले ना सर कुल का प्रोडक्शन करे तो इंसेंटिव था देखिए गवर्नमेंट के नुवो बिजनेस करे के नुवो प्रोजेक्शन करे के नुवो नुवो नुवो स्ट्रेटजी नुवो स्ट्रेटजी डिवाइस करे के कैसे पीवा का नफ्स नहीं चला किसी बोले को एक मिनिस्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी था जाने के जो लेमोन में ने रिखा है हम तो एपो में रही ना सर दूसरा अभी दूसरा पी एम इनके नहीं बेची हम सब पहुंच तो कुछ कब सर नहीं लोकल प्रोडक्शन हुई था सेकंड एक्सटेंट में सकीला मौसम के सप्लाई करे नवी का दिन गवर्नमेंट आना था डिमांड जिन बनने से कहता कहीं नहीं सकता कर जिनमें कर सका था बस जहाँ लिखे कि पब्लिक डेट बा और इम्पोर्टेशन बा कितना इम्पोर्टेशन करी कितना जिमनी करी और कहीं अमीर को बोला ढेर एगो ऐसे बोला ब्रांड के पीछे नहीं भागे के बा एगो एगो पारे पहुंची देखा सा अब अमीर के सब लोग के चॉइस है ना बस
1: लोग के दुआ चूज
2: लोग के चाहे के ढेर कुछ ना करके seulement moi aussi bah des trois supermarchés bah et le même produit que différentes fois brand bichela mais le que ce vidéo que dans 40 ans le budget
1: qui est budget qui est hisab c'est
2: pas fall au supermarché dans ça au supermarché dans ça ou comme smart bank ça que dire que dire que jati ne kine ke jo chi chahe na kine ke budget ke framework mein hai ke
1: jaise ki har mesa boli rasa jaise abhi bola local production aur thi go for solar energy
0: गवर्नमेंट देवा था थे और ये हम ही के दूसरे मंत्रालय बाते एसएमई ये सब लोकल प्रोडक्शन लोकल इंडस्ट्री के प्रमोट करा था थे फूड सिक्योरिटी उसी वो बाते जो खान पान के चीज देखा था उनसे और ये घर ग्राहकों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बाते जब खरीदारी वो सब करा था उनसे तो
1: जैसे किचन गार्डनिंग वो जरूरी है
0: किचन गार्डनिंग
1: सब रूफटॉप
0: डिफरेंट मिनिस्टर ढेर स्कीम डलक बात लोग के चाहला जानकारी ले के जैसे फागे बातें बहुत स्कीम
1: दे बहुत मतलब अलग अलग
0: अलग अलग मंत्रालय के
1: सहयोग मिले ला तो
2: सब अच्छा बोला बोला प्रॉब्लम जो कुछ आदमी लोग नहीं भाई काम करे के ना सबको बोता बीओ में काम कर सा कोई तो हाथ नहीं जाता लाते हैं मैं ईदो को नहीं को
1: बात
2: जितना आदमी करेला ढेर कम थी बा तो जब कम थी प्रोडक्शन होला और डिमांड ढेर होला तो फिर तो मौतें हुई तब हो आदमी लोग बोला कहा जा वो स्टील अडोप्ट करे के जैसे आगे क्यों निकल सर सब कोई कागो में काम कर रहा था प्रॉब्लम नहीं रहा अब तो सबको बीहो में काम किया कोई तो नहीं बोला अच्छा मेकानाइजेशन होल बा मशीन डाल बा सब कुछ एक्सटैक्टली पहले गेम फैन बन बन चिले गेम गेम कुछ हो पहले हाथ में क्या करके ना अच्छा मशीन डाल के तो प्रॉब्लम जब हर कुछ जब बाजार जब पहले गेम मोच बा का है उससे लेबर कम थी बा जिन काम करा कागो में तब वो लोग आगे हाउस सब बांधने जब चल रहा था कोई तो नहीं कहा काम करके
1: बोले ये सब आशा करते हैं जितने ग्राहक हमें सुन रहे हैं जितने श्रोता और हम लोगों को सुन रहे हैं वो लोग इस तरह की जो मतलब फैसिलिटी सुविधाएं वो अपनाएं एक और गाना

0: और आज की चर्चा प्रोग्राम में दोबारा स्वागत करते हैं आप लोगों का। और आजकल के महंगाई के ई जमाना में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की प्रायोरिटी कौन सी है जयश्री जी?
1: मिनिस्टर के प्रायोरिटी है कि सब लोग के चीज मिला ताते बेसिक चीज जैसे बोली रासा जैसे खान पान बातें सब कोई के अवेलेबल बातें जे एगो शॉर्टेज न होता और वो एगो अफोर्डेबल प्राइस में वही से गवर्नमेंट आल बातें ढेर फौजी में सब्सिडी लगवा ढेर फौजी जो खाए के फौजी है एसेंशियल उमें कंट्रोले बातें खाए के और लड़का लोग के फौजी जैसे बोली सा कुछ मांजे बेबे ये सब चीज में कंट्रोल बातें सब्सिडी बातें तो हमें के प्रायोरिटी है कि सब लोग के एसेंशियल बेसिक चीज मिला ताते और ये प्रियो एगो अफोर्डेबल प्राइस पर
0: तो ये मिनिस्टर बगल से ये सब जनता लोग के राहत दे के लोग के फैसिलिटी दे के ये सब तो अभी हमने के बोला तो व्यापारी के जो कौन कौन संदेश दे कौन कौन चाहेला उ लोग के मुख्य रूप से नियम में लागे आने के
2: जैसे जाना सा हम मिनिस्टर को मेरा सा कौन सा प्रोटेक्शन हमने ग्राहक के अधिकार के प्रोटेक्शन के इलासा जैसे कि जीवन में सब्सिडी डालबा मैं लोग परचेसिंग पावर बरकरार रखे के ट्रेडर कुछ भी सर ट्रेडर लोग वो लोग तो बेचे लग सर कंसुमाते लग सर कुछ फ्रेमवर्क लीगल फ्रेमवर्क का ऑब्जर्व कर लिखे जैसे कि फ्रिकुआ लालवा डालबा जैसे यूनिट प्राइसिंग बा वो लोग के चाहेला वो लोग के फ्री वेरीफाई करके देखे कि वो लोग के फ्री अच्छा से आवश्यक हो सके ना वो प्रोजी जो सब्सिडी बा वो प्रीवा लागू बा हाई दिन वा के वो प्रीवा समझने कर सर तो हर वो लोग के एगो एगो एगो संदेश मजा सब चीज वेरीफाई करके हमें कौन सा माता सुफे एंड वन सुफे हमेशा से वो लोग के चाहे
0: अपडेट
2: रहे के और ये सब फ्री डाल के सब चीज में जैसे फ्री नहीं रहता को कौन सा हो जाए और ये को प्रमोशन डाला था बतरे लोग हाँ प्रमोशन अच्छा लोग के सिस्टम में लेकिन यहाँ पे पहुंची डालवा प्रमोशन जिस रुपये से बीस रुपये लाख इसमें जिस रुपये पे करते हो मैं दूसरा कौन था मोशन डाला और ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा दे के मैं कॉन्फ्यूजन ही खरी करके कौन समाते हैं कि उसके बाद मिसली

0: जैसे अनोनिम होला तब जाना सहनी तो काहे नाम बोल सा दे के जब हम कौन था सब सब तक के बोल सब कौन एक्शन ले ली सा कौन समाधे कैसे खुदे से कर ली सा वही करने वही सा दू नो चाहे ला कॉम्प्लीमेंटरी दे के हैं दू हैं मजे ट्रेडर और ही कौन समाधे जब सब नहीं मन चाहिए था कौन समाधे ओके खुदे से हो उस समाधे का पर सिंह पावर में तेल मन बा और ही ओके कौन है अच्छा लगी जब जाकी ने के प्रॉब्लम हुई मजे उनको कॉन्फिडेंस रही ने बोली मैं गवर्नमेंट काम नहीं करता था सब ट्रेडर मालूम नहीं था सब एक पीएसएफ सब बन जाला जाने ला तब हुई का दिन जब दिनों से दिनों को ले चली तब पीएसएफ ना समझे हुई तब बोले हाँ तब देखा तो कौन प्रॉब्लम बा कौन सोल्यूशन अब सर नहीं क्यों आज इस क्रिटिक के ब्लाम करी जाती
1: और जब वो लोग आप ही कर रहे हैं सर जयश्री जी जब आप लोग का इंस्पेक्शन करी ला जा तो उस साफ सकेला पढ़े के जैसे कि जब आप लोग देखे रहन जा देखा कि नहीं
2: हाँ लालवा बोलक बाटे फौजी जब प्री चाहला एगो एगो निमन क्लास में डाली
1: स्पष्ट
2: हाँ स्पष्ट शब्द से भी करी ला कॉस्पिशियस प्लेस ताजे जब है जा फौजिया बा ओकर प्रीवा है जे चाहला रहे कि नहीं कि है जा दूध बाटे तो ओकर प्री
1: दूसरे बगल में
2: हो जा बाटे नहीं चाहला भीरी रहे कि ओकर प्री
1: अच्छा अंत में हम
0: कौन संदेश देबा मैं होला कौन समाते के रिस्पांसिबिलिटी है लोगों के इंफॉर्मेशन है बोलता हूँ पूर्व डिसीजन लेके कुछ किने के चाहे ला नुवो लालवा ना था गवर्नमेंट नुवो लालवा ने बा लोगों के सुविधा के लिए प्रोफिट के लालवा कुछ बोला यूनिट प्राइसिंग नहीं आता कुछ चीज कंपोनेंट होता 145 टेलीफोन निकला हम मिनी सेवा कंसुमेटर के जब तक पोस्टेज कर रहा था न्यू लालवा
1: के लाभ खातिर हां
0: उन्हें के लाभ खातिर मजा उन्हें के पर्सिंग पावर खरीदार की शक्ति बरकरार रखेंगे खुद होता मोती दिशान होला सनवा पोस्टेज के रसा आसवाज उनका उनका रसा तब विखान ने बोला सब देखे कुछ किन दूसरा प्री देखे के कुछ किन दूसरा खाए किन दूसरा बीजेक में रह के लालवा बा फौजी बेसे होलबा सकब किने तो लोग की सुविधा के अब और ये आना था गवर्नमेंट और लालो आनी प्रदेश के कौन समाज
1: हम के प्रोग्राम सुनते रहे या अंत में कौन सी बोला
2: जो जैसे ग्राहक तो अपन बीज से चाहना देखे कि बीज से के आधार पर खरीदारी कर और ये जहाँ प्रमोशन वो सब बात देख के निमन से किने के चाहना नहीं जैसे प्रमोशन बात टूट पड़ा किने के नहीं ऐसे नहीं स्मॉल बाइंग कर हमेशा और ये ओवर कंसुमेशन नहीं कर
1: तो ये सब जानकारियों के लिए श्रीमती जयश्री बसावन सुपोल जी को धन्यवाद देते हैं साथ में श्री रणवीर सिंह मिट्टू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और दोस्तों याद रखिए साफ और सही प्राइस डिस्प्ले सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ग्राहकों के लिए ग्राहकों के प्रति ईमानदारी और भरोसे का प्रतीक है और जब व्यापारी नियमों का पालन करते हैं और ग्राहक जागरूक रहते हैं तभी एक निष्पक्ष और मजबूत बाजार का निर्माण होता है तो आप सबों के ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों के ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

0: ये सुनते हैं समाचार अर्षिता के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। सरकार के विजन 2050 परियोजना ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण चरण पार कर लिया है। इस राष्ट्रीय पहल से जुड़े प्रमुख निष्कर्षों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये प्रक्रिया सरकारी भवन में आयोजित बैठक के दौरान पूरी हुई, जिसमें देश के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2050 तक मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को 50 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी 2000 बिलियन से अधिक मॉरिशन रुपए तक पहुंचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार करना है। सरकार के अनुसार इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। क्वीन विक्टोरिया में बुधवार 22 जुलाई को एक नए स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की गई। इस सुविधा का उद्देश्य स्थानीय निवासियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को उनके घर के निकट आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके शुरू होने से अब लोगों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी। सरकार का कहना है कि इस स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं अधिक आसानी और सुविधा के साथ उपलब्ध होंगी, जिससे ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और बेहतर होगी। क्यूपिप के टाउन हॉल में बुधवार 22 जुलाई को मैंगो सागा के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मॉरिशस में पाकिस्तान के उच्चायोग की पहल पर किया गया। इस अवसर पर पाकिस्तान की विभिन्न प्रसिद्ध आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में कुछ लोगों के लिए एक पुराने स्वाद ये पुराने स्वादों की यादें ताज़ा करने का अवसर रहा, जबकि अन्य लोगों ने पहली बार इन विशेष किस्मों के आमों का परिचय प्राप्त किया। इस आयोजन के माध्यम से मॉरिशस और पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी रेखांकित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन में जून महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने न केवल तापमान के नए रिकॉर्ड बनाए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डाला है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भीषण गर्मी के कारण लगभग 2.4 करोड़ कामकाजी घंटे प्रभावित हुए, जिससे करीब 1.15 बिलियन पाउंड के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार 22 जून वाले सप्ताह में गर्मी के कारण सर्वे में शामिल 3.6% लोगों यानी लगभग 12.5 लाख कर्मचारी ने एक दिन काम नहीं किया। सबसे अधिक प्रभावित वे क्षेत्र रहे जहां काम बाहर खुले में करना पड़ता है, जिनमें निर्माण, परिवहन और कृषि क्षेत्र शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक गर्मी के कारण स्कूलों, अस्पतालों और रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा। इस वर्ष इंग्लैंड में जून का महीना अब तक का सबसे गर्म जून दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक मौसम संबंधी घटनाएं अधिक आम होती जा रही हैं और भविष्य में ऐसी भीषण गर्मी ब्रिटेन की आर्थिक वृद्धि के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे, बढ़ते हैं शोक समाचार की ओर। गजादर स्ट्रीट स्थानीय रोजिल में 91 साल के श्री मुत्तुकप्पन श्री

0: मुतुका पेन जिन्हें कादरिस के नाम से लोग ज्यादा जानती थी और जो पहले लाशोमिया की कारखाने में काम करती थी। उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके घर स्थानीय रोजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए समौते मोहश की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio. Man.

0: नमस्कार, हेलो सभी को, मैं हूँ आपके साथ पूनम और आप सुन रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन। अगर इस वक्त आपने रेडियो की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दी है तो अगले एक घंटे तक आपको बस सुनने को मिलेंगे 90s के उन गीतों का साथ जो कि आपको बहुत रेयरली मिलता है और सिर्फ मिलता है इसी प्रोग्राम में दिल से मिले दिल के साथ में। 4:12 हो चुके हैं और मुझे पता है आप बहुत एक्साइटेड होते हैं ये 90s के गानों को सुनने के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से सफ़र की। मेरे साथ बैठिए, इन्जॉय कीजिए इन गानों को।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी,

0: भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC Radio presents One Day RJ. MBC Radio पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: Don't miss it.

0: 4:26 हो चुके हैं। आप सब जानते हैं कि अभिजीत जी बॉलीवुड की वो आवाज़ है जिन्होंने 90s के कई सुपरस्टार्स को अपनी आवाज़ दी और आज भी दिलों पर राज करते हैं। अगर आपको भी 90s के गीत पसंद है तो इस शनिवार 25 जुलाई SBICC जरूर जाइएगा। अभिजीत जी की जादुई आवाज़ को सामने से सुनने का मौका मिलेगा। बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये इंजॉय कीजिए उनका प्यारा सा गाना।
1: RM3 Radio.

0: 4:33 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिल से मिले दिल प्रोग्राम के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। 90s के गानों की बात जब चलती है ना तो एक गाना ऐसा है जिसको सुनते ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा गीत जिसे चलाते ही मतलब कहते हैं कि हमेशा ये गाना हमारे आस पास कोई ना कोई गुनगुनाता रहे। और इसमें अक्षय कुमार और अश्विनी भावे ने फिल्माया था और कुमार सानू और साधना सरगम ने आवाज़ी थी और इसे ऐसा यादगार गाना बना दिया। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को जो दिल को छू लेने वाला है, प्यारी सी गाने की आवाज़ में जो है शायद इसको सुनना ही पड़ेगा, इसके बारे में क्या बोलूँ, सैनिक मूवी से है, इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: RM3 Radio.

0: 4:40 हो चुके हैं दोस्तों, और इस समय अगर आप अपनी शॉप में हैं या किसी काम में लगे हुए हैं तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। उम्मीद है ये गीत आपकी थकान को थोड़ा सा कम कर रहे होंगे, और अगर आप अभी चाय का टाइम है और चाय की चुस्की ले रहे हैं तो 90s का ये प्यारे से गाने, प्यारे से गीत, मुझे लगता है कि इससे अच्छी शाम क्या हो सकती होगी। इंजॉय कीजिए, ये गाना बहुत ही पसंदीदा है मेरा भी, और मुझे लगता है आप सबका भी। इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: RM3 Radio.

0: 4:46 हो चुके हैं दोस्तों, और अगर इस समय आप रसोई में हैं और रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं तो हाथ अपना काम करते रहिए और कानों को हमारी तरफ रखिए। पता ही नहीं चलेगा सब्जी कब बन गई, सलाद कब बन गई, रोटियां कब बन गई और शाम इतनी सुहानी कब हो गई, आपको खुद नहीं पता चलेगा। बस आपको सिर्फ करना है एक है कि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है और 90s के गानों को इंजॉय करना है। और हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 90s के गाने सुनते ही हमें पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे हम अपने टाइम में पहुंच गए। मैं एहसास कर सकती हूँ, ये प्रोग्राम सिर्फ 90s का है। अगर आप कोई भी टाइम में कोई भी एरा में जाएंगे तो जो जो जहाँ जहाँ जब जब टाइम में पैदा हुआ है उसको अपने टाइम के गाने ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इन्जॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को, उसके साथ साथ हम आपको सुनाएंगे एक और प्यारा सा नगमा।
1: RM3 Radio.

0: और अगर आज थोड़ा सा दिन मुश्किल भरा रहा होगा और कुछ ऐसा लग रहा होगा कि अरे आज ये बहुत दिन डिफिकल्ट रहा, तो बिल्कुल नहीं सोचना है, घर जाइए, रिलैक्स कीजिए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से ड्राइव कीजिए, और अगर घर में हैं तो बस स्माइल करते हुए, जो आ रहे हैं, जो परिवार के लोग सुबह से बाहर गए हुए थे, उनको आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ देखेंगे तो उन्हें और खुशी होगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गाना आप सबके लिए।
1: RM3 Radio.

बातों ने आपकी शाम को और खूबसूरत बना दिया होगा। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है संजय जी का, एंजॉय कीजिएगा उनके प्रोग्राम को।

0: 94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: इस समय शाम के 5 बज रहे हैं।
2: रसधारा
1: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। राम रसधारा के सभी श्रोता भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सिया राम, जय जय हनुमान। आप सबों को रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हार्दिक अभिवादन है। आज के इस रामायण सत्संग की शुरुआत करते हैं श्री गणेश वंदना के साथ।

0: रामरसधारा।
1: जी हाँ श्रोताओ, रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आप सुन रहे हैं रामरसधारा। शाम के 5 बजे से लेकर 5:50 तक प्रोग्राम की शुरुआत में माता सरस्वती और भगवान श्री गणेश जी के चरणों में नमन करने के बाद अब पेश करते हैं, प्रस्तुत हैं श्री राम जी की स्तुति।

0: रसधारा
1: ओम नीलाम मुझे श्याम अलको मलंगम सीता समारोपितवाम भागम पानौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठ वातात्मजम वानरयुत्य मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। देवी और सज्जनों, आप कुछ भी कर रहे होंगे, आपसे बस चंद सेकंड्स का ध्यान चाहते हैं, और खासकर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं इस समय, तो एक दो सेकंड के लिए आप हनुमान जी का ध्यान करें। हमें यकीन है आप गुरु जी रवि भगवान का ये उनकी ये पेशकश अवश्य पसंद करेंगे। पेश हैं श्री हनुमान चालीसा महावीर हनुमान जी के चरणों में।

0: रसधारा।
1: जय सियाराम। देवी और सज्जनों, आज के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम रसपान करेंगे जटायु प्रसंग का। माता सीता हरण के बाद जब रावण जी पंचवटी को छोड़ लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उनकी चीखों को सुनकर जटायु जी उनकी सहायता हेतु आते हैं। जब जटायु जी पीड़ित थे, इससे पहले जब जटायु जी पीड़ित थे, दुर्बल थे, तो माता सीता जी ने उनका इलाज किया था, उन्हें अन्न दिया था। उसी सेवा की मान रखने के लिए महान जटायु ने अपनी जान का ख्याल न रखते हुए लंकापति रावण से लड़ गए, ये जानते हुए कि उनकी मृत्यु निश्चित थी।
2: इस भजन में राम भक्त गिद्धराज जटायु का वर्णन किया गया है।

0: रसधारा
1: रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आप सुन रहे हैं राम रसधारा प्रोग्राम भाई संजय के साथ। जय सियाराम देवी और सज्जनों, वीर जटायु की गाथा सुनने के बाद बढ़ते हैं हनुमान जी की ओर। हनुमान जी, जामवंत जी और उनकी टोली जब सागर तट पर पहुंचते हैं माता सीता की खोज में, तब वहां पर वे मिलते हैं जटायु जी के बड़े भ्राता संपत्ति से, और वो संपत्ति जी होते हैं जो संकेत करते हैं कि हो सकता है माता सीता लंका में हो। और तब जाकर बाद में जामवंत जी हनुमान जी को प्रेरित करते हैं और हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका की ओर जाते हैं और वहां पर सीता माँ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।

0: रसधारा।
1: जय सियाराम श्रोताओ, अगले बुधवार 29 जुलाई को हम सब मिलकर श्री गुरु पूर्णिमा का महान पर्व मनाएंगे। जब भगवान श्री राम जी अवतरित हुए थे तो उनके भी गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, फिर उसके बाद गुरु विश्वामित्र। जब कृष्णा जी भी अवतरित हुए तो उनके भी गुरु बने संदीपनी। तो हम सब मिलकर अपने अपने गुरु जनों का पूजन करेंगे और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने गुरु के जरिए सनातन वैदिक धर्म के सभी गुरुओं को नमन करेंगे। आदि गुरु शिव जी से लेकर सप्तऋषि आदि शंकराचार्य, कृपाचार्य, जितने भी गुरुजन आए और जिनकी बदौलत आज हमें इतना ज्ञान की प्राप्ति, इतने ज्ञान की प्राप्ति होती है, उन सभी गुरुओं को हम नमन करेंगे अपने गुरु के जरिए। आज के इस प्रोग्राम के अंत तक हम आप पहुंचे हैं। मिलते हैं अगले गुरुवार को, जब हम सब श्रवण मास में होंगे, अति पावन श्रवण मास में। आज के लिए हमारी ओर से जय सियाराम, जय जय हनुमान।

0: रसधारा।
1: जी हाँ श्रोताओं, और कुछ ही पहलों में शाम के 5:10 हो जाएंगे और राम रसधारा इस प्रोग्राम का समय समाप्त होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे किरण जानकी जी की प्रस्तुति में हमारी धरोहर प्रोग्राम, उसके पश्चात एक भोजपुरी गाना, और भोजपुरी गाने के बाद आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, जबकि हमारी आपकी अगली मुलाकात होगी इस अगले शनिवार को शाम के 4:00। प्रोग्राम होगा गीत गाथा देश की। आज के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय सियाराम, जय जय हनुमान।
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
6: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने चांद पर बात करब जा। एक दूसरे महीने आगे हमने देख ली जा कि कैसे चांद पर जो पहला कदम पड़ रहा वो गतिविधि कैसे चला रहा, और आज देखब जा कि चांद पर इंसान कैसे पहुंचल। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग के पहुंचला के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनावल जाला हर 20 जुलाई के। 20 जुलाई 1969 के हो रहा, और इस दिन पर नील आर्मस्ट्रांग चांद पर अपन पहला कदम रख ले रलन। इस दिन के मून डे चंद्र दिवस भी कहाला। चांद पर मानव के पहला कदम के जो उपस्थिति पड़ल ओके सम्मानित खातिर ई अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस मनावल जाला, और ई पृथ्वी के समस्त जीव इंसान के ताकत के एगो

प्रतीक है। कैसे इंसान सकल अपन मन मस्तिष्क के बल पर चांद पर कदम रखे एगो प्लैनेट से दूसर प्लैनेट तक। 20 जुलाई के दिन नील आर्मस्ट्रांग चांद पर अपन पहला कदम रखले रलन। ई अंतरिक्ष यात्रा में नील आर्मस्ट्रांग अकेले नहीं रलन, उकर संगे बज एल्ड्रिन ने रलन। दुनिया ई ऐतिहासिक कार्य के साक्षी बनल। ई सफलता के जश्न मनावे खातिर हर 20 जुलाई के मून डे मनावल जाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 20 जुलाई के जब नील और बज के अंतरिक्ष यान चांद के तह पर पहुंचल और जमीन पर पहुंचल, तो ई मिशन से जुड़ल सब कोई के सांस एक घड़ी खातिर रुक गल रहल, थम गल रहल और धड़कन तेज हो गल रहल। जब नील और बज चांद पर गैलन सा, तो कोई नहीं सोच ले रहल कि उ लोग के कामयाबी मेरी की नहीं। कहे कि ऐसा ढेर घटना होल बा जहाँ पर अंतरिक्ष पृथ्वी से निकलल लेकिन वो अपन जो मंजिल बा हुआ नहीं पहुँचल। जब ये दोनों जना चांद के सतह पर पहुँचलन सा, तो अलार्म बजल और यान में ईंधन के मात्रा भी बेहद कमती हो गल रहल। लेकिन नील के हुनर के भी कोनो जवाब नहीं रहल और वो सहजता से अंतरिक्ष यान के चांद पर उतार देलन। नील चांद पर अमेरिकी झंडा लहरा दिलक, चांद के सतह एकदम उबर खाबड़ रहल। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहला कदम रख के इतिहास रच दिलन। जहां उ लोग अमेरिकी झंडा लगेलन सा, हुआं ई भी लिखलन सा, चांद के इस जगह पर धरती से आयल इंसान पहला हला कदम रखलक। जुलाई 1969 में हमी पूरा मानवतावाद के शांति खातिर यहाँ पर आल है सा। नील और बस चांद तक ई सफर अंतरिक्ष यान अपोलो में 16 जुलाई के शुरू कर ले रलन सा। अपन इंटरव्यू में नील बोलन कि ई सफलता के श्रेय वो हजारन जना के जाता जे लोग ई मिशन पर काम कर ले हवन सा। अपोलो के ई मिशन में औरत लोग के अहम भूमिका रहल, लेकिन पुरुष लोग के सम्मान उ लोग के ई मान्यता नहीं देवल गल। लेकिन आज जब ई दिन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनावल जाला, तो ई बात के ज़रूर रेखांकित करल जाला कि चांद पर इंसान के जन पहला कदम पड़ल ओकर पीछे औरत के भी हाथ रहल। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।

23 जुलाई गुरुवार का दिन इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सरकार की विजन 2050 परियोजना ने आज एक और महत्वपूर्ण चरण पार किया। देश के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस योजना के मुख्य निष्कर्षों को मंजूरी दी गई। उद्देश्य 2050 तक 2000 बिलियन मॉरिशन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना है। एमओयू के कस्टम्स विभाग के कार्यों का जायजा लेने, सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उसे और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आईएमएफ की एक टीम इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर है। प्रतिनिधियों ने आज प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। सुरों का जादू, मधुर आवाज और यादगार गीतों से सजी एक खास शाम का इंतजार अब बस कुछ ही दिन दूर है। शनिवार को भारत के मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य अपने सदाबहार गीतों से श्रोताओं का दिल जीतने आए हैं। कलाकार आज सुबह मॉरिशस पहुंचे। अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सऊदी अरेबिया अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेगा। इस समझौते से अमेरिकी कंपनियों

0: कंपनियों को भी सऊदी के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 16 जिलों में 8 लाख से अधिक लोग इस आपदा से प्रभावित हुए। इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सरकार की विजन 2050 परियोजना ने आज एक और महत्वपूर्ण चरण पार किया। गवर्नमेंट हाउस में देश के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस योजना के मुख्य निष्कर्षों को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य 2050 तक मॉरिशस को 50 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी 2000 मॉरिशन रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले दिन जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। और मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के कस्टम्स विभाग के कार्यों का जायजा लेने, सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उसे और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आईएमएफ की एक टीम इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर है। इस टीम ने आज ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से रस्मी मुलाकात की। इस मुलाकात में एमओए के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। सिंशा मुत्तू, अदिति अवतार।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक प्रतिनिधि मंडल मॉरिशस आया हुआ है। मकसद है देश में टैक्स प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकों के मुकाबले इसकी परिपक्वता के स्तर का आकलन करना। ओगुस्तो अजाएल पेरेज आस्कागा, स्टेफेन मेंडेस, आल्दो सिल्वानो और ऑस्कर अल्बर्टो नियेतो मोरा मॉरिशस के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने आज मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित रामनवास की उपस्थिति में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ भेंट की। एमओए के महानिदेशक ने कहा, ट्रेड फैसिलिटेशन से जुड़े खतरे पाटने के लिए और दूसरी तरफ देश में अवैध सामानों का प्रवेश रोकने के लिए वे हमारे टैक्स क्षेत्र को ज्यादा मजबूत बनाने में हमारी सहायता करेंगे। साथ ही कस्टम्स की कारगरता बेहतर करने में मदद मिलेगी। जब आयातक या निर्यातक कंटेनर मंगवाते हैं तो वे जल्द से जल्द उसे प्राप्त करना चाहते हैं। हम ऑपरेशन खर्च भी कम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष की क्षमताएं बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा। टैक्स अधिकारियों द्वारा इस मूल्यांकन के बाद एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके साथ मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी की कार्य क्षमता बेहतर करने के लिए सहायक उपाय भी शामिल होंगे।
0: जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि सरकार की विजन 2050 परियोजना ने आज एक और महत्वपूर्ण चरण पार किया। गवर्नमेंट हाउस में देश के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस योजना के मुख्य निष्कर्षों को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य 2050 तक मॉरिशस को 50 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी 2000 मॉरिशन रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है। अब्दुल बोला की याचना मिश्रा।
2: विजन 2050 पर 6 महीनों के अंतर्राष्ट्रीय परामर्श के बाद अब आने वाले दशकों के विकास को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख रणनीतियों को अंतिम रूप देने का समय आ गया है।
3: Between now and 2050, we will be losing 180,000 Mauritians to aging, which we will not.
2: 23 जुलाई को सहरी लालबाग जीहोल में आयोजित बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों, आर्थिक क्षेत्र के संचालकों, शिक्षाविदों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को मुख्य निष्कर्षों पर जानकारियां दी गईं। प्राथमिकताओं में नशा और अपराध मुक्त समाज का निर्माण, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना, आधुनिक ढांचों का निर्माण, अच्छी नौकरी पैदा करना, रिन्यूएबल ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव, पर्यावरण संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सुदृढ़ बनाना तथा अधिक लचीली नवाचार आधारित और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था का निर्माण शामिल है।
3: फिफ्टी बाई फिफ्टी
2: एक ऐसी अर्थनीति जो 2050 तक 50 बिलियन डॉलर की होगी। इसके लिए काम करना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा और आश्वस्त करना होगा कि सभी इसमें भाग लें। वक्ताओं ने मॉरिशस के लिए ऐसी दीर्घकालिक और साझा राष्ट्रीय विजन के महत्व पर बात की, जिससे रणनीतिक बदलावों से परे जाकर

0: आने वाली पीढ़ियों की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।
1: Everything in there, is that vision clear enough for country?
2: C'est un visioning exercise, hein?
0: हमें 2050 का मॉरिशस दिख रहा है, ये मार्ग प्रशस्त करता है। आशा है कि इसके लिए सरकार माध्यम और निवेश देगी। ये कार्रवाई पहले ही कर देनी चाहिए थी। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ठोस वित्तीय स्थिति की जरूरत है। शिक्षा को भी पर्याप्त होना होगा ताकि चुनौतियों का सामना किया जा सके।
3: La sécurité alimentaire évidemment est un sujet très important.
0: खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है और देखना होगा कि भूमि का प्रयोग कैसे किया जाए।
3: De l'utilisation des terres à Maurice
4: est très important qui tout à chacun dans nos populations de sentise belong to that vision.
0: सभी को इस विजन को अपनाना चाहिए, इसे अमल में भी लाया जाना चाहिए। वैलिडेशन चरण के बाद दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद चरणों में इसे लागू किया जाएगा।
5: L'avenir se prépare. Si nous pas faire ça, comme aujourd'hui nous payons la crise.
0: भविष्य की तैयारी चल रही है। आज जल, बिजली, बुजुर्गों की बढ़ती संख्या, पेंशन, सब प्रकार की चुनौतियां हैं, क्योंकि इसकी तैयारी या पूर्व योजना नहीं की गई थी। हम अपने बच्चों को ऐसा देश नहीं सौंप सकते हैं। इसी वास्ते विजन 2050 भले ही दूर दिखता हो, लेकिन तैयारी आज से ही शुरू है। विजन 2050 की तैयारी के तहत मॉरिशस और रोड्रिग्स में 13 परामर्श बैठकें लगाई गईं। इनमें अलग अलग क्षेत्रों से 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आर्थिक क्षेत्र की प्रतिनिधियों, श्रमिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, युवाओं, शिक्षाविदों तथा अन्य साझेदारों के साथ भी विचार विमर्श हुए। अधिकारियों के अनुसार ये प्रक्रिया आने वाले 25 सालों में मॉरिशस के सतत विकास और विजन 2050 का मजबूत आधार बनेगा।
6: लातोकेनिक के निवासी हवा की स्वच्छता को लेकर चिंतित हैं। हालांकि नेशनल एनवायरमेंटल लैबोरेटरी का कहना है कि जांच में हवा की किस्म सामान्य पाई गई है। 9 जुलाई को इलाके में फैली तेज गंदबास की एक फैक्ट्री में हैवी ऑयल के रिसाव के कारण थी। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार फैक्ट्री ने अब इस समस्या को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा लिए हैं। सेंचुबेया में सार्वजनिक परिवहन की समस्या को लेकर स्थानीय लोग कई सालों से आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले गुरुवार इस मुद्दे पर राष्ट्रसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया गया था। इसके बाद सोमवार से इस रूट पर एक अतिरिक्त बस लगाई गई। एनएलटीए ने भी इस मार्ग पर जांच की, लेकिन बस का इंतजार कर रहे यात्रियों का कहना है कि बस अब भी कम चल रही है। उनका कहना है कि इस समस्या का स्थाई समाधान निकाला जाए। और बात करें हम अन्य खबरों में, पाकिस्तान के मशहूर आमों की मिठास और खुशबू का रंग आज क्यूपिक में देखने को मिला। पाकिस्तान हाई कमीशन की पहल पर सिटी हॉल में मैंगो सागा के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को पाकिस्तान की कई मशहूर किस्मों के आमों का स्वाद चखने का अवसर मिला। साथ ही मॉरिशस और पाकिस्तान के बीच दोस्ती और सांस्कृतिक संबंधों को भी उजागर किया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट, सुनते हैं ये रिपोर्ट।
7: मीठे और रसीले कई तरह से परोसे गए पाकिस्तानी आमों ने मेहमानों का दिल जीत लिया। जो लोग पहले पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं, उनके लिए इनका स्वाद पुरानी सुखद यादें ताज़ा कर गया। नसरीन मियाजा कहती हैं, मैंने पाकिस्तान में 5 सालों तक पढ़ाई की थी। हम गर्मियों के दौरान वहाँ के आमों का आनंद लेते थे। इस गतिविधि से आज आम से जुड़ी मेरी यादें ताज़ा हो गई। मॉरिशस में ऐसे आम नहीं मिलते। इब्राहिम अलादीन कहते हैं, आम मेरा मनपसंद फल है। जब मुझे पता चला कि मैंगो फेस्टिवल लग रहा है तो मुझे यहाँ आना ही था। आम से लस्सी, आइसक्रीम आदि कई तरह की चीजें बनती हैं और पाकिस्तान अपने आमों के लिए मशहूर है। पाकिस्तानी रिवाजों और संस्कृति में आम का बहुत बड़ा महत्व है। मुख्य रूप से सिंध और पंजाब क्षेत्रों में उगाए जाने वाले आमों की कई किस्में होती हैं।
8: हमारा जो मेन मकसद है वो ये कि पाकिस्तान और मॉरिशस की जो तिजारत है, जो ट्रेड है, उसको इंक्रीज़ किया जा सके। और देर आर और भी काफ़ी सारे आइटम्स हैं, लेकिन

0: मैंगो जो है एक ऐसा आइटम है जिसपे हम समझते हैं कि एक नई चीज़ हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं मैंगोज़ की पाकिस्तान में। उनमें से इस टाइम जो हम देख कर आए हैं वो मैंगो चौंसा है, और ये वाइट चौंसा कहलाता है। लेकिन ये कि जो मैंगो का सीज़न है वो 31 मई से 31 अगस्त तक है, तो उसमें बहुत सारी किस्में वैरायटीज़ आती रहती हैं, और अगले महीने में कुछ और वैरायटीज़ भी आएंगी, वी विल ब्रिंग देम एज वेल। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो आउटलेट्स हैं यहाँ पे उनमें रखें। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मॉरिशस दोस्त हैं वो इसको इंजॉय करेंगे।
1: जब हम अपने पाकिस्तानियों से मिलते हैं और हमारे एम्बेसडर अहमद रज़ा जब यहाँ ऑर्गेनाइज़ करते हैं सारे फेस्टिवल पाकिस्तानी, तो सेम लगता है जैसे एक छोटे से पाकिस्तान में आ गए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मॉरिशियन लोगों से भी, हमारे पाकिस्तानी सब जब कम्युनिटी मिलती है तो कोई उसमें मतलब ऐसा मिस नहीं होता है, सेम लगता है जैसे पाकिस्तान में हम इंजॉय करते थे हर इवेंट, सेम अब यहाँ पे भी ऐसा।
2: इस फल की खेती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम सेक्टर है। देश में हर साल 1.8 मिलियन टन से ज्यादा आम का उत्पादन होता है, जिससे ये दुनिया के प्रमुख उत्पादक देशों में शामिल हैं। पुरानी यादें, नई खोज और सहयोग का मेल, मैंगो सागा के इस दूसरे संस्करण का मकसद है मॉरिशस और पाकिस्तान के बीच सहयोग का एक पुल कायम करना।
3: प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने प्रेमचंद दिवस मनाया। इस अवसर पर वाकवा के सियाश कोंसौते थिएटर में मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना बूढ़ी काकी का मंचन किया गया। कार्यक्रम में प्रेमचंद के प्रशंसक, हिंदी प्रेमी तथा अनेक आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे। मॉरिशस की पत्रकारिता जगत के लिए एक दुखद समाचार। वरिष्ठ पत्रकार नसीम अकबर अली का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वीकेंड स्कोप से की थी, जहां वे सांस्कृतिक विषयों और भारतीय सिनेमा पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे। बाद में उन्होंने ले मोरिशिया में कृषि क्षेत्र से जुड़े विषयों को पेशेवर अंदाज में कवर किया। उनके निधन से मॉरिशस की पत्रकारिता ने एक समर्पित और सम्मानित पत्रकार को खो दिया है। एमबीसी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके परिवार तथा सभी परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। सुरों का जादू, मधुर आवाज और यादगार गीतों से सजी एक खास शाम का इंतजार अब बस कुछ ही दिन दूर है। इस शनिवार भारत के मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य SVICC के मंच पर अपने सदाबहार गीतों से श्रोताओं का दिल जीतने आ रहे हैं। कलाकार आज सुबह मॉरिशस पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर मॉरिशस लौटने की खुशी जाहिर की, और इस पर हम अपनी बुलेटिनों के अंतर्गत ज्यादा जानकारी के साथ आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है। ये दिन देश में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद में मनाया जाता है। पिछले लगभग एक शताब्दी में प्रसारण ने लोगों तक समाचार, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। आज डिजिटल युग में भी इसकी प्रासंगिकता बरकरार है।
4: हर साल 23 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे, जिसे आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, से देश की पहली संगठित रेडियो प्रसारण सेवा शुरू की थी। हालांकि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कुछ वर्षों बाद बंद हो गई, लेकिन इसी पहल ने भारत में आधुनिक प्रसारण व्यवस्था की नींव रखी। वर्ष 1936 में इसकी जगह ओल्ड इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1957 में इसे हिंदी में आकाशवाणी नाम दिया गया। इसके बाद आकाशवाणी ने देश के शहरों से लेकर दूर दराज के गाँवों तक अपनी मजबूत पहचान बनाई। समय के साथ रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, समाचार, मौसम की जानकारी, खेल, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से इसने करोड़ों लोगों तक उपयोगी जानकारियां पहुंचाई। प्राकृतिक आपदाओं और राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान भी प्रसारण लोगों तक समय पर सूचना पहुँचाने का भरोसेमंद माध्यम बना। प्रसारण ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न भाषाओं, लोक संगीत, साहित्य और नाटकों को देशभर के श्रोताओं तक पहुंचाकर इसने सांस्कृतिक विविधता को

0: मजबूत किया। आज प्रसारण का स्वरूप काफी बदल चुका है। पारंपरिक रेडियो के साथ साथ एफएम रेडियो, सैटेलाइट टेलीविजन, पॉडकास्ट, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और मोबाइल एप्स के माध्यम से लोग दुनिया के किसी भी कोने में अपनी पसंद के कार्यक्रम सुन और देख सकते हैं। आज भी आकाशवाणी देश के करोड़ों श्रोताओं तक समाचार, शिक्षा और जनहित से जुड़े कार्यक्रम पहुँचाती है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम मन की बात भी आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित होता है और भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में सुना जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस उन सभी प्रसारकों, पत्रकारों, निर्माताओं, टेक्नीशियनों और पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मान देने का अवसर है, जो हर दिन लोगों तक विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम करती है।
1: और यूरोप के कई देशों में जंगलों की आग लगातार फैल रही है। सबसे गंभीर स्थिति फ्रांस में है, जहां हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्पेन और इटली भी आग की चपेट में हैं। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन ऐसी घटनाओं को और गंभीर बना रही है। आस्था गोविंद चितवन।
0: फ्रांस में जंगलों की आग तेजी से फैलने के कारण कई लाखों से लगभग 12,000 लोगों को सावधानी के तौर पर निकाला गया है। अब तक करीब 2,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है। बोर्डो हवाई अड्डे के पास लगी आग पर काबू पाने के दौरान 2 दमकल कर्मियों की भी जान चली गई। उधर स्पेन में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। मैड्रिड के दक्षिण में टोलेडो के आसपास कई इलाकों को खाली कराया गया है। 3 से अधिक गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। वहीं इटली के सिसिली द्वीप पर आग बुझाने के लिए लगभग 6,000 दमकल कर्मी, वन अधिकारी और नागरिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद दर्जनों स्थानों पर आग अब भी धधक रही है। कैलाब्रिया क्षेत्र में भी 160 से अधिक आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कई आग जानबूझकर लगाई गई हो सकती है और इसकी जांच जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने यूरोप के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक यूरोप में पिछले 2 दशकों के औसत की तुलना में कहीं अधिक वन क्षेत्र आग की चपेट में आ चुके हैं, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स का 23वां संस्करण आज स्कॉटलैंड में ग्लासगो में शुरू हो रहा है। हर 4 साल में आयोजित होने वाली इस बड़े खेल आयोजन में इस वर्ष 74 देश हिस्सा ले रहे हैं। मॉरिशस भी इन खेलों में भाग ले रहा है। टीम मॉरिशस में लगभग 50 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 40 खिलाड़ी देश का चौरंगा झंडा लेकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि सुरों का जादू, मधुर आवाज और यादगार गीतों से सजी एक खास शाम का इंतजार अब कुछ ही दिन दूर है। और इस सिलसिले में भारत के मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के मंच पर अपने सदाबहार गीतों से श्रोताओं का दिल बहलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। वे आज मॉरिशस पहुंचे। कैंडी मंगा यशना मिश्रा।
2: प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है।
3: अपने कैरियर के दौरान अभिजीत ने हजारों गीत गाए। बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को अपनी आवाज उन्होंने दी है, खासकर शाहरुख खान को।
4: I pray same time and I say I promise that it will be a rocking show, historical show होगा। प्यार वो लोग देते हैं मुझे वापस करना उनका प्यार, इतना प्यार देते हैं। इट्स इज अ ब्लेसिंग कि हर आर्टिस्ट को नहीं मिलता है उतना, लेकिन आई एम लकी। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना अरे ना अरे ना, आ रहा हूँ, आ गया हूँ।
3: अपनी मधुर और गर्म जोशी भरी आवाज तथा भावनाओं से भरी गायकी के लिए प्रसिद्ध अभिजीत भट्टाचार्य आज भी अपने हर गीत के माध्यम से मन मोह लेते हैं। अपने फैंस को वे उस जमाने में पहुंचा देते हैं जब वे ये गाने गुनगुनाया करते थे।
1: बढ़ते हम मौसम के हाल की ओर याचना मिश्रा के साथ।
3: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह आसमान साफ रहेगा, दोपहर बाद भी धूप खिली रहेगी। हवा दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान

सेंट्रल प्लाटो पर 15 से 17 और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:43 पर, शाम को सूर्यास्त 5:49 पर होगा।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, और कंसल पर हमारे साथ लीडो विखे, उनको भी धन्यवाद देते हैं। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Sanchasuni, Railroad Balance Suriname, Railroad Balance Suriname, Unansi Sanliki, 79 years old, Shimati Savitri Ramtohal, Shimati Savitri Ramtohal, Pedashram Siratanojine, Sabit Kinam Siblok Zata Jantitikim Rituhogi, Hunki Arti, Kal Garabaji, Unkigar, Balance Suriname Sivtakar and Tim Saskarki, Suyakisham Shanbu Mili Jajagi, Cremation tomorrow at 11 AM. Gajadhar Street, Stani Rosilme, Gajadhar Street, Stani Rosilme, Ikianbi Sanlik. 91 years old ki shri mutuka pen mutuka pen shri mutuka pen mutuka pen jine kadres ke naam se log zyada jante the aur jula shumiya ki karkhane mein kaam karti thi ki mrityu ho gayi hai unki arthi kal 2:30 baje unke ghar stani rozil se utha kar antim sanskar ke liye samate mogosh ki shmshan bhumi li jayegi cremation tomorrow at 2:30 PM Obilak Street Branch Road Nouvelle France mein Obilak Street Branch Road Nouvelle France mein 78 साल की 78 years old की श्री राजेंद्र प्रसाद चैतन श्री राजेंद्र प्रसाद चैतन जिन्हें राजेंद्र के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे विशाल चैतन के घर नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजीन नुवेल फ्रांस की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन अपने घर में ला लीजिए इस वक्त शाम के ठीक 6:25 हो गए हैं

नमस्कार और आदाब। नई सोच कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस वक्त शाम की 6:26 हो गई है। अभी आपका साथ देगा यहाँ पर रात की 9 बजे तक का।

जी हाँ दोस्तों, मेरी पुकार सुन ले। और इस पुकार को सुनने के लिए यहाँ पर रेडियो मनोरंजन में पाए जाने वाली जो नई सोच कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हो गई है अभी के साथ। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम आपका साथ देंगे यहाँ पर रात के 9 बजे तक। इसका मतलब ये है कि अभी नई सोच 7 बजे तक हम आपके खिदमत पेश करेंगे, फिर इसके बाद 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक हम दिलों की आवाज़ कार्यक्रम की पेशकश करेंगे। सो आज एक ऐसी नई सोच आप लोगों की खिदमत हम पेश करेंगे। इस गाने के बाद डेफिनेटली हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली जिंदगी

जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम अभी के साथ। और आज की जो सोच है अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी, अपने रूटीन, अपने जिम्मेदारियों से इतने उलझ गए हैं कि हम लोग उसको सुलझाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। उलझे उलझे रास्ते से भटकते भटकते हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग थक जाते हैं और उस थकान को लेकर के हम लोग फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू कर जाते हैं। उस फ्रस्ट्रेशन में हम बीमारी भी पैदा शुरू करने लग जाते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी जिंदगी में जितना हो सके आप ब्रेक लीजिए, खुद के लिए समय निकालिए। जिम्मेदारियां तो होगी, काम तो होंगे, बहुत सारे लोगों के कर्तव्यों का पालन तो करना ही होगा, ये तो रोज आप करते हैं सुबह से लेकर के रात तक। लेकिन मेरे दोस्त, अगर खुद के लिए कम से कम एक घंटा या फिर कम से कम एक दिन या कम से कम 15 मिनट अगर आप निकालेंगे समय आपके लिए, तो आपको खुद अपने आप से प्यार होने लग जाएंगे। जितने सारे लोग काम से निकलकर घर की ओर जा रहे हैं, एंजॉय द बेस्ट म्यूजिक ऑफ रेडियो मनोरंजन अभी के साथ। इस वक्त शाम के 6:40 हो गए हैं।

अगर आपकी जिंदगी में कुछ करने का एक जुनून है तो आप उस हर लम्हे को अच्छी तरह से आप एंजॉय करेंगे, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी की मदद कर रहे हैं, चाहे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट में लगे हुए हैं। अगर आपके अंदर में उस काम करने का एक जुनून नहीं होगा तो आपके लिए वो काम एक बोझ हो जाएगा और उस काम में आप अपना 100% बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, जो कुछ आप करें पूरी शिद्दत के साथ करें, जैसे शाहरुख खान कहते हैं ना एक मूवी में ओम शांति ओम, कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ आप एक काम करेंगे तो उस काम को पूरा करने के लिए पूरी कायनात लग जाएंगे। सो व्हाई नॉट यू, एंड यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट योर ओन कैपेसिटी।

जी हाँ दोस्तों, रात बाकी है और बात भी बाकी है और इस वक्त शाम के 6:55 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी नई सोच का रकम यहाँ पर समाप्त होने जा रही है। लेट मी इन्फॉर्म यू कि रात के 7 से लेकर के 9 तक वी विल बी हैविंग दिलों की आवाज़। सो स्टे कनेक्टेड वीव अभी।

0: सीख ले।
1: जी हाँ दोस्तों, सीख ले और जी ले और अपने ज़िंदगी को इतने आसानी से उसको ऐसे ही गवाना मत कीजिए। अपनी ज़िंदगी बहुत ही प्रेशियस है और उस ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आपको खुद बहुत ही खुश रहना होगा।

जी हाँ दोस्तों, दिलों की आवाज कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपका साथ देंगे यहाँ पर रात के 9 बजे तक, और ऐसे ही हालात में आप हमें फोन कर सकते हैं 402-4072-8070 पर। कौन गीत सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाएंगे।

ये यादें किसी के चले जाने के बाद ही आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त रात के 7:23 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। रात बाकी हैं और बात भी बाकी हैं और मेरी जो खांसी है वो भी चलती जा रही है। क्या करें, ठंड का मौसम है, सो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग खांसी की, लोगों की खांसी चल रही है। और ऐसे टाइम पर कभी कभी हम लोगों को, मैं गिनीशा और विदिता को कहता हूँ, यार इतने ज़्यादा ठंड मत पियो, यही हमारी जुची है, हमारे गला, हमारा जो गला है वो यही हमारे जो औजार है काम करने का। मैंने उन लोगों को कहा, कहते कहते मुझे भी खांसी लग गई। कोई बात नहीं, ऐसी बड़े बड़े शहर में ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें अक्सर हुआ करती है। चलिए, यहाँ पर 5250 6200 पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, हैपनिंग राइट नाउ ऑन रेडियो मनोरंजन अभी के साथ। और सात समंदर पार करते हुए इस वक्त हमारे साथ भाई विनय गोबिन है, हमेशा हमारे साथ जुड़ जाते हैं बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv। सो ये गाना खासकर उनके नाम हम चला रहे हैं, उनके लवली वाइफ हैं जिनका नाम है गौरी, साथ ही साथ है यतीश और सानवी, इन दोनों को हम कहना चाहेंगे Keep enjoying the good music। और उन लोगों की छुट्टी शुरू होने वाली है, सो आप एंजॉय करते जाइए और रेडियो मनोरंजन का साथ देते जाइए। विनय, ये गाना खासकर आपके नाम।

और ये गाना खासकर हम याना और दिलान के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। साथ ही साथ हैं योगिता और उनकी प्यारी बहन है केशिनी और यजुरा। ये सब आज एडवेंचर, ये सब उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छी तरह से एक ट्रैकिंग किया है और उन लोगों को बहुत मज़ा आया, मस्ती उन लोगों ने की। तो ये गाना खासकर उन लोगों के नाम।

जी हाँ दोस्तों, इश्क, अगर आपकी जिंदगी में इश्क नहीं है तो ऐसा लगेगा कि आप एक जिंदा लाश की तरह हैं। इसलिए इश्क को बहुत बहुत सम्मान दीजिए, इश्क को बरकरार रखिए और इस इश्क को अपनी जिंदगी में इस हद तक उतारिए जिससे आपको नफरत करने की कोई गुंजाइश भी ना हो। समय भी नहीं मिलेगा, वक्त नहीं होगा नफरत करने के लिए, क्योंकि आप एकदम इश्क में सराबोर हो जाएंगे। चलिए अगला गीत स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे किसके नाम। ओके, वी डू हैव रेहाना। रेहाना ने एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है, हम उसको चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा जलीला जियाद और मोहतरमा रेहाना के नाम। तो चलिए अगला गीत उनके नाम भी हम चलाएंगे जो इस वक्त ऑफिस से निकल कर घर की ओर जा रही हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, मायूस हैं क्योंकि बॉस से भी बहुत फटकार आई है। लेकिन क्या करें यार, ये भी जो जिंदगी है। अब बॉस की को लेकर के ज़्यादा माथा पच्ची मत करना, जो हो गया सो हो गया ना। अब घर जाइए, अपने फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताइए और मुस्कान के साथ आप उन लोगों का स्वागत कीजिए।

और इस वक्त हमारे साथ विक्रांत जुड़ भी गए हैं। वो अब घर से निकल करके पहुंच गए हैं काम में, एबेन में। अब उनकी नाइट शिफ्ट की शुरुआत हो रही है। उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है उनके सभी दोस्तों के लिए। बुकवास टू यू विक्रांत एंड द टीम। मुझे पता है नाइट शिफ्ट पे काम करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन डट के सामना करना मेरे दोस्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए। इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं।

0: है हो।
1: मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के

जब कुल जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। और हमारे हम सफर बनने के लिए थैंक यू सो मच, वेलकम बैक फॉर योर सेकंड आवर ऑफ दिलों की आवाज कार्यक्रम। लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब। अभी आपका साथ दे रहा है इस वक्त, और 402-80-70 पर फोन करने का आइडिया एकदम सॉलिड रहेगा। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो एक मैसेज भेज दे ऑन 5250-6200 फॉर योर मैसेजेस। कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे, चला देंगे जी।

जब कल ये जो गाना है स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे जॉन के नाम, साथ ही साथ विहान उसके साथ जुड़े हुए हैं। और लेट मी इन्फॉर्म यू कि ये गाना विहान जो खासकर अपने जो ब्लू टोपी है पहन करके एक फोटो खींच लिया, व्हाट्सअप में हमें भेज लिया, क्या बात है, विहान बिसुंदयाल के नाम हम डेडिकेट कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके पापा जी जिनका नाम है जॉन और इस वक्त छुट्टी में है स्कूल के और बच्चे की पूरे यू नो क्या कर रही है। सो ये गाना खासकर जॉन और विहान की मम्मी के नाम।

जी हाँ बिल्कुल, ये जो रात है अपने आप में बहुत ही दीवानगी के साथ भरी हुई है। रात बाकी है और बात भी बाकी है, और इस वक्त रात के 8:17 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। अगला गीत स्पेशली हम सुदेवी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, जो वाकवा के रहने वाली है, और वो कह रहे हैं हेलो, अभी आपके प्रोग्राम एकदम

इंटरेस्टिंग है। इसके लिए थैंक यू सो मच। जो वी हैव दीदी ललिता और जितने सारे कुशल फैमिली जो त्रियोली से हमें याद कर रहे हैं, भाई आत्माराम इस वक्त नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे हैं। वी ऑल्सो हैव दीदी सुनीता, शोभा, देवीना मालेगा से है, सभी राम रतन फैमिली, अभिजीत के बिना। अच्छा, अभिजीत का एक गाना चला दीजिए, चला देंगे जी, आप अटेंशन क्यों कर लेते हैं। सो अगला गीत उन सभी दोस्तों के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हियर वी गो।

और ये गीत उन तमाम दोस्तों के नाम जो अपने देश, अपने हमवतन को छोड़ करके अलग देश में गए हैं काम करने के लिए, घर की बहुत याद आ रही है।

दिल एकदम भारी पड़ गया है ऐसे गीत सुनने के बाद। क्या करें, जब घर की याद आती है ना, एक तरह का एक अलग लेवल की नॉस्टैल्जिया सामने जब आती है ना, आंखों से भी पानी छलकने लगते हैं और ये जो आंसू है बहुत ही मीठा हो जाता है। अभी के लिए कुछ कुछ हो रहा है ना, मूड को रोमांटिकली सेट करते हैं।

जी दोस्तों, बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि इतने सारे फोन कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस एक ही समय पर मिल रहा है, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के फोन कॉल्स लेने के लिए, आप लोगों के मैसेजेस पढ़ने के लिए और आपके गाने को चलाने के लिए। अभी के लिए कसूर का एक बहुत ही सुंदर गाना प्लीज चला दीजिए, मोहतरमा रेहाना ने कहा था ना, तो अब मैं चलाता हूँ। और ये गाना उन तमाम दोस्तों के नाम हम डेडिकेट करेंगे जिनको अलका याग्निक बहुत पसंद है, जिनको लीजा रे बहुत पसंद है, और ये फिल्म अपने आप में बहुत ही खूबसूरत थी। तो चलिए, ये गाना आप लोगों के नाम।

ऐसा लगता है कि हम उन सभी जितने सारे जो चिड़िया हैं जो जिनको उड़ने की एक अलग तरह की एक ताकत मिलती है, हम उनके पंख को काटने में लगे हुए हैं। जिनको कुछ करना है उनको करने दीजिए, वो करना चाहता है या करना चाहती है, इट्स ओके, यही जिंदगी है।

चलिए, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो रही है, इनके बहुत सारे तैयारियों में लगे हुए हैं, और जब आप अपने बाबुल के घर को छोड़ कर के चले जाते हैं तो वो जो दर्द है, वो जो प्यार है, वो जो खुशी है, अलग अलग तरीके से उभर करके सामने आते हैं। तो ये गाना आप लोगों के नाम। बहुत सारे घरों में शहनाइयाँ की जो गूंज है वो सुनती जा रही है। तो हम आपको कहना चाहेंगे, इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए बुकुआशा।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे गीत सुनने के बाद हम सचमुच भावुक हो जाते हैं और उन तमाम लड़कियों के लिए हमने, उन तमाम बहनों के नाम हम लोगों ने ये गाना चलाया है जिनकी शादी होने वाली है आने वाले दिनों में, इस वीकेंड में या फिर अगले वीकेंड में। हम आपको कहना चाहेंगे बुकवास। सो दोस्तों, आप लोगों की फरमाइश चलाते चलाते हम भूल गए हैं कि हम लोगों को भी घर जाना पड़ेगा ना। इट्स टाइम टू साइन ऑफ नाउ। लेकिन आप लोगों के साथ एक अच्छा वक्त बीता, इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। तब तक अभी की ओर से नमस्कार और आदाब, बाय बाय।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music all day, all night.
4: MBC TV, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
5: विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना उससे भी आसान है, मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना।
6: काश तुम कभी तो मेरा विश्वास करती।
5: आज से ठीक छह महीने बाद हम मिलेंगे 14 फरवरी को, उसी दिन जिस दिन प्यार करने वाले मिलते हैं।
7: रविवार 26 जुलाई को MBC 3 पर दिन के 12 बजे 1999 की मूवी मन, आमिर खान और मनीषा कोइराला पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म मन।
8: क्या ये

0: के धमाल भोजपुरी तड़का आज की रात किरण संगे।
1: आपके अपन मन पसंद भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में आप सब कोई के स्वागत बा। हम किरण आप सब कोई के ये प्रोग्राम में दिल से स्वागत करत है। हमार करजोर नमस्ते स्वीकार कर। आज जुलाई महीना के चौथा बीफे है। ये महीना देखत है जाकि पाँच को बीफे बा, तो और एगो बीफे अभी बाकी बा, लेकिन ये महीना के अंत तक लगभग चल ही आ रही सा। और ये बखत 9:03 होल बा। आप रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर अपन मनपसंद प्रोग्राम सुनत हवा। और आपके ही फरमाइश पर आज के भी प्लेलिस्ट बनते जाए। ये जो पहला गीत चली आप सब कोई के नाम, जुबेदा लुत्फ लेके जाए।

रात के 9:11 होलबा और आप लोग साथ देवत वजह आप लोग के फोन कॉल्स खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। रंभा रामधौल की आवाज में अभी विश्व विख्यात गीत सुन ल जुबेदा लुतुले के जाए और अगला जो गीत चली एक फरमाइश आलबा शीला जी के ओर से आप विनोद सिद्धत के आवाज में दगा दिले रे सुनरवा ये गीत सुनने चाहता हुआ और ये गीत आप अपन पति सुरेन अपन सब लयिका सब परिवार के नाम कर रहा था हुआ तो चला आपके मनपसंद गीत और ये गीत के और ये आवाज़ के ढेर शौकीन भी हमने संगे अभी जुड़ल हवन जा तो जितना कोई भी विनोद सिद्धत के फैन हवा जा आप सब कोई के नाम ये अगला गीत

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

आज बीफे के 23 तारीख है, 23 जुलाई 23 जुलाई 2024। और बीफे के जब दिन आवेला, खास तौर पर जब शादी ब्याह के मौसम चलेला, तो ऐसन में घर परिवार, घर आंगन और

0: पूरा गांव में से कब्जा बोले बहुत ही सुंदर माहौल बन जाला। तो जहाँ भी आजकल विवाह की तैयारी हुआ था, शादी ब्याह के जो इंतज़ाम बा वो हुआ था, बहुत ही खुशनुमा माहौल में आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। ऐसा ही एगो फरमाइश आलबा बुबा से मोगोश से, हुआ के बलिवन परिवार में एगो शादी हुई होला बा इस सप्ताहांत के, और बहुत ही चहल पहल शुरू हो गल बा। जैसे जानेला मॉरिशस में एक सप्ताह अक्ते से ही जब शादी होवेला तब घर में बहुत सुंदर वातावरण छा जाला, और आस पड़ोस के सब कोई मदद करेना जा, जितना परिवार हवन जा उलो के आवाजाही शुरू हो जाला। त बलियोन परिवार के घरे हर्षिनी के शादी हुई होला बा ओविन के साथ। हर्षिनी और ओविन के पूरा परिवार, पूरा बलिवन फैमिली के ओर से बहुत बहुत शुभकामना। उनकर माँ जिजिया, पापा राज, भाई अश्विन, मामू ऋषि और मामी सोनिया के साथ साथ पूरा परिवार, पूरा सगे संबंधी, सब दोस्त, सब पड़ोसी, सब आस पड़ोस के सगे संबंधी सबके ओर से आपके शादी के बहुत बहुत सालगिरह। हर्षिनी और ओविन के बहुत बहुत बधाई, और आप लोग के साथ साथ जितना कोई भी शादी के बंधन में बंधे जाता वजह इस सप्ताहांत या फिर आज या कल आप सब कोई के भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के ओर से एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामना।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे।

0: संगे एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: तूने तो कहा था कि शनि पिछले हफ्ते चला गया।
2: तुम्हारी कुंडली में अभी अभी कुछ ही क्षणों में प्रकट होने वाला है।
3: नमस्ते अंकल जी।
2: तुम्हारी लव स्टोरी इस खिड़की से शुरू हुई और कर्नल के कान पे जाके खत्म हो गई।
4: जीने के है चार दिन।
0: रविवार 26 जुलाई को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म मुझसे शादी करोगे 2004 की ये मूवी सलमान खान और अक्षय कुमार साथ नजर आएंगी। प्रियंका चोपड़ा कॉमेडी से भरपूर मूवी मुझसे शादी करोगे।

अभी थोड़ा घर आगे आप सुन ला पूर्णिमा फोकिरा के आवाज में पिया परदेश, और पिया परदेश के फरमाइश बहुत आवेला, अक्सर आवेला, और ये खुद पूर्णिमा फोकिरा जी के मनपसंद गीत था। तो आशा करे थे जा कि एकर आनंद आप खूब उठेला। और अभी चला था ज्ञान मोहिपत लाल के आवाज में ए बबुआ तू ना रो, एकर फरमाइश आत्माराम जी के ओर से, और खास तौर पर बॉशेरी के धनी जी के नाम। अब एकर बाद एगो सालगिरह गीत चली। सालगिरह हर रोज कोई ना कोई जरूर मनावेला। आज 23 तारीख के, 23 जुलाई के जिकर भी जन्मदिन बा, भोजपुरी तड़का में आप सब कोई के ढेरों शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। और ऐसने ही एगो शुभकामना आलबा हैप्पी बर्थडे गीत बसंत सुपोल के आवाज में। ये गीत के फरमाइश करा था वन हांसले और मारिलिन, हांसले और मारिलिन अपन भतीजी और अपन कुजिन आना के नाम करा था वन जा अगला गीत, जे लोग जे रेन्यून आइलैंड से हवन। तो हांसले और मारिलिन के ओर से उनकर भतीजी और उनकर कुजिन के नाम हैप्पी बर्थडे गीत, और उनकर संगे संगे जितना कोई भी आज काल या अभी से लेके लेंदी के हमने के मुलाकात हुई, जेकर भी जन्मदिन ई अंतराल में रही, हमने की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत प्यार और ढेरों आशीर्वाद।

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियां
1: ले रही थी। जीना तो मैंने अब से शुरू किया है, मुझे बहुत डर लग रहा है।
2: सपना मेरी होने वाली पत्नी है,
1: मैं जा रही हूँ।
2: तुम मेरा साथ छोड़कर कहीं नहीं जाओगी सपना।
0: शनिवार 25 जुलाई को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे। 2002 की ये मूवी ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल पर फिल्म आई गई आप मुझे अच्छे लगने लगे।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music all day on

ए बखत रात के 9:45 होल बा, मतलब कि 10 में अभी और 15 बाकी बा, और हमने के साथ रही जैसे जानेला हमेशा की तरह रात के 11 तक, और 1 घंटा और 15 बा हमने संगे। आप लोग के प्यार खातिर, आप लोग के साथ खातिर बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके फ़ोन कॉल्स खातिर ख़ास तौर पर धन्यवाद। अगला जनगीत चली, आप सब कोई के मनपसंद गीत है, सुना नोयन के आवाज़ में, उनकर स्वर्णिम आवाज़ में, जे भोजपुरी दुनिया में शुरू से तहलका मचेले हवन, ललका चिड़ैया।

दादा के पसल पसल ललका चिड़ैया उड़ल जाला, उड़ के कहाँ जाला, छोड़ के मोरिसवा आज का कोई कहाँ सके जाए। छोड़ के जब भी मोरिस गल बा तो रात दिन अपन देश के उ लोग के याद आल बा। तो चला ये गीत के फरमाइश आल बा हमनी के छोड़ के मोरिसवा। ये गीत सुने चाहत हवन भाई अब्बू। भाई अब्बू हमेशा की तरह ये गीत अपन पूरा परिवार के नाम करत हवन और ख़ास तौर पर उनकर भतीजी हवन रकीबा जिनकर तबीयत नासाज चलता। उनकर स्वास्थ्य समस्या अभी ठीक नहीं होल बा, लेकिन भाई अब्बू उनकर खातिर दुआ करत हवन रात दिन हर रोज़, और हमने के हर प्रोग्राम में उनकरा याद करत हवन। और रकीबा के मामू बोलत हवन कि उनकरा उभरपूर दुआ देवत हवन कि अल्लाह उनकरा शिफा दियन। और साथ में आप अबू अफेज, अयाज, सैयर, जहीरा, रईस, काला चोटी, आपी और उनकर पत्नी के नाम भी ये अगला गीत करत हवा। आतिश भगीरथी के आवाज़ में छोड़ के मोरिसवा आप सब कोई के नाम जे लोग खुशी रहे ला जा ये गीत सुने के। ये गीत के फरमाइश हर प्रोग्राम में करे ला जा।

0: एबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: तूने तो कहा था कि शनि पिछले हफ्ते चला गया।
2: तुम्हारी कुंडली में अभी अभी कुछ ही क्षणों में प्रकट होने वाला है।
3: नमस्ते अंकल जी।
2: तुम्हारी लव स्टोरी इस खिड़की से शुरू हुई और कर्नल के कान पे जाके खत्म हो गई।
4: जीने के है चार दिन।
0: रविवार 26 जुलाई को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म मुझसे शादी करोगे 2004 की ये मूवी सलमान खान और अक्षय कुमार साथ नजर आएंगी। प्रियंका चोपड़ा कॉमेडी से भरपूर मूवी मुझसे शादी करोगे।

0: जीवन संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: रात के 10 बजे में खाली 2 मिनट रह गया बा और फिर पूरा 1 घंटा तक हमनी के साथ रही। अगला जो गीत चली आदेश ठाकुर के आवाज में, आदेश ठाकुर प्रसाद के आवाज में ये गीत सुने चाहता वन। क्लावेट से विजय बंधन और विजय बंधन जी अपन पत्नी रेखा के नाम, अपन सब दोस्त के नाम और हमर नाम भी ये अगला गीत करत हवन और गीत के शीर्षक है हमरा छोकरी मिलल। तो चला सुनी जा, जब छोकरी मिलल तो आगे कहानी कैसे बढ़ल।

चमेली चमेली इगीत की फरमाइश कर ले हवन वाकवा से सुदेवी जी। और सुदेवी इगीत खास तौर पर अपन दीदी ललिता और कुशल परिवार के नाम करत हवन, साथ में आत्माराम भैया और सुनीता शोभा देवीना मालेगा के पूरा रमरतन परिवार के नाम, और जितना कोई इबकत हमने के सुना था वजह आप सब कोई के नाम वाकवा के सुदेवी के ओर से।

बाहर गौरी के आवाज में मामा और पापा और अगवा के बाद अगला जो गीत चली वो किशोर किमिया की आवाज में बहुत ही जोशीला गीत जिंदगी तू जमाल कुडू आप सब कोई के नाम

0: एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई परी उतर आई।
2: विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना उससे भी आसान है, मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना।
1: काश तुम कभी तो मेरा विश्वास करती।
2: आज से ठीक छह महीने बाद हम मिलेंगे 14 फरवरी को, उसी दिन जिस दिन प्यार करने वाले मिलते हैं।
0: रविवार 26 जुलाई को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे 1999 की मूवी मन आमिर खान और मनीषा कोइराला पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म मन।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: रात के 10:22 होल बा और 11 बजे तक आपके ई प्रोग्राम चले होला बा। कुणाल हिरिला के आवाज़ में थोड़ा घड़ी आगे एगो गीत सुनला, निशा निशा लगेला और एकर बाद जो नगला गीत चली वो फ्रीमान लुई लागा के आवाज़ में लाली लाली कान प्लांते। ये गीत जितना कोई भी फ्रीमान लागा के शौकीन उनकर फ़ैन हवा जा आप सब कोई के नाम, ख़ास तौर पर ये गीत बुआशरी के धनी जी के नाम।

श्रीमान लगा के ये गीत के बाद जो अगला गीत चली सरिता बुधू के एल्बम से ननद मोरे सोने की चिड़ैया, ये गीत के फरमाइश करा था वन फ्लिक ऑफ फ्लक से अनीता जी। और अनीता जी जितना कोई अभी रेडियो के साथ जुड़ल हवा जा आप सब कोई के नाम ये अगला गीत करा था वन।

अगला गीत स्वीटी की आवाज़ में, और ये गीत के मांग करता वन पीतो से अमृता गणेश। अमृता गणेश अपन बेटा विशान और बेटी, बेटा और बहू मीनाक्षी और विशान, और साथ में अपन दुगो पोती सोनिया और परी के नाम ये अगला गीत गा रहा था वन। पूछा था अपन पोती रुख खातिर ये गीत गावत गवावत हवा, तो पितों से अमृता गणेश जी आपके और आपके पूरा परिवार के नाम ये अगला गीत।

0: संगे।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। पियर पियर ऊठी के हरियर नगिनवा दिव्या रघु की आवाज में ये गीत खास तौर पर घोंगोप के सुनीता जी के ओर से उनकर बहन विमाला के नाम जे कोंगोमा से सुनत हवन और साथ में रोजिल के साजिद जी के नाम और

दिव्या रघु के ये सुंदर आवाज़ होला गीत के बाद जो नगला गीत चली वो इतने ही मधुर आवाज़ बा, लेकिन अब की बार एगो पुरुष के आवाज़ बा, आशीष रामफल की बात करत है। और सुहाना सफ़र बा, रंगीन रात बा, अच्छा मौसम बा, ठंडा ठंडा हवा चलता, ऐसन में ऐसन ही एगो रोमांचक आवाज़ के ज़रूरत बा। सफ़र पर हुई बा, घर पर आराम करत हुई बा, या सुते से आगे रेडियो के साथ जुड़ल हुई बा, ताकि अच्छा नींद आए, तो ये गीत आप खातिर सबसे बेहतरीन गीत। और अभी और 15 मिनट तक प्रोग्राम चली, हमके आज्ञा दा, हमने के मुलाकात कल फजर के हुई हमारी धरोहर में, और नहीं तो फिर से भेंट आप जा भोजपुरी तर का प्रोग्राम में आवत लेंदी के। आप सब कोई के आपके ध्यान खातिर, आपके वक्त खातिर, आपके साथ खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त यानी कि गिनिशा, लेकर आ गई हूँ यादों से भरा एक खूबसूरत सफर सुनहरे पल में। हम साथ मिलकर सुनेंगे वो पुराने बॉलीवुड गीत जो सिर्फ गाने नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की कहानियां हैं। तो बस आप आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए, दिल के दरवाजे खोल लीजिए और चलिए लौट चलते हैं उन हसीन लम्हों की तरफ सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कभी कभी एक पुराना गाना सुनते ही पूरी जिंदगी आंखों के सामने आ जाती है। बचपन की वो यादें, पहला प्यार, दोस्तों के साथ बिताए हुए पल। आज सुनहरे पल में हम उन्हीं लम्हों को फिर से महसूस करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि आने वाले हैं हर गीत के साथ जुड़ी है एक प्यारी सी कहानी जो खासकर आप लोगों के लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो मॉरिशस के प्यारे श्रोताओं, अगर आपको लगता है कि पुराने गीतों का जादू आज भी दिल को छू लेता है तो ये महफिल सिर्फ आपके लिए है। सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो अमर गीत, वो अमर नगमे जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गया है। बिल्कुल, आइए मिलकर संगीत भरी शाम को यादगार बनाते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज के इस सफर में ऐसे ऐसे गीत हम पेश कर रहे हैं जो हमारे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। वो गीत जो हर खुशी में साथ रहे, हर गम में सहारा बने। सुनहरे पल में आपका हार्दिक स्वागत तो हमने कर लिया है, लेकिन अगला गाना जो हम पेश करने वाला है ना, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और वो भी दिल से। हम आपका साथ देंगे रात के 12 बजे तक। सिर्फ यादों और संगीत की दुनिया में खो जाइए हमारे साथ।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: हर गीत एक एहसास है, हर धुन हमेशा एक कहानी सुनाती है और हर सुर में छुपा है एक अनमोल लम्हा। सुनहरे पल में आज हम लेकर आए हैं पुराने बॉलीवुड के बेहतरीन गीत जो आपके दिल को सुकून देंगे और चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस। मैं हूँ गिनिशा जो बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं।

वैसे देखा जाए जिंदगी की भागदौड़ में अगर कुछ हमें सुकून देता है ना, तो वो होते हैं संगीत। और जब बात हो पुराने बॉलीवुड गीतों की, तो दिल खुद ब खुद गुनगुनाने लगता है। तो चलिए आज मिलकर उन्हीं मधुर गीतों के साथ यादों के सफर पर निकलते हैं सुनहरे पल में।

खूबसूरत गाने तराने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सुनाते सुनाते। फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुड बाय टू यू। बिल्कुल जी, आप हमें इजाजत दीजिए ताकि दोबारा फिर से लौट के आप आए आपके लिए एक और खूबसूरत सुनहरे पल के शो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर और अपना ख्याल रखना जी।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।